मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक

पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 104

0: में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। प्रातः बेला की आराधना वंदना।

वंदना ईश्वर के प्रति अहोभाव से भरना है, उसके प्रति आभारी होना है। जो कुछ भी जीवन में हमें मिला है उसके लिए अनुग्रह मानना ही वंदना है। हम जितना ही धन्यवाद से भरते जाते हैं हमारा भीतर उतना ही खुलता जाता है, ईश्वर उतना ही हमारे भीतर उपलब्ध होता जाता है। ये कृतज्ञता ही हमें उस परम शक्ति के समक्ष नतमस्तक करती है और हम भाव पुष्प लिए समस्त जड़ चेतन की अपनी मातृभूमि की वंदना करने लगते हैं।

पाप या पुण्य केवल कथन मात्र नहीं है। मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है, वैसे वैसे संस्कार अपने हृदय में लिखकर साथ ले जाता है। मनुष्य जो बोएगा वही आगे जाकर काटेगा भी। इसीलिए गुरुजनों ने सत्कर्म की शिक्षा दी है, प्रभु के नाम स्मरण की शिक्षा दी है, जो सभी संकटों से हमें उबार लेता है।

आराध्य से विलग नहीं होता। भक्ति उसके रंग में रंगी सुबहों का होना है, भक्ति उसकी धुन गुनगुनाती शामों का ढलना है। भक्ति नाम है भक्त की आंखों में ठहरी प्रभु दर्शन की प्रतीक्षा का।

भक्ति हृदय की बात है, भक्ति की जाती है, समझी नहीं जाती। हम प्रार्थना करें तो ही प्रार्थना को जानेंगे, अहंकार की सीढ़ियां उतरेंगे तभी निरहंकार को जानेंगे। सारा अहंकार त्याग कर, सर झुकाकर जब हम डूब जाएंगे उस ईश्वर में, मिट जाएंगे, तब उसका बोध पैदा होगा।

अतीत की गाथाएं गाकर, अतीत में जीकर जीवन सार्थक नहीं किया जा सकता। पिछले दुखों की छाया, बीते कल की निराशा जीवन के पन्नों पर नई कहानी लिखने से हमें रोकते हैं। जीवन की प्रकृति आगे देखने की है। बीते कल का अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर इस धरती पर मंगल की कामना के साथ ईश्वर का गुणगान करते हुए आगे बढ़ना ही वंदना है।

इसके साथ ही संपन्न होती है आज सुबह की भजन यात्रा वंदना। गायक कलाकार थे मुकेश, अनुराधा पौडवाल, हरिओम शरण और पंडित जसराज।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। स्वर है कश्यप बोस और रामकिशन चांडीश्री का। संगीत सतीश भाजिया का।

शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थीं। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूँ, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हठ रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद मग्न हो गए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। स्वर था कशिप्रा बोस और रामकिशन चांदेश्री का। संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। विषय है भौतिक साधना। आलेख शीला दानी का है।
1: आज भौतिक साधनों के वशीभूत हो व्यक्ति ने मानो अपना सुख चैन नष्ट प्राय कर रखा है। चारों ओर भागम भाग मची हुई है। किसी के पास क्षण भर का समय नहीं है कि वो सामने वाले व्यक्ति की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान कर सके। जीवन साधनों की प्रचुरता के मध्य मानव मन आज जितना अशांत और अभावग्रस्त है उतना पहले कभी नहीं रहा। साधनों की न्यूनता और अल्पता में भी लोग आज की अपेक्षा कहीं अधिक प्रसन्न शांत और सुखी थे। इस विपरीत स्थिति का क्या कारण हो सकता है? इस पर यदि विचार किया जाए तो हमें यही प्रतीत होता है कि मनुष्य ज्यों-ज्यों भौतिकता को प्रमुखता देकर बाह्य साधनों की दासता स्वीकार करता गया है त्यों त्यों उसका मानसिक पतन होता गया। वो सहज मानवीय गुणों से रिक्त होकर मशीन बनता चला गया है। वो प्रेम सौहार्द और मानसिक पुनीतताओं के प्रति निरपेक्ष होकर संकीर्ण और स्वार्थी लोभी और लोलुप बन गया है। आज जहां एक ओर राजनीतिक सामाजिक शैक्षणिक सामयिक और औद्योगिक प्रगति अपनी चरम सीमा पर है वहां मानसिक क्षेत्र की सर्वथा उपेक्षा की जा रही है। मानसिक विकास मनोन्नति अथवा हार्दिक पवित्रता अपने नए रूप धारण कर रही है और मानसिक रोगी आत्महीनता और एकाकीपन बढ़ता जा रहा है। ये अधिभौतिक और औद्योगिक अथवा आर्थिक योजनाओं का परिणाम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छा हो यदि मनुष्य अपने मस्तिष्क से इस धारणा को निकाल दे कि संसार के बाहर स्वर्ग नाम का कोई ऐसा स्थान लोक अथवा क्षेत्र है जिसको प्राप्त कर लेने पर उसके स्थायी प्रसन्नता की समस्या सदा सर्वदा के लिए हल हो जाएगी। महज इतना मान लें और जान लें कि स्वर्ग इस संसार से परे कहीं नहीं है। वो यहीं इसी धरा पर आपके मन मंदिर में विराजमान है। उसे प्राप्त करने के लिए हमें केवल प्रेम पवित्रता सहृदयता सहयोग त्याग और उदारता का वातावरण निर्मित करना है जिसका हृदय वासनाओं तृष्णाओं कामनाओं और आवेग उद्वेगों से मुक्त है। वो मानो स्वर्ग में ही रह रहा है अर्थात अपनी वर्तमान वस्तु स्थिति का यथेष्ट स्पष्ट परिचय प्राप्त करना ही वास्तविक आत्मनिरीक्षण है। उसके अभाव में हम अपने को निर्दोष बना ही नहीं सकते। मानव में दोष दर्शन की पुष्टि स्वतः विद्यमान है पर प्रयासवश प्राणी उसका उपयोग अपने जीवन पर न कर अन्य पर करने लगता है जिसका परिणाम बड़ा ही भयंकर और दुखद सिद्ध होता है। हमारे जीवन में सबसे अधिक सुखमय और मूल्यवान वही क्षण है जब हम भौतिक जगत के मायाजाल से अपने आप को तटस्थ करके आत्मानुभूति में पूर्ण रूप से स्थित हो जाएं। इन क्षणों को प्राप्त करने का सौभाग्य तभी प्राप्त होता है जब हम दिव्य सौंदर्य के सम्मुख होते हैं अन्यथा नहीं। भौतिक जगत की संपत्ति इनको नहीं खरीद सकती और न संसार की ऊंची से ऊंची अवस्था। अधिकार अथवा शक्ति ही इनको प्राप्त करने में समर्थ है क्योंकि ये वही क्षण है जब आत्मा शिशु सुलभ सरलता से अपने प्रियतम भगवान की

0: अनुपम सुंदरता का पूजन करती है। मनुष्य का सुंदरतम अर्थात सर्वोत्तम सुखमय समय ही उसका सबसे अधिक मूल्यवान समय होता है। मानव अनुभूति की पराकाष्ठा, अपने भाइयों पर शासन करने की अथवा संसार की किसी भी मूल्यवान वस्तु को अर्जित करने की शक्ति में नहीं है। वास्तविक संपत्ति तो आत्मा की अनुभूति से ही प्राप्त की जा सकती है। अनुभूति की परिधि तो असीमित है, असीम है, वो निर्गुण निराकार है, पर शांति से आपके अंतर्मन को परिष्कृत करने में समर्थ है। कबीर दास जो निराकार ब्रह्म के उपासक थे, उन्होंने ठीक ही कहा है, यद्यपि ये कठिन है पर सुलभ भी है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था भौतिक साधना, आलेख शीला दानी का था। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है कृषि चर्चा। इस कार्यक्रम में विषय है प्रकृति और पोषण से भरपूर किचन गार्डन। वार्ताकार हैं डॉक्टर कृपाल सिंह वर्मा।
2: आज की कृषि चर्चा में हम बात करेंगे प्राकृतिक पोषक से भरपूर किचन गार्डन। जी हाँ, किचन गार्डन क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है, किचन गार्डन एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो हमारे घर पर, हमारी घर की आवश्यकता के अनुसार, घर पे उपलब्ध जो क्षेत्र है उसके अनुसार, उस क्षेत्र में हम किचन गार्डन विकसित कर सकते हैं। हमारी आवश्यकता के अनुसार हम विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फल, मसाले, औषधि पौधे लगा सकते हैं। किचन गार्डन की आज हम देखते हैं कि आवश्यकता क्यों पड़ती जा रही है। आज हम देखते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की व्याधियों से घिरे हुए हैं, नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार की कुपोषण ये हमें घेरे हुए हैं, तो ऐसे में किचन गार्डन एक ऑल इन वन एक ऐसा समाधान निकल के आता है जो कि हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं से, विभिन्न प्रकार की व्याधियों से बचा सकता है। तो इसमें हम क्रमबद्ध तरीके से यदि बात करें कि स्वास्थ्य को कैसे बचाएं, तो आज हम देखते हैं कि हमारा पेट तो भरा हुआ है लेकिन हम फिर भी कुपोषण से जूझ रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है कि हम जो खा रहे हैं उसमें वो पोषक तत्व उपलब्ध है या नहीं, ये एक चिंता का विषय है। तो आज हम देखते हैं कि हम जो सब्जियां चाहे उपयोग करते हैं, चाहे फलों का उपयोग करते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है। तो हम किचन गार्डन में यदि इन सब्जियों और फलों को लगाते हैं तो निश्चित रूप से हम उनका उपयोग करके हमारे स्वास्थ्य को बचा सकते हैं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बचा सकते हैं और हमारे पैसे बचा सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करें यदि हमारी जो संस्कृति और परंपरा बचाने की, आज हम देखते हैं कि हमारे जो विभिन्न प्रकार की देसी सब्जियां थी वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई, तो इन देसी सब्जियों को हम प्राकृतिक परिवेश में कैसे ला सके, कैसे उनको हम उगा सके और कैसे हमारे दैनिक आहार में उनको उपयोग कर सके, उनका समावेश कर सकें। तो यदि हम किचन गार्डन में विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाते हैं तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को बचाने का भी कार्य करते हैं। शिक्षा बचाओ, जैसा कि हमारे जो किचन गार्डन है इनमें हम विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फल, मसाले इनको उगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें एक शिक्षा भी प्रदान करती है और ऐसी शिक्षा जो लाइव हो, ऐसी शिक्षा जो हमें अल्टरनेटिव लर्निंग प्रदान कर सके, ऐसी शिक्षा हमें किचन गार्डन से मिलती है। स्वच्छता की बात करें, चाहे प्रदूषण की बात करें, हर स्तर पर किचन गार्डन हमारे सामने एक समाधान लेकर आता है। जलवायु परिवर्तन की यदि बात करें तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को हम किचन गार्डन के उपयोग से कम कर सकते हैं और इसी प्रकार हम प्रकृति बचाने का कार्य भी कर सकते हैं। इन तमाम चीजों के साथ साथ हम एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम बच्चों को तकनीक से कैसे दूर रखें, बच्चों को कैसे प्रकृति के पास लेके जा सके और कैसे हम बचपन बचा सकें, तो किचन गार्डन एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो हर प्रकार से बचाने पे और बनाने पे कार्य करता है। किचन गार्डन की हम प्लानिंग करते हैं तो किचन गार्डन के प्लानिंग में हमें तीन चार चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हम जहाँ किचन गार्डन बना रहे हैं वो स्थान कैसा है, वहाँ छत के ऊपर है या जमीन पर है। फिर इसके बाद में हमें देखना रहता है कि हम जिन क्षेत्र में बना रहे हैं वहाँ पर पानी का भराव तो ना हो रहा हो, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य के प्रकाश आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर हमारे घर में कितने सदस्य हैं और वो उनको कौन कौन सी सब्जियां पसंद है, ये सारी चीजें यदि हम किचन गार्डन के प्लान के समय देखें तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे किचन गार्डन का विकास कर सकते हैं। किचन गार्डन में हम विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के फल उगा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के मसाले उगा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के औषधि और सुगंधी पौधे उगा सकते हैं। इसी के साथ साथ हम किचन गार्डन में विभिन्न प्रकार के मसाले भी उगा सकते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधि फसलें भी उगा सकते हैं। किचन गार्डन गार्डन तैयार करते समय हमें तीन चार चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम यदि छत के ऊपर

0: किचन गार्डन तैयार कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर का उपयोग करना है, जिससे हमारे छत पर भार ना पड़े, हमारे छत पर पानी का भराव ना हो और वो स्ट्रक्चर लंबे समय तक चल सके, तो और जिसमें पौधों की वृद्धि और विकास भी समुचित हो सके। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के ग्रो बैग स्ट्रक्चर्स आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। इनमें हम विभिन्न प्रकार के ग्रोविंग मीडिया को भर सकते हैं, जैसे कि हम हमारे गोबर की खाद है, केंचुआ खाद है, प्राकृतिक पत्तियों की खाद है, इस तरह की खाद, और इनको मिट्टी में मिलाकर हम भर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो नारियल की खोल है, जो नारियल पीने के बाद बचते हैं, उनका भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। बुवाई के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम बीजों को ज्यादा गहरा ना बोदे, बीजों को ज्यादा ऊपर ना बोदे। तो जनरली ये ध्यान रखा जाता है कि जो बीज है, बीज के आकार से दो गुना आकार, मतलब गहराई में बीजों की बुवाई करनी चाहिए। बीजों को समुचित नमी होने पर ही बुवाई करनी चाहिए। पोषक तत्व प्रबंधन किचन गार्डन में बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि हम यदि ये पोषक तत्व प्रबंधन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसा हमारा पौधे पोषक तत्व लेंगे वैसा का वैसा ही वही पोषक तत्व, क्योंकि हम अल्टीमेटली जो उनका कंसेप्शन उनको खाने वाले हैं, तो हम सब्जियों और फलों को जिनको खाने वाले हैं उनमें पोषक तत्व का होना बहुत जरूरी है। तो हमारे घर का जो जैव संपदा है, जो किचन वेस्ट है, उसका हम बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं और उससे हम हमारी जो फसलें हैं उनमें पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, इसमें आज का विषय था प्रकृति और पोषण से भरपूर किचन गार्डन। वार्ताकार थे डॉक्टर कृपाल सिंह वर्मा। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रियराजधान्यां दिल्ल्यां उत्तरप्रदेशे पंजाबे चण्डीगढ़क्षेत्रे विकीर्णरूपेण वृष्टिः सम्भाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बियादेशस्य लब्धप्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूसदेशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकलक्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेविवोचिस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालन ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर

0: किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले जानते हैं सभा के शेष कार्यक्रम। आज सुबह 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे आईपी मैट 2026 में ऑल इंडिया 12वीं रैंक प्राप्त करने वाले भोपाल के शौर्य नायक जैन से बातचीत, अंतर्राष्ट्रीय जोनोसिस दिवस के अवसर पर जोनोटिक रोगों से बचाव और जागरूकता के संबंध में मध्य प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संचालक डॉक्टर पीएस पटेल से बातचीत और मध्य प्रदेश के निमाणी व्यंजन अगरिया समुदाय की लोहो धातु कर्मकला और मेहर बैंड को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सम्मिलित किए जाने पर जनजातीय संग्रहालय के निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र पारे से बातचीत। आठ बजकर 30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9 सुनिएगा रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। उर्दू कार्यक्रम आईना आप सुन सकते हैं 9:30 पर। जिले की चिट्ठी आपको सुनवाएंगे सुबह 10 और गीत सागर कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं 10:05 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला सुनिएगा सुबह 10:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे उस्ताद निसार हुसैन खां का गायन, राघो का भटियार। शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम सुना जा सकता है। आइए अब जानते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों में आज सुबह 11 आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दोपहर 12 संग्रहालय से। ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 12:30 पर। इसके अंतर्गत आज आप सुन सकते हैं धारावाहिक हंसना मना है का 5वां भाग। स्वास्थ्य दर्पण सुना जा सकता है दोपहर 1। इसमें आज आप सुन सकते हैं पार्किंसन रोग कारण लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर आयुष दुबे से भेंट वार्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। एक बजकर 30 पर सुनिएगा लोक संगीत। इसमें आज आप सुन सकते हैं छगनलाल वर्मा और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। सुगम संगीत का आनंद लिया जा सकता है 1:45 पर। इसमें आज आप सुनेंगे असलम सावरी की गाई गजलें। 2 फिल्म संगीत आपको सुनवाएंगे और आपकी फरमाइश हम लेकर आएंगे 2:30 पर। आज की सांध्यकालीन सभा के आकर्षण इस तरह से रहेंगे। शाम 5:02 पर युवा साथी सुन सकते हैं कार्यक्रम युवावाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 5:33 पर। 6 एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुना जा सकता है। 6:30 पर फिल्म संगीत आपको हम सुनवाएंगे। कार्यक्रम आजकल आप सुन सकते हैं 6:40 पर। सुर्खियों में सुनिएगा रात 8:00। 8:15 पर फिल्म संगीत सुना जा सकता है। रात 10 आप सुन सकते हैं रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। तो ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा आज से शुरू। 40 वर्षों बाद होगी न्यूजीलैंड की पहली द्विपक्षीय यात्रा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में करेंगे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी में रखी अदाणी डिफेंस फैक्ट्री की आधारशिला। रक्षा क्षेत्र में मिलेगी मजबूती। और प्रदेश में मॉनसून की जोरदार बारिश जारी। सागर, दमोह सहित 9 जिलों में आज अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में वे इंडोनेशिया पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर भी जाएंगे। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड में होंगे, जो पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। तीनों देशों में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। इस परियोजना में 10,000 क्षमता वाला विश्व स्तरीय कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर भी विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम में देश प्रदेश के करीब 200 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल होंगे। इस परियोजना से 15,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शिवपुरी जिले के पाली में लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अदाणी डिफेंस एंड एरोस्पेस ग्रुप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
1: मध्यप्रदेश में निवेश का एक नया मार्ग खुला है। ग्वालियर अंचल में हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट लगभग 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ का, जहां मिसाइलें बनेगी, मिसाइल से लगा करके सारे प्रकार के आर्म्स की जो आवश्यकता है वो सारे विकास के साथ साथ यहां पर रोजगार भी मिलेगा। साथ साथ 211 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी यही सम्पन्न हुआ। सब मिला के 4-5 हजार करोड़ के काम यहाँ लगातार प्रारंभ होने की स्थिति में आए हैं।
0: वहीं श्री सिंधिया ने कहा कि यह प्लांट भारत की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा और हजारों युवाओं को रोजगार देगा। इस मौके पर शिवपुरी जिले के लिए करीब 211 करोड़ रुपए की लागत के 38 विकास कार्यों का ई लोकार्पण और ई भूमि पूजन भी किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत जी रामजी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने योजना के संचालन के लिए 25,863 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी की। उन्होंने बताया कि मनरेगा से इस योजना में ट्रांजिशन पूरी तरह सहज और सुचारू रहा है। अब तक कोई तकनीकी शिकायत नहीं मिली है। श्री चौहान ने कहा,
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इसमें 2 हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया है। अधिकारियों के अनुसार

0: वक्फ अधिनियम संशोधित 2025 के तहत गठित यह देश का पहला राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड है जिसमें हिंदू सदस्य शामिल किए गए हैं। इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को हिंदू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश नया अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेहनत, आधुनिक तकनीक और सामूहिक प्रयास से खेती की तस्वीर कैसे बदल सकती है, इसकी मिसाल खंडवा जिले का जावर गांव बन रहा है। यहां किसान उत्पादक संगठन यानी FPO के माध्यम से उगाया जा रहा खीरा और टमाटर अब दुबई तक निर्यात हो रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खंडवा से हमारे संवाददाता हीरा लाल लोंगरे।
2: खंडवा जिले के जावर गांव के किसान अश्विन बादल सिंह सावले ने 4 वर्ष पहले मात्र 2 एकड़ में खीरा और टमाटर की खेती शुरू की थी। बेहतर उत्पादन मिलने पर उन्होंने गांव के किसानों को जोड़कर FPO का गठन किया। आज इस संगठन से 160 किसान जुड़े हैं, जो करीब 400 एकड़ में टमाटर, खीरा, करेला, लौकी और नींबू जैसी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। इनकी उपज देश के बड़े बाजारों के साथ साथ दुबई तक पहुँच रही है।
3: मैं अश्विन सावले, ग्राम जावर, जिला खंडवा से हूँ। सोलर ड्राई के माध्यम से सब्जियों का मूल्य संवर्धन कर किसानों की आय बढ़ा रहे हैं। किसान संगठित होकर वैज्ञानिक तरीके से खेती करे तो बेहतर आमदनी और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँच सकते हो आप।
2: उद्यानिकी विभाग के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के कारण जावर का FPO आज क्षेत्र के किसानों के लिए एक सफल मॉडल बन चुका है। उद्यानिकी विभाग के उप संचालक श्री अजय चौहान ने बताया कि
4: शासन का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि किसान की आय में वृद्धि हो, इसी तारतम्य में उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषकों को उद्यानिकी की ओर प्रेरित किया जा रहा है। किसान की आय परंपरागत खेती की तुलना में उद्यानिकी फसलों से अधिक प्राप्त होती है।
2: आकाशवाणी समाचार के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे।
0: प्रदेश पुलिस की राज्यव्यापी सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत प्रदेश भर में साइबर जागरूकता गतिविधियां जारी हैं। कल इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने 6,000 से अधिक नागरिकों के साथ साइबर जागरूकता मैराथन आयोजित की। भोपाल में आरडी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में करीब 1500 छात्र छात्राओं को डिजिटल अरेस्ट और फिशिंग जैसे साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। वहीं खंडवा, राजगढ़, टीकमगढ़ सहित कई जिलों में स्कूलों, पंचायतों और सरकारी कार्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल के शौर्य स्मारक में कल अंतर्राष्ट्रीय अनघ मंच द्वारा आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देश मेरे तुम भूल न जाना, वन वीरों का बलिदान थीम पर आधारित यह कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में हजारों आदिवासी क्रांतिकारियों के बलिदान को इस महोत्सव के जरिए याद किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कल बैतूल में आयोजित स्कूल बैग विद एजुकेशनल डेस्क वितरण कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। मंत्री उइके ने कहा कि डेस्क युक्त स्कूल बैग बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी और नवाचारपूर्ण पहल है, ताकि बच्चे कहीं भी सुविधापूर्वक बैठकर अध्ययन कर सकें। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून जमकर बरस रहा है। अब तक औसत 6.4 इंच पानी गिर चुका है। मौसम विभाग ने आज सागर, दमोह, बैतूल सहित 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रतलाम, उज्जैन सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले को वर्ष 2027 तक पूर्ण साक्षर बनाने के लक्ष्य को लेकर डायट कल्याणपुरा में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अमृत 2.0 योजना के तहत सांसद रोडमल नागर ने कल आगरमालवा में पौधरोपण की शुरुआत की। भोपाल शहर के जहांगीराबाद स्थित बापू कॉलोनी से 70 श्रद्धालुओं का एक जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। नर्मदापुरम जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट दामिनी की शुरुआत की है, जिसके तहत जिले के प्रत्येक गांव के घरों तक आकाशीय बिजली से बचाव का संदेश पहुंचाया जाएगा। खंडवा में मानसून अवधि के दौरान प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु

12 जुलाई तक 7 दिवसीय सिविल डिफेंस वॉलेंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी में जनजाति कल्याण केन्द्र महाकौशल भरगांव के केशव सभागार में करियर गाइडेंस कार्यशाला का आयोजन किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड पहली बार महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीता। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

सभी श्रोताओं को सुबह की राम राम, आदाब, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र रुचि सचान और आपने ट्यून किया है अपना मनपसंद कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

मित्रों, बच्चों के मस्तिष्क के विकास में कल्पनाशीलता का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज मोबाइल की स्क्रीन ने बच्चों की कल्पनाशीलता को लगभग खत्म ही कर दिया है। मोबाइल की स्क्रीन बच्चों को हर दृश्य तैयार करके दिखाती है। इसे इस तरह से समझिए कि कहानी हो, कार्टून हो या कोई वीडियो, हर पात्र का चेहरा, हर स्थान का रंग और हर घटना का दृश्य पहले से ही तय होता है। ऐसे में बच्चे को अपनी कल्पना से कोई चित्र बनाने या कोई दृश्य गढ़ने या किसी कहानी को अपने मन से जीवंत करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। यही कारण है कि लगातार बढ़ता स्क्रीन टाइम बच्चों की रचनात्मक सोच, तर्क शक्ति और समाधान खोजने की उनकी ललक को खत्म कर रहा है। लेकिन बच्चा अगर कहानी की किताब पढ़ता है या सुनता है तो वह पात्रों की कल्पना स्वयं करता है। मिट्टी के खिलौने बनाते हुए वो अपने मन की दुनिया बना सकता है। चित्र बनाते हुए वो अपने रंगों का चुनाव खुद कर सकता है, जबकि स्क्रीन पर उसे वही दिखाई देता है जो स्क्रीन उसे दिखाना चाहती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मोबाइल या तकनीकी गलत है, लेकिन इस उम्र में उन्हें तकनीक से ज़्यादा बच्चों के खेल, किताबें, प्रकृति और संवाद की आवश्यकता है, ताकि वो उत्तर खोजें, प्रयोग करें, कहानियाँ गढ़ें और कल्पनाओं के खुले आकाश में उड़ान भरें।

आप सुन रहे हैं 188.32 मीटर DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर अपना मनपसंद प्रोग्राम नमस्कार भोपाल। समय है आपको समाचार पत्रों से कुछ प्रमुख समाचार पढ़कर सुनाने का। जानते हैं आज समाचार पत्रों में क्या है खास। पहला समाचार उत्तराखंड से। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले दुर्गम खिमलोगा दर्रे को आखिरकार 17 साल बाद ट्रैकर्स ने पार किया है। 17,260 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस बर्फीले दर्रे को 16 सदस्यीय पर्वतारोहण दल ने सफलतापूर्वक पार करके नया इतिहास रचा है। दूसरा समाचार, वर्क लिव ग्रो मॉडल पर आधारित सतगढ़ी इंडस्ट्रियल पार्क का आज CM डॉ. मोहन यादव ने 200 उद्योगपतियों के साथ भूमि पूजन किया करेंगे। यह पार्क 173 एकड़ में बन रहा है, यानी यहां काम करना, रहना और आगे बढ़ना सब एक ही जगह मिलेगा। अगला समाचार, उच्च शिक्षा का खर्च लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार मेधावी, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और छात्राओं के लिए कई छात्रवृत्ति योजनाएं चला रही है। इनके तहत ट्यूशन फीस, छात्रवृत्ति राशि और अन्य शैक्षणिक सहायता मिलती है। अगला समाचार, मानसून के दौरान ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही के लिए पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने विशेष व्यवस्था की है। संवेदनशील रेलखंडों पर 118 पेट्रोलमैन और 174 वॉचमैन तैयार किए गए हैं। और पहली बार अब मध्य प्रदेश में बनी मिसाइल पाकिस्तान के आखिरी छोर तक मार कर सकेगी। इसके लिए शिवपुरी के कोलारस में अदाणी समूह के दक्षिण एशिया में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा मिसाइल इको सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने जा रहा है। रविवार को CM डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूमि पूजन किया। मित्रों, कल छत्तीसगढ़ की महान पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई का निधन

हो गया। वे 70 साल की थीं। भारतीय लोक कला में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तीजनबाई ने केवल पंडवानी का गायन ही नहीं किया, बल्कि महाभारत के पात्रों को अपने स्वर, अभिनय और अद्भुत अभिव्यक्ति से जीवंत कर दिया। उन्होंने गांव की चौपाल से लेकर विश्व के प्रतिष्ठित मंचों तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। उनकी बुलंद आवाज में लोक जीवन की आत्मा बसती थी और उनके प्रत्येक प्रदर्शन में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व झलकता था। आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो वो केवल एक कलाकार के रूप में उन्हें याद नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसे युग को नमन कर रहे हैं जिसने अपनी साधना समर्पण से लोक परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पूरा आकाशवाणी परिवार लोक संस्कृति की इस महान स्वर यात्री डॉक्टर तीजनबाई को शत शत नमन करता है।

0: अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत करती हूँ मैं रुचि सचान। आज के सफर में आपकी सहयात्री हूँ मैं। मित्रों, IIM इंदौर ने हाल ही में IPMAT 2026 का परिणाम घोषित किया है। इस परीक्षा में भोपाल के शौर्य नायक जैन ने ऑल इंडिया 12वीं रैंक प्राप्त करके शहर का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर हमने उनसे बात की और जाना उनकी इस सफलता की यात्रा के बारे में। आइए सुनते हैं।
1: शौर्य जी, सबसे पहले तो आपको इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शौर्य जी, IPMAT क्या है और इसमें चयन की प्रक्रिया कैसी होती है?
2: IPMAT का मतलब है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बेसिकली IIM इंदौर का एक 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिससे आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि BA और MBA दोनों की कंबाइंड डिग्री साथ में मिलती है। जहां तक चयन की प्रक्रिया का सवाल है, इसके 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और वर्बल एबिलिटी यानी कि इंग्लिश के सेक्शन होते हैं, और आपको दोनों सेक्शन की कट ऑफ क्लियर करने होते हैं। क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू का कॉल आता है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी जनरल अवेयरनेस चेक की जाती है। इन दोनों स्टेजेस के स्कोर्स को मिलाकर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और उसके बेसिस पर

0: एडमिशन कंफर्म होता है।
1: आपने ऑल इंडिया 12वीं रैंक हासिल की है, अपनी सफलता के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए।
0: सच बताऊं तो जब पहले 2 तारीख को रिजल्ट आया था तब मैं अपना कुछ काम कर रहा था और मुझे पता भी नहीं चला था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपना फोन देखा तो मेरे दोस्त का मैसेज आया हुआ था कि रिजल्ट आ गया है। तो मैंने जाकर फिर IIM इंदौर का ऑफिशियल ईमेल चेक किया और मुझे पता चला कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 12 आई है। मैं ईमानदारी से कहूँ तो उस टाइम अच्छा तो लगा था, पर उस टाइम उतनी भारी खुशी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन फिर मैं तुरंत बाद अपने माता पिता के कमरे में गया और फिर दोनों को साथ में बताया कि मेरा IIM इंदौर में सिलेक्शन हो गया है और मेरी रैंक 12 आई है। तो उस टाइम मेरे पापा की आंखों में खुशी के आंसू थे और दोनों ही मतलब बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे। तब जाके मुझे अपनी सफलता की एक्चुअली वैल्यू पता चली और मुझे एक्चुअली खुशी होना चालू हुई।
1: इस परीक्षा की तैयारी आपने कब और कैसे शुरू की थी? स्टडी प्लान क्या था आपका?
0: मैंने गंभीर रूप से इस परीक्षा की तैयारी पिछले साल सितंबर के महीने में चालू की थी। फिक्स्ड रूटीन था कि मैं सुबह रोज 8 से 8:30 बजे के आसपास लाइब्रेरी चला जाता था और फिर शाम को 6-7 बजे तक वहीं रहकर पढ़ाई करता था। अपनी तैयारी के दौरान मैंने थ्योरी पर कम फोकस किया और मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट देने पर ज्यादा फोकस रखा। जब मैं टेस्ट देता था तो सिर्फ स्कोर देखकर नहीं छोड़ देता था, टेस्ट के बाद मतलब मैं सारे क्वेश्चंस देखता था कि कहां सही गया, कहां गलत गया, क्या मेरी गलतियां थी और कैसे मैं मार्क्स गवाए इस टेस्ट में। और मैं कोशिश करता था कि अगला टेस्ट दूं तो मैं इससे बेहतर परफॉर्मेंस करूं, और यही करते करते मेरा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला मुझे।
1: IPMET जैसी और भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि विद्यार्थियों को कोचिंग या सेल्फ स्टडी किस पर अधिक भरोसा करना चाहिए जिससे वो सफल हो सके?
0: देखिए, मेरा मानना है कि शुरुआत में टिप्स लेने के लिए और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए कोचिंग और टीचर्स की सहायता बहुत ही अहम होती है। वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको खुद ही पड़ता है। तो सेल्फ स्टडी के बिना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकाला जा सकता। मेरे अनुसार एक बार छात्र कॉन्सेप्ट समझ चुका है वो अपना फिर 90% काम वहां से उसको खुद ही करना होता है। आपको खुद बैठकर अपने सवाल लगाने होंगे, वीक एरियाज पर काम करना होगा। अगर कोचिंग गाइडेंस और आपकी खुद की सेल्फ स्टडी के एक अच्छा बैलेंस और तालमेल रहे तो कोई भी स्टूडेंट अपने सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। सिर्फ कोचिंग के भरोसे रहकर एग्जाम क्लियर करना इम्पॉसिबल है।
1: जी बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी पहलू होता है किसी भी परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने के लिए?
0: किसी भी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की तो अहम भूमिका रहती ही है। मतलब परीक्षा के दौरान छात्रों को सिर्फ सवाल सॉल्व नहीं करने रहते बल्कि प्रश्न छोड़ने की कला भी आनी चाहिए। एग्जाम हॉल में ईगो का गेम नहीं है, यहाँ पर फैसला लेना बहुत जरूरी होता है कि किस सवाल पर समय लगाना है, किसको देखते ही छोड़ देना है, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं और कौन से बाद में करने हैं। अगर आप किसी एक कठिन सवाल पर 4-5 मिनट वेस्ट कर देंगे तो आगे के आसान सवाल छूट जाएंगे जिससे छात्र अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर नहीं पाएगा और उसका सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। इसलिए ये कला सीखना जरूरी है और इसके लिए मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट देके अगर विद्यार्थी प्रैक्टिस करें तो वो अपने आप इस कला को डेवलप कर सकते हैं।
1: मैनेजमेंट को करियर के रूप में चुना क्यों जाना चाहिए, क्या स्कोप है इसमें?
0: मैनेजमेंट आपको बहुत ही कम उम्र में प्रैक्टिकल नॉलेज और रियल वर्ल्ड एक्सपोजर और लीडरशिप स्किल्स सिखाता है। यह सिर्फ रटने वाली किताबें या पढ़ाई नहीं है बल्कि यह आपको असल दुनिया के बिजनेस और कंसाइज मैनेजमेंट और लोगों के बिहेवियर को संभालना सिखाता है। जहां तक इसके स्कोप का सवाल है, आज के समय में हर छोटे बड़े बिजनेस, कॉरपोरेट सेक्टर या किसी भी नए स्टार्टअप को स्केल करने के लिए या चलाने के लिए अच्छे मैनेजर्स की जरूरत होती है। अगर हम IIM इंदौर की बात करें तो यहां का प्रैक्टिकल एक्सपोजर और प्लेसमेंट देश के बेहतरीन संस्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ से मिलने वाले कॉरपोरेट कनेक्शंस और नेटवर्किंग छात्रों के करियर को एक बहुत ही मजबूत शुरुआत दे सकते हैं जो भविष्य में उनके खुद के विजन, आइडियाज और बिजनेस को खड़ा करने के लिए भी बहुत मददगार साबित हो सकते हैं।
1: जो छात्र आपकी तरह ही IPMET की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, कुछ ऐसी खास बातें जो उन्हें हेल्प कर सकें?
0: मेरी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सलाह यह होगी कि किसी भी टॉपर की स्ट्रेटेजी को आंख बंद करके कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। दुनिया में ऐसी कोई भी बेस्ट यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी नहीं है जो सबके लिए काम कर जाए। हर इंसान का दिमाग अलग होता है, उनका बैकग्राउंड अलग होता है, उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है। हो सकता है जो चीज मेरे लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी थी वो किसी और के लिए बिल्कुल ही काम ना करे। इसलिए मैं छात्रों को यही सलाह देना चाहूंगा कि वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और अपना खुद का बैकग्राउंड पहचाने और उनका पढ़ने का तरीका पहचाने। इसलिए दूसरों को देखकर पैनिक मत होइए, खुद को एनालाइज करिए, अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानिए और ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए जिससे आप कंफर्टेबल हो और आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सके। खुद पर भरोसा रखिए और कंसिस्टेंट रहिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा।
1: शौर्य जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई, निश्चित रूप से बहुत सारे श्रोता इससे लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
2: मित्रों,

अभी आपने आईपी मेट 2026 में ऑल इंडिया 12वीं रैंक प्राप्त करने वाले शौर्य नायक जैन जी को सुना, जिन्होंने न केवल अपनी सफलता की कहानी हमारे साथ साझा की बल्कि आईपी मेट की तैयारी के लिए जरूरी टिप्स भी बताई। और अब मन्ना डे की आवाज में सुनिए ये सदाबहार गीत।

0: मित्रों, आज विश्व जूनोसिड दिवस है। इस दिवस का महत्व इसलिए भी है क्योंकि आज ही के दिन यानी 6 जुलाई 1885 को फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने पहली बार रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। जूनोसिस आखिर है क्या और क्यों इतना महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संचालक डॉक्टर पीएस पटेल जी से।
1: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि जूनोसिस क्या होता है।
2: जूनोसिस मैडम ऐसी बीमारियां है जो पशुओं से मनुष्यों में और मनुष्यों से पशुओं में फैलती है। ऐसी बीमारियां जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है और ऐसे बीमारियों को जूनोटिक डिजीज बोलते हैं।
1: वर्तमान समय में जूनोटिक रोगों को लेकर के जागरूकता क्यों आवश्यक हो गई है?
2: आजकल नए नए वायरस और नए नए बैक्टीरिया, नई बीमारियां जो आ रही है, तो हमको पूर्व से ही उसका नॉलेज हो, अवेयर हो लोग और समय पे उसकी जानकारी मिल जाए और उनकी जांच हो जाए, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कोई भी इस तरह की बीमारी के लक्षण अगर होते हैं तो हमें तुरंत नजदीकी हमारे जो पशु चिकित्सालय है, ह्यूमन के हॉस्पिटल है, ऐसी जगह खबर करते हैं। जरूरी है कि ये बीमारियां आगे न फैले और उनका समय पर रोकथाम हो सके।
1: वन हेल्थ की अवधारणा क्या है, ये क्यों आवश्यक हो गया है?
2: आप जानते हैं कि मनुष्यों से पशुओं में और पशुओं से मनुष्यों में जो बीमारियां फैल रही है, हमारे पूरे सिस्टम को ये इफेक्ट करती है, चाहे वो ह्यूमन हेल्थ हो, एनवायरमेंटल हेल्थ हो, एनिमल हेल्थ हो। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कंसेप्ट लाया कि एक साथ सभी विभाग काम करें और

0: सभी की अप्रोच एक ही हो वन हेल्थ के माध्यम से, जिससे कि ये नई नई जो बीमारियां आ रही है इन पे रोकथाम हो सके और सारा सिस्टम एक साथ काम करे।
1: कौन कौन से प्रमुख जूनोटिक रोग भारत में अधिक देखने को मिल रहे हैं?
0: एक एंथ्रेक्स होता है जो पशुओं में, टीबी होती है और इन्फ्लुएंजा होता है, रेबीज होता है, इबोला वायरस है, कोविड है, एवियन इन्फ्लुएंजा, इस तरह की बीमारियां बहुत ज्यादा प्रचलन में है।
1: ये रोग पशुओं से मनुष्यों में किन माध्यमों से फैलते हैं?
0: कई माध्यम है, जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैंडलिंग, टचिंग, हम किसी चीज को छूते हैं उसे भी फैलती है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, जैसे जमीन में कोई वायरस है या कहीं और कहीं ऐसे हैं, भोजन करते हैं, पशु चारा खाते हैं, पानी के माध्यम से, इस तरह से फैलती है।
1: क्या पालतू पशुओं के साथ रहने वाले लोगों को भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए?
0: जो इन बीमारियों के टीके होते हैं वो अवश्य लगवाएं, जिससे कि ये बीमारियां आगे न बढ़े। जैसे रेबीज का मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर एक बार रेबीज हो गया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। इसी तरह अन्य बीमारियां भी है जो खतरनाक होती है, हमको सभी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि ये बीमारी आगे न बढ़े।
1: अभी आपने रेबीज का जिक्र किया, रेबीज जैसी बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या है और इसमें कितनी जल्दी उपचार लेना चाहिए?
0: डॉग बाइट के आजकल बहुत केसेस हो रहे हैं, तो हमको तुरंत जैसे कहीं डॉग बाइट की घटना होती है या इस तरह से कोई घटनाएं होती है तो सबसे पहले तो जो घाव है उसको तुरंत धोना चाहिए कास्टिक सोडा वगैरह इस तरह से, ताकि वो वायरस अंदर न जाए। साथ ही इसका जो पोस्ट बाइट वैक्सीन है वो तुरंत लगवाएं ताकि ये बीमारी आगे न बढ़े और रोकथाम उसकी हो सके।
1: पशुपालन विभाग इन जूनोटिक बीमारियों की रोकथाम के लिए कौन कौन से अभियान चला रहा है?
0: रेबीज का तो हम हमेशा ही एक अभियान के रूप में ले रहे हैं कि हमारे सभी जिलों को हमने निर्देश दिए हैं कि रेबीज के वैक्सीन हर जगह उपलब्ध हो और जहां पे भी डॉग बाइट के केसेस होते हैं वो तुरंत रोकथाम करें। जितनी जल्दी वैक्सीन लग जाए उतना अच्छा है। टीबी है, एवियन इन्फ्लुएंजा है, अभी हमने इसके लिए एक मॉक ड्रिल भी की थी अभी विदिशा में स्वाइन फीवर, स्वाइन फ्लू के लिए, कि ताकि हमारी तैयारी क्या होना चाहिए, इस तरह से हम बीच बीच में ये कार्यक्रम और अभियान के रूप में काम करते हैं।
1: यदि किसी क्षेत्र में पशुओं में अचानक बीमारी फैलती है तो आम लोगों को क्या क्या करना चाहिए?
0: सबसे पहले तो अगर कोई बीमारी के लक्षण आते हैं तो तत्काल जो भी पशुपालक हैं या और भी हमारे जो जानकार है, तुरंत हमारी संस्थाओं में जहाँ भी नजदीकी पशु चिकित्सालय है वहाँ पे तत्काल उसकी सूचना दे, ताकि हमारे लोग स्पॉट पे जाके रोकथाम के लिए, उसके वैक्सीनेशन के लिए, उसका सेग्रीगेशन के लिए अगर कहीं बीमारी फैलने के लक्षण मिलते हैं तो तुरंत हम कार्रवाई शुरू कर देते हैं ताकि और आगे नहीं फैले, जानकारी दें ताकि पशु चिकित्सक जाके समय पे उसकी रोकथाम की कार्रवाई की जा सके।
2: मित्रों, ये थे पशुपालन विभाग के संचालक डॉक्टर PS पटेल, जिन्होंने हमें पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली जूनोटिक बीमारियों के विषय में बताया और इनसे बचने के उपाय भी बताए। और अब समय है एक गीत का। गीत के बाद मिलते हैं अपने अगले मेहमान से।

0: संगीत में अंतराल के बाद पुनः स्वागत है। आपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आपका लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। मित्रों, हम सबके लिए यह गर्व की बात है कि राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध निमाड़ी व्यंजनों को, मैहर बैंड को और अगरिया समुदाय की प्रसिद्ध लौह धातु कर्म कला को शामिल किया गया है और इस तरह से इन विरासतों का यूनेस्को की विश्व विरासत सूची तक पहुंचने का एक तरह से कहना चाहिए औपचारिक मार्ग खुल जाता है। इन सभी के विषय में हमें और अधिक जानकारी दे रहे हैं जनजातीय संग्रहालय के निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होती है और इसे मूर्त विरासत से कैसे अलग समझा जा सकता है।
1: देखिए, मूर्त तो वे चीजें हैं जो भौतिक रूप से हमको दिखती है, जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं। सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में जो चीज पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, जैसे हमारे मंदिर है, हमारे महल है, हमारे किले हैं, हमारे स्मारक हैं, हमारी जितनी भी वास्तु संरचनाएं हैं, वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत आती है। और जिन्हें हम अमूर्त कह रहे हैं, इसमें प्रथाएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा दर्शन है, हमारी ज्ञान परंपरा है, हमारा हुनर है, कौशल है, यानी हमारी जितनी मौखिक वाचिक परंपराएं हैं, वो अमूर्त विरासत के अंतर्गत गिनी जाती है।
0: राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निमाड़ी व्यंजन, मैहर बैंड और अगरिया समुदाय की लौह कला को शामिल किया गया है, तो इसका क्या महत्व है?
1: इसका निश्चित ही बहुत बहुत महत्व है। मैहर बैंड बाबा अलाउद्दीन खान ने 1918 में शुरू किया था और शायद ये शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में पहला बैंड था। इसमें ये महामारी के दौरान शुरू हुआ था और उन्होंने जो महामारी में अनाथ हुए बच्चे थे उनको इसके लिए तैयार किया और विश्व को एक महान देन दी। ये बैंड अभी तक चला आ रहा है एक लंबे समय से। इन्होंने शास्त्रीय संगीत को भी बहुत समृद्ध किया और बहुत सारे वाद्यों को इसी कारण बचाया भी जा सका। तो जैसे निमाड़ के बारे में आपने व्यंजनों का पूछा, निमाड़ के सारे अंचलों के सभी जनपदों के व्यंजन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन निमाड़ के कुछ और भी अनूठे हैं। यहाँ की अमाड़ी की भाजी और ज्वार के रोटा, यहाँ के दाल पानगिया, पूरन पोली, विशेष प्रकार की कढ़ी रोटा, बेर भाजी, ये ऐसे व्यंजन हैं जो आज के समय में स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है और हमारी परंपराओं से जिसको सदियों तक संरक्षित रखा उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और शेष विश्व भी इनसे परिचित हो सके, ये इनका बड़ा महत्व है। एक आपने अगरिया का पूछा है, अगरिया लोग जिस तरह से ये बहुत प्राचीन परंपरा है लोहा बनाते हैं कच्चे अयस्क से, लोहा अयस्क से, इनके लोहे की बड़ी विशेषता रही है उस लोहे में जंग नहीं लगती, वो अद्भुत हुनर है। अब थोड़ा सा कम होते जा रहा है लेकिन अभी भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इसको बनाते हैं। तो ये सारी चीजें जब दुर्लभ होने लगती है तो इनके संरक्षण की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार ने ये काम किया, जिससे भी बहुत महत्वपूर्ण है।
0: मध्य प्रदेश की

0: सांस्कृतिक विरासत राष्ट्रीय सूची में शामिल होने के बाद में यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में दावेदार हो गए हैं कि विश्व विरासत में भी शामिल हों। मध्य प्रदेश के लिए यह कितना लाभदायक सिद्ध होगा?
1: ये पूरी सांस्कृतिक विरासत के लिए, हमारी परंपराओं के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे समुदायों के लिए, हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सरकार ने इस पर गौर किया और हम तो सब कामना करेंगे कि इसको आगे की विरासत सूचियों में भी स्थान मिले।
0: यदि हम जनजातीय संग्रहालय की बात करें तो पारंपरिक व्यंजन हो या लोक कला हो, सबका संरक्षण करता है ये। इसमें क्या और महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जनजातीय संग्रहालय की?
1: देखिए, जनजातीय संग्रहालय शुरू से ही भारतीय कलाओं का, ये सौंदर्य बोध का एक अनूठा स्थान है और ये शुरू से ही जीवंत संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ सारी कलाओं का हम लोग प्रदर्शन भी करते हैं, संरक्षण भी करते हैं, प्रलेखीकरण भी करते हैं और उसको जीवित रखने के लिए भी संकल्पित हैं।
2: मित्रों, अभी आपने राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सम्मिलित मध्य प्रदेश की विरासतों के संबंध में जनजाति संग्रहालय के निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी को सुना और अब लोक गायन की खुशबू लिए आ रहा है ये गीत, आनंद लीजिए।

मित्रों, इसी गीत के साथ नमस्कार भोपाल का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल फिर मिलेंगे नए रंगों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। दीजिए अनुमति रुचि को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। कार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
4: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की

0: दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
1: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीति विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने

0: ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
2: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
3: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और मोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
5: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर

0: मारते ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्बार्क ऑन अ 6-डे विजिट टू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिगिनिंग टुडे।

श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच भारत में हर वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। इसके मनाए जाने के पीछे ये है कि इसमें वनों की कटाई को रोकने के प्रति जागरूक बनाया जाता है लोगों को, और अधिक से अधिक जो है वो पौधे लगाए जाते हैं और हरियाली को बढ़ावा दिया जाता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। और अब बारी एक खूबसूरत नगमे की।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1 लाख दो बन जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा इस वक्त आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, वन महोत्सव की शुरुआत जो है वो 1950 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है और जंगलों के विनाश को रोकना है, मिट्टी के कटाव को कम करना है जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, गैर सरकारी संगठन, सरकारी विभाग, ये सब मिलकर एक व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाए के संदेश के साथ पौधे रोपते हैं। फलदार पौधे लगाने पर भी विशेष जोर दिया जाता है ताकि लोगों को आजीविका और पोषण मिल सके। और अब बारी एक खूबसूरत नगमे की।

सबसे बड़ा शिक्षक है। जी हाँ बिल्कुल, समय जो है वो सबसे बड़ा शिक्षक है। ये हर अनुभव हमें सिखाता है। कहता है बड़ा सोचो बड़ा करो। सफलता विचार से शुरू होती है। गलतियाँ वही करते हैं जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। असफलता से भी सीखा जा सकता है। दूसरों के लिए वही करो जो तुम चाहते हो, यही सच्चा मानववादी है। तो कहते हैं ना श्रोताओं कि अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे तो हमें जो है उसका बदला भी अच्छा ही मिलेगी। और अब एक अच्छा सा प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।

तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। और इस कार्यक्रम में चलते चलते बस हम आपसे यही कहेंगे कि प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। तो बस अब इजाज़त दें हमें इस कार्यक्रम से। नमस्कार, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 6 दिन की विदेश यात्रा पर रहेंगे। पहले चरण में वे इंडोनेशिया पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे। 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचेंगे और 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड में रहेंगे, जो पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल के सतकड़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में 200 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल होंगे। इस परियोजना से 15,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शिवपुरी जिले के पाली में लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। वहीं करीब 211 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का ई लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को हिंदू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और प्रदेश में मानसून सक्रिय है। अब तक औसत 6.4 इंच बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रतलाम उज्जैन सहित अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम।
2: इस माह के रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ऐसे शहर की कहानी जो न केवल लोहे को

पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ बनाता है, बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण और लोकगीतों की धुन पर मुस्कुराता है। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान, आलेख है शाहिद अनवर का और इसे प्रस्तुत किया है राजीव रंजन तिवारी ने।

0: जोहार हिंदुस्तान, आज आकाशवाणी के इस राष्ट्रीय क्षितिज पर हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां पिघलते फौलाद की धमनियों में धड़कता है मिनी इंडिया। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आंखों में पलता हुआ सपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, संस्कृतियों का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर टाटा नगर, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1907, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उस सपने का नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नगर का जो केवल कारखानों का समूह नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है। ये शहर केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है, दूर दृष्टि ने सवारा है और लाखों हाथों ने अपनी श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंचे इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगों के बीच होता है। यही रिश्ता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज डीबी सुंदर रामम बताते हैं कि जमशेदपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है।
1: फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन है, जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी MDs आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, यूनियन, एवरीवन, सबका अलाइनमेंट एक ही है कि जमशेदपुर का नाम रोशन होना चाहिए। रिसेंटली वी वर डिक्लेयर्ड थर्ड बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी, तो कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि एक नंबर में क्यों नहीं आ सकता। वो दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी है, यही हम लोगों को आगे लेके चलता है एंड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द सिटी।
0: अमूमन बड़े औद्योगिक शहरों को प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जमशेदपुर में स्टील प्लांट के ठीक बगल में जुबली पार्क और सघन ग्रीन कवर यानी हरियाली है। उद्योग और पर्यावरण के इस बेहतरीन संतुलन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर टाटा स्टील का विजन साफ है, विशेषकर जब हम नेट जीरो कार्बन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। डीबी सुंदर रामम रेखांकित करते हैं।
1: आज के दिन जमशेदपुर डेफिनेटली वन ऑफ द बेंचमार्क प्लांट्स विद 2.2 टन ऑफ कार्बन इमिशन पर टन ऑफ क्रूड स्टील, बट इसको और हम कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिटीजन्स है, किसी का भी घर में, जिसका बंगलो है, घर है, कुछ भी है, अब देखेगा पेड़ पौधा जरूर रहता है, एवरी ईयर गार्डन कॉम्पिटिशन होता है एंड ऑल्सो लोगों में हम लोग लाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को यू हैव टू लव नेचर। आज के दिन आप हमसे पूछेगा तो अराउंड 28% जो है ग्रीन कवर किए हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे हम 33-35% करें। लास्ट 3-4 साल में बहुत सारा ओपन जिम आए हैं, पार्क्स आए हैं, जहां ये सबको हम लोग बढ़ावा देते हैं तो TMH में लोड कम होता है। बाकी जितना हमारा एनवायरमेंट पैरामीटर्स है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग 1,000-1,200 crores एवरी ईयर टू ब्रिंग इट टू लेवल वेयर पीपल इवन एट 500 meters। अपना भी ख्याल रखना है और शहर का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए हम लोग हर कदम उठाएंगे जिससे लोगों को ये नहीं असुविधा हो कि प्रदूषण यहाँ बढ़ा।
0: जमशेदपुर के बारे में एक बेहद

0: मशहूर पंक्ति कही जाती है, यहाँ टाटा स्टील शहर की देखभाल नहीं करती बल्कि शहर टाटा स्टील की देखभाल करता है। कंपनी और यहाँ के आम नागरिकों के बीच इस बेहद भावुक, आत्मीय और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अनूठे रिश्ते की जादुई बुनियाद क्या है, सुंदर रामम कहते हैं।
1: आज के जनरेशन के एम्प्लॉय से पूछेगा वो जरूर बोलेंगे हम थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है। कुछ एम्प्लॉय मिलेंगे जो बोलेगा फिफ्थ जनरेशन है। नॉट ओनली एम्प्लॉय, जितना शॉप है यहाँ पे, जितना एस्टेब्लिशमेंट है, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो उनके अंदर में भी लॉयल्टी है और हमारे अंदर में भी लॉयल्टी है कि जब हमको जरूरत है उस समय लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे। उस समय उनको भी जैसे कंपनी को तकलीफ हुआ उनको भी तकलीफ हुआ, बट फिर भी वो साथ दिए कंपनी का, इसलिए अभी ये पूरा टाटा फैमिली है। और ये भी बात हो रहा है कि हम लोग कूड़ा से कैसे बिजली को उत्पन्न कर सकेंगे या चारकोल को कैसे उत्पन्न कर सकेंगे, बहुत अच्छा अच्छा आइडिया सर है। जितना भी आइडिया है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए।
0: ईंट पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास, संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है। सड़कों के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता

0: या चारकोल में कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा आइडिया सर है, जितना भी आइडिया है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए।
1: ईंट पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है। सड़कों के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता विकास। यहाँ उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहभागी हैं, जैसे इस्पात और हरियाली ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो। यहाँ हर सड़क एक मंजिल की ओर जाती है और हर मंजिल किसी नए सपने का आरंभ बन जाती है। अगर उद्योग किसी राष्ट्र की शक्ति है तो विज्ञान उसकी बुद्धि है। जमशेदपुर की धरती पर विज्ञान ने भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं। यहाँ सन 1950 में स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश की धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब यहाँ के वैज्ञानिक भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं। विज्ञान में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं।
2: काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही है इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल में काम करती है, अपने फेरोलॉयज लेके जाती है, स्पेशलिटी फेरोलॉयज जो यूज होता है डिफेंस में, न्यूक्लियर सेक्टर में, ऑल दैट। ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो कंपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है, उनका ग्रेड अगर लो रहता है तो उसको एक ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रेड पे लेकर के आ जाए जहां से लेकर एक कंपनी अपना मेटल एक्सट्रैक्शन खुद से कर लेती है। कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ, अगले ही महीने वहां का वो रेल पटरी चक्का सब कुछ NML आ जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो स्टील क्रैक क्यों हुआ, टूट क्यों गया। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती है कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन यहां से होता है ताकि आगे जाकर की जो समस्याएं होने वाली है इनको रोका जा सके।
1: भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की हैं।
2: जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बन के आए हैं फॉर स्टार्टअप्स, फॉर यंग पीपल हु आर वांट टू एंटर इनटू केमिस्ट्री फील्ड, मैकेनिकल मेटलर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ फील्ड्स।
1: एक भटनागर पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अभिलाष का दृष्टिकोण हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है। आज के दौर में NML इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और औद्योगिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और सोने जैसे कीमती धातुओं को निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी वैश्विक परिदृश्य में इस शोध का काफी महत्व है। डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं।
2: हमारा उद्देश्य ये है, कचरे में जो बैटरी है उससे लेके जो मेटल आप हाई प्योर बनाते हैं उससे नई बैटरी अगर बन जाएगी, बैटरी की कॉस्ट 1/8 कम हो जाएगी। कल आपको जो ईवी का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है, शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें, एंड इंडिया बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। सो दैट इज व्हाट वी फील दैट द ग्रीन केमिस्ट्री व्हाट वर्क्स इन मेटलर्जी इज वेरी वेल सूटिंग फॉर ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्टील और नैनो मटेरियल्स जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं, और यही अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है। लेकिन विकास केवल कारखानों और प्रयोगशालाओं से नहीं होता, विकास के लिए चाहिए शिक्षित मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर। इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं, RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है।
3: NIT जमशेदपुर 31 NIT से देश का एक NIT है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही उपयोगिता है सोलर सेल में, तो अभी ये सोलर सेल रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट। रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकॉन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर हम लोग को नया नया में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फिर उपलब्ध कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं।
1: 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के

0: औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है। प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं,
1: इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कॉम्पिटिशन में गया। इधर से एक लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग को हम लोग भेजे थे। तो इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग ईवी, रोबोटिक्स, अभी AI का जो आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करता है।
0: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT जमशेदपुर भविष्य के उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे। प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सपना है, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट को पहले से ही तैयार करना बहुत जरूरी है। वो लोग को बोलना है जे भाई ये इट्स ए नॉट ए वन डे कंपटीशन, यू हैव टू टेक इट्स ए लॉन्ग टर्म, डोंट रन बिहाइंड द पैकेज। आप ज्ञान अर्जन करो और होलिस्टिक पर्सन बनने के लिए कोशिश करो, वही हम लोग का सबसे महत्व उद्देश्य है।
0: विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ ना मिले वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व दे रहा है। इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों।
2: मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस केवल एक विचार या नारा नहीं है बल्कि XLRI की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है जो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पैथी, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है।
0: विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए XLRI भविष्य के कॉर्पोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी जवाबदेह हों। शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में, लेकिन जमशेदपुर उन विरले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोक धुनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर ओढ़ा दी है। आदिवासी समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारे आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं।
3: किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये में लगाए। हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए। हम लोग कम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया, उस ऋषि मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उसमें और जिम्मेवारी लगा और जोश लगा तो और लगाने का मन किया। और उसके बाद हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए, तो उसके बाद हम लोग SHG ग्रुप का काम किया।
0: चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती हैं।
3: बहुत कोशिश किए, बहुत संघर्ष किए, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किया।

0: नहीं दे, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ, और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज में सेवा करते रहेंगे।
1: एक सुदूर गांव से राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री सम्मान पाने का चामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपनी आत्मीय आवाज में वो कहती हैं,
0: आज ये पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे करते ही रहूंगी।
1: प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं तो वहाँ जन्म लेती है सोहराय कला। सोहराय के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती हैं, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को पहचान देना है।
2: सोहराय पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाते हैं, कैनवस और दीवार में बना के समझाते हैं। अपनी भाषा को बचाए रखना है, उनको कहानी लिखना नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में, और युवाओं को समर्थन मिल रहा है। ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है, लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है।
1: हीरा मांझी की बातें हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है। वो कहती हैं, सोहराय पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है।
2: एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दूसरी तरफ शाम को नगाड़ा मादर की थाप घुसती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है, जहाँ हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारे जनजातियां कलाकारों विचारकों और साहित्यकारों की बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मा से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए जमीन को नहीं भूलना।
1: पर्वतों की चोटियां हो या जीवन की चुनौतियां, विजय उन्हें को मिलती है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर है तो ये खेलों का तीर्थ है। तरक्की और संस्कृति के साथ साथ जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल की बातें रोमांच से भर देती हैं।
3: आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में हर जगह पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है।
1: रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे वे जीवन के हर ऊंचे शिखर को फतह कर सकें।
3: मुझे बहुत खुशी होता जब हमारे प्रोग्राम में लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटी जाते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें ब्रेवरी नहीं होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं पूरा बदल के जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ लाइफ जिंदगी सार्थक है, और बार बार यही सोचती हूँ कि एक लाइफ एक जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत कुछ और भी करने के लिए।
1: साहस की इसी धरती ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं, जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो कहती हैं कि सफल खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनता है।
4: दीपिका जैसे कैडेट एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद हमारी एकेडमी से कोमलिका बनी, हमारी एकेडमी से कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और जूनियर भी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे, बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्चरी को एक जगह लेके गया है टाटा आर्चरी एकेडमी।
1: धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता, वो सपनों को भी नई उड़ान देता है।

0: फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, पर्वतारोहण, हर खेल में जमशेदपुर ने अपनी पहचान बनाई है। तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल प्रमुख और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के CEO मुकुल चौधरी कहते हैं,
1: इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी अकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे TFA से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक अकेडमी करती थी और इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रणिडी सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में तीन चार कहीं कहीं मिल जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया हमको, टाटा फुटबॉल एकेडमी को, फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडरशिप को देते हैं जिन्होंने इसका बारे में तब सोचा जब क्रिकेट अपने पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सारा कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था। तभी एक रेसिडेंशियल स्कूल पहली बार और वो भी जमशेदपुर में शुरू की गई और पूरे हिंदुस्तान से सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहाँ लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है TFA का।
0: आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में TFA अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं।
1: शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। काफी साल पहले TFA शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है, ये सारी चीजें नई हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंजरी ना हो और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है जो कि खासकर जमशेदपुर में काफी कम है हिंदुस्तान में, उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उसके अलावा फॉरेन एक्सपोजर, हर बैच जो हमारे आता है 4 साल के लिए हमारे साथ रहता है तो एक साल उनको बेसिकली एक महीने के लिए हम यूजुअली फॉरेन एक्सपोजर देते हैं ताकि उनको बाहर किस लेवल का फुटबॉलर, ज्यादातर ये यूरोप में होता है क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व है और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने सेल्फ बिलीफ भी बनाए कि आपको भी इस स्तर पे जाके खेलना है। ISL में भी काफी प्लेयर है, इनफैक्ट टीम में ओवरऑल 8 प्लेयर है जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो कोशिश यही है कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को एनकरेज करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट दें।
0: हॉकी भारत के दिल में बसती है और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीनी स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में अकादमी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं नवल टाटा हॉकी अकादमी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरमीत सिंह राव।
2: हमारे दो बच्चे एट प्रेजेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पोडियम फिनिश कर चुके हैं, वो भी गोल्ड एशिया कप, और उसी के साथ में एक बच्चा हमारा हाईएस्ट स्कोरर का परफॉर्मेंस उठाता है। तो ये एक हमारा एक एग्जांपल सेट होता है, आशीष तानीपुरती जिसने हैट्रिक भी मारी है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों मैचेस में और उसी के साथ में उसने हाईएस्ट स्कोरर का भी खिताब उठाया है। तो ये एक एग्जांपल सेट करता है हमारी एकेडमी किस लेवल पे काम कर रही है।
0: योजनाएं भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने की है।
2: हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल, सिनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के, जिसमें अराउंड 4,000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल के बीच में। इसी से बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट सेंटर्स जहाँ पे उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, अच्छी किट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस RDC लेवल से हम शॉर्टलिस्ट करके नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेकर आते हैं। ये एक्चुअली पूरा रोड मैप है हमारा।
0: मैदान में दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शहर को समझने के लिए उसके लोगों की स्मृतियों में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक झलक हमें मिलती है टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं।
3: जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आँखों के सामने एक बिल्कुल अलग जमशेदपुर तैर जाता है। वह सादगी का दौर था जब

0: सायरन से पूरा शहर अपनी घड़ियां मिलाता था, सड़कों पर साइकिलों का तांता होता था। शाम को साक्षी या बिष्टुपुर के बाजारों में थके हारे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन दिलों में आत्मीयता बहुत गहरी थी। शहर का रूप रंग बदला है, लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाने वाला एक एग्जीक्यूटिव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मानदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं, बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की पेंटिंग का सौंदर्य यहाँ एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है, इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आंधी ने कभी भी हमें हिलाया नहीं है। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है।
1: काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस बात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्मनिर्भरता की नई इबारत, जहाँ की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत, प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आंखों का उजाला है। जमशेदपुर जहाँ कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जहाँ प्रयोगशालाओं में भविष्य आकार लेता है, जहाँ खेल मैदान में आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहाँ संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी रहती है और जहाँ विकास का अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है और उस सपने का नाम है मिनी भारत। उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है। तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे, जोहार जमशेदपुर, जोहार हिंदुस्तान।
2: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख शाहिद अनवर, वाचन स्वर तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन था राजेश कुमार राय का। जमशेदपुर केंद्र के द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: अभी आप सुन रहे थे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम आईना।

0: पौधे से दरख्त बनने तक हर लम्हा उनका ख्याल रखते हैं, क्योंकि एक बागबान ही जानता है कि बागबानी का सही वक्त कौन सा है। बागबानी से मुतालिक और भी तफसील से जानने के लिए आइए हम सुनते हैं एक तकरीर जिसका उन्वान है बागबानी का सही वक्त, और मुकर्रर हैं मोहम्मद हाशिम अंसारी। समाअत फरमाइए।
1: शजर अरबी जबान का लफ्ज़ है जिसके माना दरख्त या पेड़ के हैं, कार के माना काम के हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि शजरकारी से मुराद दरख्त लगाने का काम है जिसको इंसान अपने हाथों से अंजाम देता है। अजल से ही आदम अलैहिस्सलाम और दरख्त का रिश्ता चला आ रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शजर ममनुआ का फल खाने की वजह से ही जन्नत से बेदखल किया गया था, इसलिए दरख्त शुरू ही से इंसान के दोस्त हैं। दरख्त माहौल को खुशगवार बनाने और ख़ूबसूरती बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये हमें साफ़ सुथरी हवा फराहम करते हैं, तूफ़ानों का ज़ोर कम करते हैं, आबी कटाव को रोकते हैं, आबो हवा के तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं। एक दरख्त 36 नन्हे बच्चों को ऑक्सीजन फराहम करता है और 2 पूरे ख़ानदानों को 10 दरख्त 1 टन एयर कंडीशनर जितनी ठंडक मुहैया करते हैं। ये दर्जे हरारत को भी एतदाल तवाज़ुन बख्शते हैं। दरख्त फ़िज़ाई जरासीम अपने अंदर जज्ब करते हैं, नीज़ इंसानों और हैवानात की ग़िज़ाई ज़रूरियात फराहम करते हैं। चरिंद परिंद और मुतअद्दिद हैवानात का मस्कन भी ये दरख्त हैं। ये दरख्त अदवियात का मखज़न हैं, अदविया के लिए उनकी छाल, पत्ते, बीज, फूल और फल सब इस्तेमाल होते हैं। ये दरख्त ही हैं जो कई सालों के अमल के बाद कोयले में तब्दील होकर तवानाई का वसीला बनते हैं। शजरकारी से मोहब्बत इंसानियत से मोहब्बत है, क्योंकि ये दरख्त ऑक्सीजन मुहैया करके हमारी ज़ीस्त का सामान पैदा करते हैं। शजरकारी बागात और जंगलात की अहमियत उस वक्त मज़ीद बढ़ जाती है जब चारों तरफ आलूदगी बसेरा डाले हो, साफ़ व शफाफ हवा के लिए जिस्म तरसता हो और जहर आलूद हवाएँ नस्ल इंसानी को घुन की तरह खा रही हों। दौर जदीद की साइंस और टेक्नोलॉजी ने जहाँ इंसान की सहूलत और आसानी के लिए लामहदूद और अनगिनत वसाइल मुहैया किए हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में इंसान को बाम अरूज पर पहुँचाया है, वहीं उसके लिए मुख्तलिफ अमराज व आफात और बीमारियों के सामान भी फराहम कर दिए हैं। सनती तरक्की के इस दौर में हर तरफ आलूदगी छाई हुई है, हवा, पानी और ज़मीन पर दीगर हयातियात अपनी खसूसियात खो रही हैं जिनकी बका का मसला पैदा हो गया है। फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी, सौती आलूदगी, समंदरी आलूदगी, तेज़ी से बढ़ती फैक्ट्रियाँ, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, फ़िज़ाई और बहरी जहाज़ों का धुआं, मुख्तलिफ सनअतों के फजलात से मसला मज़ीद पेचीदा होता चला जा रहा है। दरख्तों की कटाई और कमी से ग्लोबल वार्मिंग के खतरात बढ़ते जा रहे हैं जिसके नतीजे में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम हो रही है और पीने के साफ़ पानी के फ़ुकदान के बाइस पूरी इंसानियत शदीद खतरात से दोचार होने जा रही है। दर्जे हरारत के इजाफे से पहाड़ों से बर्फ़ तेज़ी से पिघलने लगी है जिससे समंदर की सतह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और मुस्तकबिल में तुगयानी से शहरों के ज़ेर आब आने के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। दरख्तों के घने जंगल को कुदरती सिंक कहा जाता है जो आसपास की सारी कार्बन चूस लेते हैं। पहाड़ों पर फैले जंगलात लैंडस्लाइडिंग के खिलाफ मजबूत हिसार होते हैं। ये बारिशों का बहुत बड़ा वसीला हैं जिनसे धरती की आबियारी होती है। यही बारिशें मौसमी एतदाल का बाइस बनती हैं। खालिक कायनात ने मखलूक़ात और दीगर मज़ाहिर कायनात की तख्लीक़ को इस तरह मरबूत किया है कि ये सिलसिला बग़ैर किसी रुकावट के जारी चला आ रहा है। अल्लाह ने इंसान को नबातात के फूलने फलने का ज़रिया बनाया है जिसकी वजह से फ़िज़ा में तवाज़ुन कायम है, लेकिन अगर उसमें किसी तरह की मुदाखलत की जाए तो तवाज़ुन में खलल पैदा हो जाता है और उसके बराह रास्त नुकसानात इंसानों और दीगर मखलूक़ात को भुगतना पड़ते हैं। शजरकारी न सिर्फ सुन्नत रसूल है बल्कि उसकी अहमियत ज़माने कदीम से है। दरख्तों से मोहब्बत करना और उनका ख्याल रखना कई अकवाम की तारीखी, तमद्दुनी और माशरती अकदार का हिस्सा रहा है। फराइना मिस्र के यहाँ रिवाज था कि मरने वाला कब्र की दीवार पर अपनी नेकियों और अच्छाइयों की फहरिस्त दर्ज कराता। एक बादशाह ने तहरीर किया, मैंने दरख्त नहीं काटे, दरियाए नील का पानी गंदा नहीं किया। अहले शाम एक दूसरे के घर जाते हैं तो बतौर तोहफा पौधे ले जाते हैं। अहले दमिश्क घरों की छतों पर भी पौधे लगाते हैं। लंदन में एक इमारत स्काई गार्डन के नाम से मशहूर है जिसकी आखिरी छत पर पौधों के दिलकश मनाजिर को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। ہالینڈ مہر پیدا ہونے والے

0: दोस्तों, अभी आप गुलुकार गुलाम अली से उनकी दिलकश आवाज में गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था कतील शिफई का। सामईन, प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं उर्दू जबान से मोहब्बत करने वाली एक उभरती हुई शायरा अपर्णा पात्रीकर से उनका कलाम, उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं की जुबानी समात फरमाइए।
1: पहली नज्म आप तक पहुंचा रही हूं, इस नज्म का उनवान है रंग। इस नज्म को समात फरमाएं कि कौन सा रंग तेरे नाम में लिखूं कह दे, कौन सा रंग तेरे नाम में लिखूं कह दे, क्या तेरे रंग का उनवान मैं रखूं कह दे। रंग तेरा जो तुझसे होके इधर आया है, हाँ उसी का तो ये खुश रंग असर आया है। रोशनी में जो घुली है कोई रंगीनी सी, क्या फलक पे मेरे रंगीन कमर आया है। तेरी सोहबत ने किया ऐसे सराबोर मुझे, जैसे बादल कोई रंगों भरा झर आया है। एक रंगे हया है सुर्ख है आरिस जिससे। अब मैं उन तमाम रंगों की जानिब आपको ले चलूंगी जिन रंगों को मैंने इस नज्म में पिरोया है। कि एक रंगे हया है सुर्ख है आरिस जिससे, एक वो रंग जो है रत से उभर आया है, एक वो जो कि चढ़ा है देखते ही तुझको और, एक कुर्बत से तेरी रुख पे उतर आया है, एक वो सब्ज किया जिसने मेरे ख्वाबों को, एक वो सब्ज किया जिसने मेरे ख्वाबों को, एक वो जर्द जिसे लेके ये डर आया है, एक नीला जो सुकून लाया है मिलकर तुझसे, एक नीला जो सुकून लाया है मिलकर तुझसे, रंगे शफाफ जो नीयत में नजर आया है, रंगे शफाफ जो नीयत में नजर आया है। और आखिरी बंद इस नज़म का कि इश्क का रंग गुलाबी यूं घुला धड़कन में, इश्क का रंग गुलाबी यूं घुला धड़कन में, और दिल रंगे सियाही से मुकर आया है, और दिल रंगे सियाही से मुकर आया है। कौन सा रंग तेरे नाम में लिखूं कह दे, क्या तेरे रंग का उनवान में रखूं कह दे। इसी के साथ मैं अपनी एक गज़ल की ओर आपको ले चलती हूँ। इसका मतलब कुछ यूँ है कि गमे इस्तराब क्या है वही शौक़ है आशिकाना, गमे इस्तराब क्या है वही शौक़ है आशिकाना, जहाँ जाके लौटना है उसी दर पे रोज़ जाना। गमे इस्तराब क्या है वही शौक़ है आशिकाना, जहाँ जाके लौटना है उसी दर पे रोज़ जाना। और शेर यूँ के मिले दाद हौसले को कि ये शौक़ रंग लाए, मिले दाद हौसले को कि ये शौक़ रंग लाए, मेरा काम सब्र रखना तेरा रोज़ आजमाना, मेरा काम सब्र रखना तेरा रोज़ आजमाना। इस शेर को भी आप गौर से सुने, ये मेरे पसंद का शेर है कि मेरा मुख्तलिफ़ बयां है, मेरा मुख्तलिफ़ बयां है तेरा मुख्तलिफ़ है लहजा, मेरा मुख्तलिफ़ बयां है तेरा मुख्तलिफ़ है लहजा, जो मेरे लिए हकीकत वो तेरे लिए फसाना, जो मेरे लिए हकीकत वो तेरे लिए फसाना। और शेर यूं भी कि किसी और दर से अब क्या मेरा वास्ता या हसरत, किसी और दर से अब क्या

मेरा वास्ता या हसरत जहाँ सर झुका दिया है वहीं अश्क है बहाना, जहाँ सर झुका दिया है वहीं अश्क है बहाना। और ये शेर भी सुने कि मेरे दिल की तरबियत है, मेरे दिल की तरबियत है मेरी ये अजीब आदत, मेरे दिल की तरबियत है मेरी ये अजीब आदत, वो जो बात भूलनी हो उसे और याद रखना, वो जो बात भूलनी हो उसे और याद रखना। और इस गज़ल का आखिरी शेर पेश कर रही हूँ, जिसे हद से आगे ढूँढा, जिसे हद से आगे ढूँढा, जिसे हद से आगे चाहा, बा जुनून बेनियाजी उसे छू के लौट आना, बा जुनून बेनियाजी उसे छू के लौट आना, गमे इस्तराब क्या है वही शौक आशिकाना, जहाँ जा के लौटना है उसी दर पे रोज़ जाना। मतला जो है इस गज़ल का को सुने कि किस हक से मैं निकालूं एक नुक्स भी किसी में, किस हक से मैं निकालूं एक नुक्स भी किसी में, तब जबकि एक नाकिस रहता है हम सभी में, किस हक से मैं निकालूं एक नुक्स भी किसी में, तब जबकि एक नाकिस रहता है हम सभी में। और ये शेर सुने ये हम सबकी दर हकीकत बात है कि आंगन में है खुशी गम दहलीज पर खड़ा है, आंगन में है खुशी गम दहलीज पर खड़ा है, ये सिलसिला अजल से कायम है ज़िंदगी में, ये सिलसिला अजल से कायम है ज़िंदगी में। और शेर यूं भी कि क्यों ज़ख्म ज़ख्म मेरे ये पाँव हो गए हैं, क्यों ज़ख्म ज़ख्म मेरे ये पाँव हो गए हैं, तुम जानना जो चाहो चलना मेरी गली में, क्यों ज़ख्म ज़ख्म मेरे ये पाँव हो गए हैं, तुम जानना जो चाहो चलना मेरी गली में। रिश्तों के हवाले से ये शेर सुने के रिश्ते तमाम खोए आलम यह है कि अब तो, रिश्ते तमाम खोए आलम है ये कि अब तो, खुद से भी बेखुदी है इस खपते जरकशी में, रिश्ते तमाम खोए आलम यह है कि अब तो, खुद से भी बेखुदी है इस खपते जरकशी में। और इस गज़ल का आखिरी शेर कोशिश तमाम करके एक याद ही बनी बस, कोशिश तमाम करके एक याद ही बनी बस, लौटा सका न कोई वो वक्त फिर घड़ी में, लौटा सका न कोई वो वक्त फिर घड़ी में, किस हक से मैं निकालूं एक नुक्स भी किसी में, तब जबकि एक नाकिस रहता है हम सभी में। एक गज़ल थोड़ी बड़ी बहर की सुने के रगे जाँ में सांस की तरह बह, रगे जाँ में सांस की तरह बह के लहू की तरह बदन में आ, रगे जाँ में सांस की तरह बह के लहू की तरह बदन में आ, ये बदन ये जाँ है वतन तेरा तू खुशी से अपने वतन में आ, ये बदन ये जाँ है वतन तेरा तू खुशी से अपने वतन में आ। और शेर सुने मोहब्बत के लम्हों की बात है ये कि तेरे लम्स के एहसास में मेरे गुम से होशो हवास में, तेरे लम्स के एहसास में मेरे गुम से होशो हवास में, मुझे है कबूल ये दश्त भी, मुझे है कबूल ये दश्त भी मैंने कब कहा है चमन में आ, मुझे है कबूल ये दश्त भी मैंने कब कहा है चमन में आ। और शेर यूं कि तेरे अक्स को कई तरह से, तेरे अक्स को कई तरह से मैं उकेरती रहूं उम्र भर, तेरे अक्स को कई तरह से मैं उकेरती रहूं उम्र भर, मेरी हर गज़ल में तू लफ्ज़ बन, मेरी हर गज़ल में तू लफ्ज़ बन तू ख्याल बन के सुखन में आ, मेरी हर गज़ल में तू लफ्ज़ बन तू ख्याल बन के सुखन में आ। और शेर यूं कि मेरे साथ तेरे उरूज का ये जहान भी तो है मुंतज़िर, मेरे साथ तेरे उरूज का ये जहान भी तो है मुंतज़िर, मेरी बात सुन मेरे साथ चल मेरी जान फिर से चलन में आ, मेरी बात सुन मेरे साथ चल मेरी जान फिर से चलन में आ। शेर आखिर इस गज़ल का कि मेरे रुख पे दुख की ये सिलवटें, मेरे रुख पे दुख की ये सिलवटें हैं नसीब की ये लिखावटें, मेरे रुख पे दुख की ये सिलवटें हैं नसीब की ये लिखावटें, तेरा क्या कसूर है इसमें तू, तेरा क्या कसूर है इसमें तू न मलाल रख न शिकन में आ, तेरा क्या कसूर है इसमें तू न मलाल रख न शिकन में आ, रगे जाँ में सांस की तरह बह के लहू की तरह बदन में आ, ये बदन ये जाँ है वतन तेरा तू खुशी से अपने वतन में आ। और सिलसिला चल निकला है तो मैं एक नज़्म आप तक फिर पहुंचाना चाहूँगी। नज़्म का उनवान है गम क्या है, ये तेरा और मेरा गम क्या है, ये तेरा और मेरा गम क्या है, हैरत और रंज की अकजाई है,
जाने कैसी ये शना।

0: साई है, सुबह शाम वही वहशत है, हम में ना फासला ना कुर्बत है, ना हकीकत है ना असरार कोई, हम में तुम में जो है तकरार कोई, जाने किस बात के मुतालिक है, जीस्त की कौन सी सच्चाई है, ये तेरा और मेरा गम क्या है। अगला बन सुने कि चंद हालात हैं आशुफ्ता से, गलतियां दौर ए गुजिश्ता से, बोझ कुछ तरबियत ने डाले हुए, वहम कुछ जहनो दिल के पाले हुए, कुछ मरासिम जो निभाए न गए, कुछ गिले लब पे जो लाए न गए, कुछ हवादिस है कुछ तगाफुल है, और किस्मत की भी आराई है, ये तेरा और मेरा गम क्या है। अगला बनियों की एक लौ है जो कि अफसुरदा है, और खुद का जो खुद से ही पर्दा है, होश तकसीम है फर्जो हक में, एक अरसा हुआ हम है शक में, सच के इंसान है या है नकली, या किसी और की है कठपुतली, क्या नज़ारा है ये नाजिर के सिवा, जाने किस तरह की बिनाई है, ये तेरा और मेरा गम क्या है। आखिरी बंद इस नज़्म का मैं पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगी कि ज़ख्म नासूर हुए जाते हैं, फिर भी कांटों से छुए जाते हैं, और हम है कि इसी हालत में, ज़िंदा रहने की बुरी आदत में, बेगुनाही की सज़ा सुनते हैं, खुद ही फिर अपनी कज़ा चुनते हैं, ये बता दे कोई तो बेहतर हो, उम्र किस जुर्म की भरपाई है, ये तेरा और मेरा गम क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।
1: दोस्तों, अभी आप शायरा अपर्णा पात्रीकर से उनका कलाम समाप्त फरमा रहे थे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम आईना यहीं खत्म होता है। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा, अपने खतूत के जरिए हमें जरूर मुत्तला करें। हमारा पता नोट कीजिए, उर्दू प्रोग्राम आईना, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462002। अब आपके दोस्त वाजिद खान को दीजिए इजाजत। आदाब।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे, वाचन स्वर दीपा सिंह। छतरपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले के विकास कार्यों की एक एक कर समीक्षा की गई। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने, हर घर नल जल योजना पूरी होने पर पंचायतों को हैंड ओवर करने और नियमित पानी सप्लाई के निर्देश दिए गए। जनप्रतिनिधियों से भी अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की लगातार निगरानी करने को कहा गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जिले में पल्स पोलियो अभियान चलाया। पहले दिन पोलियो बूथों पर और उसके बाद घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जिले में करीब 3,04,000 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए 2,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए। अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने की। जल संरक्षण को लेकर चल रहा जलगंगा संवर्धन अभियान भी अब सम्पन्न हो गया।

गया है। समापन कार्यक्रम मोटे के महावीर परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार शामिल हुए। उन्होंने प्राचीन बावड़ी के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया और लोगों से बारिश के पानी को बचाने, जल स्रोतों की सफाई और खेतों में मेड़ बंधान तथा तालाब बनाने की अपील की। जिले के युवाओं के लिए जिला प्रशासन ने लोक सेवा गुरुकुल और सेंट्रल लाइब्रेरी की शुरुआत की है। यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग मिलेगी। आज से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी खुद विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरी तरफ जिले के सरकारी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र की पढ़ाई भी नियमित रूप से शुरू हो चुकी है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुंचने और बेहतर पढ़ाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं लापरवाही मिलने पर कुछ शिक्षकों के वेतन काटने और समूहों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई भी की गई। छतरपुर में बन रहा मेडिकल कॉलेज अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर हॉस्टल, ऑपरेशन थिएटर, क्लासरूम, इमरजेंसी और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। किन बेतवा लिंक परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को लेकर कलेक्टर पार्थ जायसवाल और पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने करोंदिया पहुंचकर विस्थापित परिवारों से मुलाकात कर सुविधाओं का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त बोरवेल कराने के निर्देश दिए और विस्थापित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर आयोजित करने को कहा। उन्होंने डूढ़न और खरियानी गांव का भी दौरा कर उन ग्रामीणों से चर्चा की जिन्होंने अभी तक अपने आवास खाली नहीं किए हैं। मॉनसून की दस्तक के बाद जिले में किसानों ने खरीफ की बुआई तेज कर दी है। अब तक 70% से ज्यादा रकबे में बोनी हो चुकी है। किसान मूंगफली, उड़द, सोयाबीन की फसल लगा रहे हैं। कृषि विभाग और किसान FPO के माध्यम से उन्नत बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिले के जरूरतमंद मरीजों के लिए भी राहत की खबर है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित 7 लोगों को मुख्यमंत्री स्वच्छ अनुदान मद से इलाज के लिए कुल 3.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। प्रशासन ने अवैध खनिज परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। खनिज विभाग ने 5 मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 17,45,300 रुपए का जुर्माना लगाया है। छतरपुर के लक्ष्मण कॉलोनी सटई रोड में बाल विभाग की सूचना मिलने पर महिला बाल विकास, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया। टीम ने दोनों पक्षों को समझाते हुए बाल विवाह करने पर कानूनी कार्रवाई और सजा के प्रावधानों की जानकारी भी दी। छतरपुर के मऊ सहानिया में 2 दिवसीय विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें महाराजा छत्रसाल के शौर्य वीरता ने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। समापन दिवस पर मुस्कान चौरसिया ने बुंदेली गायन और संप्रिया पूजा ने पनभानी शैली में महाभारत का प्रसंग प्रस्तुत किया। अंतिम प्रस्तुति सुमित मिश्रा द्वारा संयोजित धन्य धन्य बुंदेल धरा रही, जिसमें कविता शर्मा के गीतों के साथ 16 लोक नृत्य कलाकारों ने बुंदेलखंड की गाथा प्रस्तुत की और अंत में बात विश्व योग दिवस की। जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह परिसर में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 2,000 से ज्यादा लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार भी शामिल हुए और प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी लोगों ने देखा। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे ज़िले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी छतरपुर ज़िले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे का था, वाचन था दीपा सिंह का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत सागर।

गीत सागर कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीत सागर में। श्रोताओ, अक्सर हम सुनते रहते हैं मौसम के अलर्ट के बारे में कि मौसम का ये अलर्ट आया है या मौसम का वो अलर्ट आया है, चाहे वो समाचार पत्रों में हम पढ़ें, समाचारों में सुने या फिर मोबाइल पर आने वाले मौसम के अलर्ट। इसका क्या मतलब होता है कई बार दिमाग में आता है बच्चों के भी, और कुछ लोग जानते भी हैं इसके बारे में और कुछ लोगों को कुछ

इसमें सवाल भी होते हैं कि आखिर ये क्या होता है, कभी ऑरेंज अलर्ट या कभी रेड अलर्ट। तो हम इन अलर्ट्स के बारे में इस कार्यक्रम में बात करते चलेंगे और जानेंगे इन अलर्ट्स के बारे में। पहले ये प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, कभी मोबाइल पर या समाचारों में बताया जाता है कि आज ऑरेंज अलर्ट है, तो ऑरेंज अलर्ट का मतलब क्या है? ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि मौसम ख़राब हो सकता है, तेज़ बारिश, तेज़ हवा या आंधी आने की संभावना है, इसलिए लोगों को पहले से ही सावधान रखने के लिए ये संदेश भेजा जाता है। और ऑरेंज अलर्ट आने पर घर से हमें बाहर निकलना चाहिए या नहीं, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाहर जाने से बचना चाहिए, मौसम की जानकारी देखते रहना चाहिए और सुरक्षित जगह पर रहना सबसे अच्छा होता है।

तो श्रोताओं, हमने जाना कि ऑरेंज अलर्ट का क्या मतलब होता है। हम जान लेते हैं कि रेड अलर्ट क्या होता है। और ये रेड अलर्ट का मतलब होता है कि ये एक गंभीर चेतावनी होती है। इसका मतलब होता है कि बहुत तेज़ बारिश, बाढ़, तेज़ तूफान या दूसरी जो ख़तरनाक स्थितियाँ हैं उसके आने की संभावना है। ऐसे समय में लोगों से घर के अंदर रहने और प्रशासन के निर्देश मानने को कहा जाता है। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि रेड अलर्ट और येलो अलर्ट में क्या अंतर है और ये किस तरह से जो है वो हमें अलर्ट करते हैं।

तो श्रोताओं, एक सवाल मन में और आता है कि क्या ये जो अलर्ट हैं वो सिर्फ बारिश के लिए आते हैं? तो कह सकते हैं कि नहीं, ये अलर्ट तेज़ गर्मी, ठंड, आंधी, चक्रवात और दूसरे ख़तरनाक मौसम के लिए भी जारी किए जाते हैं। और ये अलर्ट कौन भेजता है? तो ये अलर्ट जो है वो हमारे देश में भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम का अध्ययन करता है। और जब किसी इलाके में ख़राब मौसम की संभावना होती है तो वहीं लोगों को समय रहते अलर्ट जारी करता है। तो इस तरह से हम अलर्ट के बारे में समझ सकते हैं। तो हमें इस अगर हमारे मोबाइल पर या हमें समाचारों के द्वारा अलर्ट के बारे में बताया गया है तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले घबराना नहीं है, जो अलर्ट भी आता है तो उसको ध्यान से हमें पढ़ना है, परिवार के बड़ों को बताना है और मौसम विभाग या प्रशासन की सलाह का पालन करना है। बस इतना सा काम करके हम जो है वो सुरक्षित रह सकते हैं।

तो श्रोता, आप कह सकते हैं कि ऑरेंज अलर्ट का मतलब है हमें सावधान रहना है, और रेड अलर्ट का मतलब है पूरी तरह सुरक्षित रहना है और संबंधित निर्देशों का पालन करना है। मौसम के अलर्ट हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि समय रहते सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए भेजे जाते हैं। इसलिए अलर्ट को हमेशा गंभीरता से लें और सही जो सलाह है उसका पालन करें। तो अब इस जो गीत सागर कार्यक्रम है हमारा, इससे हमें इजाज़त दें, क्योंकि अब गीत सागर कार्यक्रम संपन्न करने का वक्त हो चला है। तो इजाज़त दें हमें इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सागर, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद निसार हुसैन खां का गायन। राग है भटियार।

0: बलिदान।
1: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना उस्ताद निसार हुसैन खान का गायन, राग था भाटियार। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे आज इंडोनेशिया पहुंचकर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे। 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचेंगे। 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड में रहेंगे, जो पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। इस परियोजना से 15,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को हिंदू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल विकसित भारत जी रामजी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने योजना के संचालन के लिए 25,863 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उनका योगदान प्रेरणादायक है। और मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रतलाम, उज्जैन सहित अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अनाड़ी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीतकार थे समीर और रतुस, बनाई थी आनंद मिलंद ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

कश्मीर की कली इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, SH बिहारी की बोल थी और तज बनाई थी OP नैयर ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू के युगल सुरों में ये दिलगी फिल्म का नगमा।

फिल्म संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में रानी मलिक के लिखे हुए नगमे को, जिसे तर्ज से सजाया है अनु मलिक ने, और फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में आनंद असद भोपाली के लिखे बोलों को, जिसकी तर्ज बनाई है राम लक्ष्मण ने। तो आइए सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये नगमा।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म का गीत। गीतकार थे परवीन और संगीतकार थे डब्बू मलिक। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे हम तुम पे मरते हैं फिल्म का नगमा, जिसे गाया था लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। आनंद बख्शी के बोल थे और तर्ज बनाई थी उत्तम सिंह ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल सुरों में मिस्टर बेचारा फिल्म से ये नगमा, इसे लिखा है नवाब आरजू ने और तर्ज बनाई आनंद मिलंद ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे आज इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे और 10 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे, जो पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आज भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में 200 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल हो रहे हैं। इस परियोजना से 15,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश पार्गो को हिंदू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण 13 जुलाई से शुरू होगा। अभियान में 5,72,000 पशुपालकों को भेंट करने का लक्ष्य है। शौर्य स्मारक भोपाल में कल आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश कार्यक्रम। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सरमति पंचोलिया। बड़वाह से प्रवीण, शिमाली, मीना, आदित्य, आदिति, शिवानी और मीनूराज शिमाली। तो आइए आप सभी की पसंद पूरी करते हैं और आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का मर्डर फिल्म का ये नगमा, जिसे आमिर जमाल ने आवाज़ दी है। सईद कादरी के बोल हैं और अनु मलिक की तर्ज। तो आइए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए, अब सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। संभाजी नगर से राजेश, राजदीप, राशि और शीतल। आप सभी ने सुनना चाहा है बरसात फिल्म का नगमा, आवाज़ें सोनू निगम और अलका याग्निक की, गीतकार समीर और तर्ज बनाई नदीम श्रवण ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

शाहजहाँपुर से मनमोहन राजावत, राज मधुराशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, रिया, रीत, ऋषभ और इनके परिवार के सदस्य, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर और आरती। आप सभी ने सुनना चाहा है बरसात की रात फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी की बोल हैं 10 बनाई रोशन ने।

सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हमीदा, अस्मा, सालिया, शुएब, मुश्तबा, रऊफ़ और शाहिद। गांधीबाग अकोला से रमेश और वैशाली। मुरादाबाद से अयूब खान, इरम, गुड़िया और शुएब। आप सभी ने सुनना चाहा है क्रिश फिल्म का नगमा सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। इब्राहिम अश्क के बोल हैं और राजेश रोशन ने इसकी तर्ज बनाई। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं क्रिश फिल्म से ये नगमा।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक हंसना मना है का पांचवा भाग।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। वैलेंटाइन डे किसी को अच्छा लगा तो किसी को बुरा, कोई खुश हुआ तो कोई खफा हो गया। अरे लाख मना करें आप, मगर गोपाल तिवारी कहां मानने वाले।
1: एक फेस्टिवल अभी घुसपैठिए की तरह हिंदुस्तान में घुसाया, और घुसा ऐसे कि हिंदुस्तान तो त्योहारों का देश है, यहाँ तो हर दिन त्योहार है। कैसे त्योहार? बैठकी, भैया दूज, धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली, पंचमी, छठ, नागपंचमी, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, दशहरा, गन्ना ग्यारस, भीमसेनी द्वादशी, धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली। अब ये बताओ कौन सा दिन खाली। मतलब त्योहारों का देश हिंदुस्तान, लेकिन जिन देशों में त्योहार नहीं है अब वो क्या करें, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। यार हिंदुस्तान तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे रोज त्योहार है, वहाँ कभी कुछ पकवान बन रहे हैं, कभी होली खेली जा रही, तो कभी ईद, तो कभी दिवाली, तो कभी क्रिसमस। यानी स्वर्ग की कहीं कल्पना है तो हिंदुस्तान में है, क्योंकि विश्व के जितने त्योहार हैं उसमें से अधिकांश हिंदुस्तान उसका जनक है। एक त्योहार विदेश से आया और वो त्योहार धीरे धीरे संक्रमित कर रहा है हमारी युवा पीढ़ी को, उस पर एक व्यंग है और मजा लीजिए। मैं उसके विरोध में भी बात नहीं कर रहा, उसके पक्ष में भी बात नहीं कर रहा, केवल आनंद लेने की बात है। आइटम का नाम है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे एक ऐसा त्योहार जिसे पाश्चात्य संस्कृति में मनाया गया, जिस दिन किसी संत ने यह कहा कि हम एक दूसरे में प्यार बांटें, एक दूसरे

0: के साथ स्नेह बांटे, ये इसका सच्चा मैसेज था। और अभी जो उसका जो रूप हो गया है विकृत, वो भी हम देखेंगे इस आइटम के अंदर। वैलेंटाइन डे के कम 2-4 दिन पहले लड़कों में विशेष तैयारी होती, और कैसी तैयारी वो देखिए साहब, लड़कों की तैयारी। 4-6 लड़के हैं और लड़कों में चर्चा चल रही है, कहे तुम यार संजू कैसा क्या तुम्हारा कल यार, अरे यार गुरु यार जींस ले ली है, अब टी शर्ट की यार जुगाड़ नहीं हो रही, तुम दिलवा दो यार, तुम्हें काम करो 20 पड़े हैं, हाँ पड़े तुम्हें काम करो, वहाँ चलो वहाँ गोल बाजार के वहाँ, वहाँ सब सेकंड हैंड मिलते हैं, अरे कोई पहचान जा, अरे कचने पर दे रहे हो चलेंगे यार, तुम्हारी क्या व्यवस्था यार, अरे यार जब क्या हुआ पिछले बार कुर्ता पहन के गए रहे तो वो यार उन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं, इस बार क्या व्यवस्था तुम्हारी यार, यार लेदर वाली जैकेट मिल जाए, अरे तुम भी बड़े भाई ना उधारी के चक्कर में हर समय रहते, तुम आओ एक काम करो शाम को आओ, हम दिलवाते हैं वो चच्चा की है, हम दिलवा देंगे सेटिंग से, चिंता नहीं करो तुम, तुम्हारी क्या व्यवस्था यार, यार मतलब कुर्ता मिल गया, हाँ मिल गया कुर्ता, और मतलब जीन्स भी सब मिल गई, अब यार बड़ा भाई यार जूते की बहुत दिक्कत, क्या अरे बोले यार वो जूते यार ढीले पड़ रहे हैं यार, और छोटे भाई के लिए तो वो बहुत गड़ रहे हैं काट रहे हैं यार, तो बोले फिर क्या व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था करिए यार 250-300 रुपये, हम सोच रहे हैं यार सदर से मतलब जाके ले लें जूते, अरे यार तुम सदर जाने क्या जरूरत, हर चीज़ सदर जाना गोरखपुर जाना यहीं मिल जाएंगे, तुम बोलो तो कितने चाहिए तुम्हें और विश्वास नहीं है तो तुम मतलब चौदह को चलना मुफ्त दिलवाएंगे अपन और सुबह से माहौल बन रहा है, और सब सुबह से अपना बिल्कुल टीम टाम होके, और जो दुकान होती है बार बार की वहाँ भी भीड़ लगी हुई है, शेविंग वेविंग बन रही है बढ़िया, अरे तो खूंट निकाल दी अरे यहाँ से, अरे आज बहुत तुम उल्टी भी रेजर चलवा रहे सीधी भी, नहीं गुरु करीब का मामला है ना तो ज़रा गड़ना नहीं चाहिए, अरे वाह सही अब साहब पूरी तैयारियाँ हो गई, और सुबह सुबह यहाँ इनकी तैयारी चल रही है, वहाँ दूसरे डिपार्टमेंट की भी तैयारी चल रही है,
1: तुम्हारा कैसा क्या, नहीं हमने तो मानो नई ड्रेस बनवाई है, और ये शॉर्ट ब्लाउज शॉर्ट ये शॉर्ट वो, तू तो बिल्कुल आजकल इतनी शॉर्टकट होती जा रही है, ऐसा नहीं करना कि अल्लाह सब हो गया बाद में हम लोग को पता चल रहा है, नहीं रे तेरे को तो बोला कितनी पक्की सहेली थी ना, हाँ मालूम पक्की सहेली, पिछली बार बुलाया था वहाँ, बाद में कज़न बोल नहीं वो कज़न ही हमको चार आ रही, एक बात बता जिसको तुम कजन कह रही थी परसों तक तो मेरे कजन थे, तुम्हारे कैसे हो गए
0: अब साहब ये सब चर्चाएं, वहां पुलिस महकमा भी जो है अपनी तैयारी में लगा है और आदेश दिए जा रहे हैं,
2: ऐसा है कि देखिए देश में ये जो त्योहार आ रहे हैं इनसे बड़ी दिक्कत हो रही है, समझ रहे नहीं आप, हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ती चली जा रही है, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी जगह हैं खासकर पॉइंट है ना, कॉलेज वगैरह हो गए, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, कॉफ़ी हाउस, और जहाँ जहाँ मीटिंग पॉइंट है पूरे में सब में रहेंगे, और सुनो तुम इधर आओ, रेखा सुशीला श्यामा तुम इधर आओ, कर लो तुम भी जाओ, एक चीज़ ध्यान रखो कि कल तुम लोग विदाउट यूनिफॉर्म रहो,
3: क्यों सर यू विदाउट यूनिफॉर्म,
2: समझो बात जितनी कह रहा है, मिशन है हमारा विदाउट यूनिफॉर्म रहोगी, और अगर कोई फूल दे तो ले लेना,
3: नहीं सर हम किसी से भी,
2: अरे तुमको फूल लेने का मतलब हम ऐसा नहीं बोल रहे, फूल दे तो ले लेना और उसके बाद फिर मतलब झुराई चालू, समझ गए नहीं समझ गए
0: ये पूरा वहां भी आदेश चल रहा, वहां भी बड़ी तैयारियां हो रही साहब, अब सुबह जब हुई वहां फूल वाले भी अपना जुगाड़ करके फूल लाए हैं, और 2 रुपए की कली 20 रुपए में बेचने के चक्कर में है, कुछ प्लास्टिक की कलियां भी लाए हैं, उनकी भी तैयारियां हैं, और देखिए सुबह का वक्त और सब अपने अपने मुहिम में चल पड़े, और कॉलेज के पास स्कूल्स के पास बच्चों में सब में बड़ा जोश है त्यौहार को मनाने का, जो त्यौहार नहीं मनाने देना चाहते उनमें भी बड़ा जोश है, क्यों नहीं मनाने देना चाहते, उसमें कुछ लोग नए शामिल हुए हैं दूसरी पार्टी से, क्यों बोले पिछले साल तो तुम विरोध नहीं कर रहे थे बाबा इस बार, अरे नहीं यार पिछले बार हम फूल लेके गए यार मना कर दिया हमने, बोला ठीक है स्वच्छ विरोधी में शामिल हो जाओ बोले गुरु इस बार तो बहुत मतलब चटकाना है, बोले तुम क्यों उसको मारे क्यों रहे पिछली बार, अरे वैलेंटाइन का तो बहाना रहा कोई बोलता नहीं हो चक्कर में मारना ही चक्का दो ये सब चर्चाएं हुई, अब जो फूल देते हैं और लेते हैं जिनका मामला पहले से पटरी में है उनकी बात अलग है, और जो पहली बार हौसला बढ़ाते हैं उनके साथ बहुत गजब बात होती है। कैसी बात? अब मान लीजिए लड़का दे रहा है तो वो 3-4 बार सोचेगा कि कहीं दें ऐसा ना हो कि रिवा

0: उसमें झापड़ पड़ जाए। माने एक बड़ा डर रहता है और लड़कियों को भी डर रहता है, लेकिन उन्होंने भैया ना देख ये वो बाजू वाला देख रहा हूँ शिकायत कर देगा। अब जैसे ही उसने फूल दिया, एक्सक्यूज मी फूल, मुझे आपसे बात नहीं करनी,
1: हम आपको बहुत मतलब चाहते हैं,
0: आप चाहो या ना चाहो, आप जा नहीं तो हम बोल देंगे अभी शोर मचाएंगे, आप फालतू ने नाटक नहीं करो,
1: आप प्लीज दे दीजिए
0: माम। अच्छा रहने दीजिए हम जा रहे हैं। वो भागा। ये साहब ऐसी कई घटनाएं घटी। अब दोस्तों की चर्चा चल रही है, एक चौबारे पे मैं गया, काफ़ी दोस्त बैठे हुए हैं, शाम का वक्त है और उनकी समीक्षा चल रही है कि बॉस फूल मंडी में क्या स्थिति है, कॉलेजेस में क्या स्थिति है, यहाँ क्या स्थिति है और क्या चर्चा हो रही। देखिए साहब, एक उसमें से गैंग लीडर है और वो सबको एक एक को बुला के पूछ रहा है, तुम आओ बेटा तुम बताओ तुम्हारे फूल देने का क्या हुआ, तुम भी बताओ फूल मिले कि नहीं मिले। अरे भैया यार फूल देना तो है लेकिन मंडी में फूल नहीं है यार, तो तुम एक काम करो ना तुम वहाँ चले जाओ फूल मंडी बड़े बाजार के पास चले जाओ। अरे भैया कह रहे यार, गुड्डू भी कह रहा क्या हुआ भैया, गुड्डू से पूछो ना क्या तुम रो कह रहे यार भैया हुआ क्या
2: भैया, हम फूल लेना मेरे यार 20 रुपया के 3 कली की बात है यार, बाप रे ऐसा टल्ला टल्ला आ रहा है यार, बाप रे कमर अड़ गई गुरु, बहुत बड़ा मारा माँ कसम बहुत मारा,
0: और जा फूल लेने। ये घटनाएं हमने एक से पूछा, अच्छा एक काम करो तुम्हारे इधर लग रहे हैं फूल, तुम्हारे इधर के फूल का क्या हुआ। अरे विजय रात ही में कोई चुरा के लेकर, हमने सोचा सुबह ताजा देंगे, वो ताजे के चक्कर में बासा भी चला गया। विजय तुम्हारे इधर तो इधर आ, तुम्हारा क्या नाम।
3: हमारा नाम झोरी लाल।
0: अरे वह सुंदर झोरी, झोरी बेटा तुम्हारे तो बगीचा लगा ना, तुम्हारे इधर कौन से फूल लगे।
3: हमारे इधर तो गेंदा के लगे।
0: अरे गेंदा के फूल नहीं दिए जाते यार। तुम्हारा क्या नाम है
3: जी। खजूरी।
0: क्या नाम।
3: खजूरी।
0: अरे बहुत सुंदर खजूरी, तुम्हारे इधर बेटा कौन से फूल लगे।
3: हमारे इधर तो रात रानी के लगे।
0: अच्छा रात रानी के फूल नहीं दिए जाते यार।
3: नहीं तो हम तो देंगे।
0: अरे रात रानी के फूल नहीं दिए जाते, कब दोगे तुम।
3: दिन में नहीं देंगे, बहुत डर लगता है, रात रानी के फूल रात में कल्टी में देंगे।
0: और बेटा तुम बताओ कि तुम्हारे इधर। अरे बहुत सुंदर, आओ आओ भैया श्यामदास जी आओ आओ। अब श्यामू आ गए, रंग पक्का, कलर छूटे, पैसा वापस। उनसे पूछा कि क्यों तुम दे रहे फूल कि नहीं।
1: भैया हम नहीं देंगे यार। क्यों। अरे सोचना देगी ना,
0: दे दो ना, क्या दे, डरने क्या बात है। अच्छा ये बताओ दे किसको रहे हो।
1: भैया फन तो मतलब उसी को देंगे, अब दोनों हम लोग का कलर भैया एक ही सा है ना, मैचिंग है।
0: अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा कलर मैचिंग है, तुम फूल कौन सा दे रहे हो।
1: ये ऐसा है, गोरा कलर होता तो अपन लाल वाला फूल गुलाब का दे देते, लेकिन पक्के कलर की हम सोच रहे हैं कि मतलब मैया को जासौन का चढ़ा दे।
0: अब ये साहब फूलों की चर्चा चल रही है, एक से बुलाया तुम इधर आओ, तुम कहा फूल दे।
2: अरे भैया हम नहीं दे रहे फूल के पीछे बहुत देखा।
0: तुम क्यों नहीं।
2: अरे ग्यारह फूल दे रहे यार, हम लाइन में लगे भैया, 4 जन के फूल ले रही हूँ वापस आ गए।
0: क्यों तुम्हारे के लिए
2: नंबर ही नहीं आया भैया।
0: तो फिर
2: हम भी लेके आ फूल, अब दूसरा वाला दें।
0: कौन सा दोगे।
2: बेशरम का।
0: ये अलग अलग फूलों की चर्चा चल रही। एक को पूछा क्या भाई तुम काहे के फूल दे रहे। कहने लगे गुरु हमारी जो है ना सफेद कपड़े की बहुत शौकीन, क्या झक कपड़े पहनती गुरु मार एकदम, अब वो कौन कौन सी कंपनी के पाउडर वाउडर से धो के बहुत झमाझम कपड़े, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद जूती और सफ़ेद बिल्कुल एकदम बालों में रिवेन एवेन, मतलब बिल्कुल सफ़ेदी की चमकार है। कहने लगे फिर आप बिल्कुल चांदनी बदन गुरु, हम तो चांदनी बदन को चांदनी रात में आप बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में चांदनी के फूल देंगे।
1: बात अच्छे।
0: अब ये फूलों की चर्चा चल रही है, हमने पूछा काय बड्डा तुम कैसे फूल दे रहे।
2: हम कभी नहीं देंगे बाबा फूल। क्यों। अरे गुरु यार हमने बोला फूल दे तो उसने कहा तुम अप्रैल में आना।
0: एक लड़के को बुलाया और उससे पूछा तुम आओ तुम्हारा नाम।
3: जी झोरी।
0: अरे कैसे कैसे नाम धरते तुम लोग यार। झोरी दरा बेटा तुम कहाँ रहते।
3: जी ग्वारी घाट में।
0: वैरी घाट में रहते हैं, बहुत खूबसूरत बात है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी रहते हैं। अब ये बताइए, गौरी घाट बड़ा धार्मिक स्थल भी है, माँ नर्मदा का सरल

0: है, और ग्वारी घाट में बहुत बढ़िया फूलों की खेती भी होती है, नर्सरी लगी है, वहाँ तो फूल जरूर मिल जाएंगे। नहीं भैया वहाँ का सब फूल मतलब पहले ही कट गए, बिक गए भैया, एक्सपोर्ट हो गए। अच्छा एक्सपोर्ट हो गए? हाँ भैया इस बार फूल नहीं है वहाँ, बहुत महंगा गया गुलाब इस बार वहाँ का, तो अभी कोई फूल नहीं मिलेंगे। मिलेंगे ना भैया, तो कौन से फूल? खारी वाले। इसी दौरान मैंने एक पार्क का सर्वे किया, पार्क में देखा कि दो तीन लोग यहाँ वहाँ बैठे हैं और बड़े उदास बैठे हैं। एक मित्र को मैंने देखा कि वो परिचित थे कहीं से, बड़े उदास बैठे। हमने पूछा क्यों, क्या हुआ तुमको यार? अरे बोले यार भैया यार बहुत दिक्कत हो गई। बोले क्यों क्या हुआ? बोले यार हमारा मतलब बहुत दिन से सिलसिला चल रहा था, आज फाइनल बात होना थी, तो यार हमारे पिताजी ने कहा कि नहीं, उसके पिताजी क्या देंगे, दहेज में कुछ दे नहीं पा रहे हैं। एक काम करो तुम, तो वो दूसरी वाली पार्टी उसको हमने यस कर दिया, और वहीं शादी करो तुम। तो यार वो वहाँ से मतलब दिल टूट गया यार, क्या बताएं। तो फिर बोले फिर हुआ क्या? तो बोले यार हम क्या बताएं, बहुत दुखी हैं। वो शायराना अंदाज के आदमी थे, तो उनने उसी अंदाज में अपनी बात बयां की कि मोहब्बत में मेरा सर फूटा, मोहब्बत में मेरा सर फूटा, हाथ टूटा, पैरों में दर्द आया है। मोहब्बत में मेरा सर फूटा, हाथ टूटा, पैरों में दर्द आया है, और मैं जब निकला उनकी गली से, तो उन्होंने अखियों के झरोखों से देखा और फरमाया बहारो फूल बरसाओ। लोग अलग अलग तरह की शर्त लगाते हैं, और शर्तों की बात होती है, लेकिन उसके पहले एक बात बात वैलेंटाइन डे की चल रही थी। बिटिया जब घर में पहुंची तो पापा पहले से मौजूद थे, और पापा ने जैसे ही बिटिया को आते देखा और क्या बात की, कितना बज रहे हैं?
1: पापा 5:30।
0: अच्छा कॉलेज कितने बजे छूटता? तो
1: पापा जी 3:30 बजे छूटता है।
0: तो इतनी देर क्या कर रही थी?
1: नहीं वो सहेली के यहाँ चली गई थी, तो इसलिए लेट हो गई।
0: हमें सब पता है सहेली के यहाँ चली गई थी तुम, और ये हाथ पे पीछे क्या है?
1: नहीं पापा कुछ नहीं।
0: हाथ दिखाओ।
1: नहीं वो कुछ नहीं।
0: हाथ दिखाओ, हमने कहा नहीं अभी, हम हाथ दिखाओ। रोने रोने की बात नहीं है। अच्छा मतलब गुलाब की कली, हम समझ गए कहाँ से तुम आ रही हो।
1: पापा मम्मी हमको बोलते।
0: अच्छा तुमको नहीं बोले, किसको बोले?
1: मम्मी को।
0: क्यों मम्मी ने क्या किया? और मम्मी है कहाँ तुम्हारी? मम्मी कहाँ? देखो बेटा
1: मम्मी नहीं है।
0: क्यों कहाँ गई मम्मी?
1: मम्मी वहां गई है वो प्रवचन सुन।
0: क्यों आज किसके प्रवचन हो रहे? कौन संत आ गए?
1: वो संत वैलेंटाइन आए।
0: और जैसी मम्मी आई, आइए कहाँ गई थी?
1: नहीं वो गुरु जी आए थे तो उनका प्रवचन सुन।
0: और ये हाथ में क्या तुम्हारे? अच्छा पूरा बुके लेके आई हूँ तुमको गुलाब का, बहुत अच्छे। कौन ने दिया ये?
1: नहीं सब सब जन चढ़ाने को लाए नहीं, तो मतलब आखिरी बचे वाले हम,
0: तो हमको ना बता दो बिल्कुल। ये ऐसी बहुत सारी बातें वैलेंटाइन में हमने सुनी। एक और बिटिया बिल्कुल सबसे अलग, सुबह उठी पूजा की और 200 रुपए की उसने गुलाब की माला दो दो महीने पहले बुक कर दी थी। वो गुलाब की माला उसने ली और गुलाब के दुकानदार से कहा कि एक कली मुफ्त। हाँ मैडम, बोले आपने 200 रुपए की माला ली, एक कली की बात करें? ये लीजिए, बढ़िया पैक करके उनने खुशबू खुशबू डाल के और वो थर्माकोल के बबल और बढ़िया से उसको जरा सजा के वो उसने दिया, और गुलाब की माला उसने ली, साथ में कुछ मिष्ठान लिया और बाबा के दरबार गई। बाबा को एक माला चढ़ाई उसने, हाथ जोड़े आंख बंद बाबा से विनम्र भाव से प्रार्थना की, बाबा मैंने आपका ख्याल रखा, आप मेरा रखिएगा। एक बिटिया फूल लेने के लिए अपने पड़ोस में गई, और जैसे ही उसने बगीचे से फूल तोड़ना चाहे, दादी ने फौरन उसको वहीं पर आदेश करके रुका, हाँ हाँ बेटा आज बिल्कुल फूल नहीं।
1: क्यों दादी? मैं तो रोज ले जाती हूँ भगवान जी के लिए फूल, और आप आज मना कर रहे हैं, ऐसे में भगवान जी नाराज हो। तुम हमें न बताओ मतलब कि भगवान जी नाराज हो जाए, हमें मालूम तुम फूल कौन के लाने ले जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, सच्ची में मैं भगवान के लिए फूल ले जा रही हूँ, आप बिल्कुल ऐसे में भगवान आपको पाप पड़ेगा और किसी को मना नहीं। हमें न बताओ बेटा, तुम जो उनके लाने फूल ले जा रहे हैं हमें सब मालूम है। आपको क्या मालूम है? ऐसा है बेटा, तुम जितने दिन फूल ले गई आज के बाद फूल ले जाना बंद। क्यों ऐसा क्यों आप कर रहे हैं हमारे साथ जुल्म? ऐसा है बेटा, तुम जो भगवान के लाने फूल ले जाती हो वे तुम्हारे बारे

0: ले भगवान, आज हमारी नातिन से एंगेज हो रही।
1: हंसना मना है,
2: हंसना मना है,
1: अरे हंसना मना है,
2: हंसना मना है।
1: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
2: हंसना मना है।
3: ले लो भाइयों, ताजे फलों का संसार आपके द्वार पे आ गया। अरे कश्मीर का लाल सेब ले लो, महाराष्ट्र का संतरा ले लो, भुसावल का ले लो केला, सबसे बढ़िया ताजा केला, जबरदस्त और प्यारा मीठा मीठा ताजा केला ले लो भाई साहब।
4: ले केले वाले, ए केले वाले।
3: हाँ बाबूजी, नमस्कार बाबूजी। बोलिए बाबूजी,
4: ये केले कैसे दिए?
3: ये वाले केले भुसावल के बाबूजी, बड़े प्यारे, बहुत ताजे, बहुत बढ़िया केले हैं बाबूजी।
4: क्या भाव दिए?
3: अरे भाव क्या लगाए बाबूजी, जो मन करे आपका दे देना, और क्या है।
4: अरे भाई कुछ तो भाव होगा, कैसे दिए आपने केले?
3: अरे बाप, आप पूछ रहे तो बता देते, 5 रुपए के 12।
4: पाँच के बारह?
3: हाँ।
4: अरे यार कुछ कम करो यार।
3: तो 10 ले लो।
4: नमस्कार। आइए साहब, आइए।
3: और क्या हाल दोस्त?
4: और बढ़िया।
3: लाला, एक काम करो भैया, जरा जल्दी से 6 साबुन दे दो, नहाने के साबुन।
4: नहाने का साबुन? अच्छा अच्छा, छोटू जरा नहाने के साबुन निकालना भैया।
5: सेठ जी, नहाने का साबुन खत्म हो गया। सेठ जी
4: क्या कहा? नहाने का साबुन खत्म हो गया है? भाई साहब, नहाने का साबुन तो खत्म हो गया है। एक काम कीजिए कि वो रात को हमारा माल आने वाला है, तो जैसे ही हमारा माल आएगा तो कल वो साबुन आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
3: तो एक काम करो, साबुन नहीं है, है ना, आप नाले दे दीजिए, वो पायजामे में जो नाले डाले जाते हैं।
4: अच्छा अच्छा, हाँ। पायजामे का नाला?
3: हाँ, हाँ।,
4: हाँ जी, पायजामे का नाला। छोटू, पायजामे का नाला देना भैया।
5: सर जी, नाला तो पायजामे का खत्म हो गया। सर जी, रात में माल आएगा तभी आप आएगा।
4: क्या कहा? पैजामे का नाड़ा भी खत्म हो गया है। भाई साहब क्या है कि वो नाड़ा भी खत्म हो गया है पैजामे का, वो क्या है कि माल आने वाला है, और जैसे ही रात को माल आएगा तो हम आपके यहाँ वो नाड़ा और साबुन, ये दोनों सामान पहुँचा देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए।
3: माल आने वाला, माल आने वाला। अच्छा फिर आप एक काम करिए, आप बहुत जल्दी से वो जूते की पॉलिश दे दीजिए, वो काले वाली।
4: जूते की पॉलिश?
3: हाँ
4: काली वाली।
3: हाँ, हाँ।
4: वो तो साहब ये रखिए, ये लीजिए, ये काली।
3: हाँ।
4: ये आपने काली मांगी?
3: हाँ।
4: जी ये लाल है, क्या है कि काली जरा खत्म हो गई है। हाँ। वो माल आने वाला है साहब, हमारा जैसे ही माल आएगा तो हम वैसे आपके यहाँ तीनों सामान पहुँचा देंगे।
3: हमें कोई जरूरत नहीं है, आप एक बात बताइए, आपकी दुकान में ताले हैं?
4: ताले?
3: हाँ ताले। हाँ, ताले।
4: ये देखिए ताले तो सामने रखे, ये देखिए छोटा ताला, ये देखिए बड़ा, ये हरा वाला देखिए कैसा है, ये देखिए।
3: हमें ताले चाहिए नहीं है भाई साहब, हमको ताले नहीं चाहिए हैं। आप एक काम करिए, आप अपनी दुकान का शटर नीचे गिराइए, दुकान बंद करिए, उसमें ताले लगाइए और अपने घर जाइए। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि हंसने से आपकी कितनी मांस पेशियां तनाव रहित हो जाती हैं? नहीं मालूम ना? वैसे एक राज की बात बताऊं, हमें भी नहीं मालूम। मगर अंदाजा है कि 2-400 मांस पेशियों पर असर तो होता होगा, है ना। खैर छोड़िए, विनय जैन एक बार फिर आ रहे हैं आपको हंसाने के लिए।
4: एक साहब डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और बोले, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए। क्या बात है? डॉक्टर साहब जल्दी चलिए। अरे भाई बात क्या है, कहाँ चलूँ मैं? डॉक्टर साहब क्या है कि वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अरे भाई किसकी तबीयत खराब है? जिसकी तबीयत खराब है उसको यहीं ले आऊँ? डॉक्टर साहब वो यहाँ नहीं आ सकती। अरे भाई कौन नहीं आ सकती? आपकी माता जी हैं, आपकी पत्नी हैं, आपकी बच्ची हैं। नहीं डॉक्टर साहब वो क्या है ना कि वो यहाँ मैं उनको ला नहीं सकता। अरे भाई वो हैं कौन? वो डॉक्टर साहब हमारी भैंस बीमार है। भैंस बीमार है? शट अप, गो डाउन। भैंस बीमार है और मेरे जैसे डॉक्टर के पास आप यहाँ पे ये शिकायत लेके आए कि भैंस बीमार है, मैं आपके घर आपकी भैंस को देखने चलूं? मैं मरीज को यहाँ पर देखता हूँ, वो भी जानवरों को नहीं, इंसानों को। तुम भैंस की तबीयत खराब लेके मेरे पास आए हो, गेट आउट। अरे डॉक्टर साहब कुछ करो डॉक्टर साहब, हमारी भैंस मर जाएगी। डॉक्टर साहब मैं भैंस को बिल्कुल नहीं ला सकता साहब। ठीक है, डॉक्टर साहब को दया आ जाती है, एक काम करते हैं, तुम्हारी भैंस की तबीयत खराब है तो मैं उसको दवा

0: देता हूँ और ये गोली दे देता हूँ, तो तुम ये गोली ले जा और भैंस को खिला देना और बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है? इसका 50 रुपया लगेगा। हाँ डॉक्टर साहब, हम 50 रुपये देंगे। साहब 50 रुपये देते हैं, डॉक्टर साहब उनको 2-3 गोलियाँ देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गोलियाँ। देख के साहब उनको खिलाने का तरीका पूछते हैं, डॉक्टर साहब इसको खिलाएंगे कैसे? अरे भाई, एक तो भैंस का इलाज बता रहे हैं, वैसे ही हम जानवरों का इलाज करते नहीं हैं, उसके बाद तुमको हम गोली दे रहे हैं। खिलाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है भाई। तुम चूल्हे फूकने वाली कभी तुमने वो फूकनी देखी है जिससे फूका करते हैं? हाँ साहब, हमने फूकनी तो बहुत देखी। बस फूकनी को ऐसा भैंस के मुंह में फंसाना और उसके बाद तुम क्या करना, गोली को लेके फूकनी के बीच में रखना और जोर से एक बार फूंक मार देना, बस गोली अंदर, भैंस की तबीयत ठीक। दूसरे दिन साहब वापस लौट के आए, डॉक्टर साहब ने पूछा कि भाई भैंस की तबीयत ठीक है? बोले साहब भैंस की तो छोड़ो, हमारी तबीयत खराब हो गई। बोले क्या हो गया? बोले साहब जैसे बताया था वैसे ही किया था, फूकनी उकनी सब लगा दी भैंसिया के मुंह में, जैसे ही गोली रखी तो भैंस ने पहले ही फूंक मार दी।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हंसना मना है, मगर आपकी न हंसने की कसम तोड़ने के लिए आवाज दे रहे हैं हसोड़ गोपाल तिवारी को।
2: कुछ लोग ऑफिस में भी होते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि उसका कुछ मजा ही अलग होता है। एक सज्जन बैठे हुए ऑफिस में अपने कुछ मैटर ड्राफ्ट कर रहे थे और ड्राफ्टिंग के वक्त जो गलतियां होती हैं, तो पेपर चूंकि शासकीय होता है तो उसका कैसा भी उपयोग किया जा सकता है। तुरंत अंदर 4 लाइन लिखी, नहीं गलत, ऐसा मोड़ा और फेंका उन्होंने, फिर दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, ऐसा कई देर से कर रहे थे। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने लिखा कुछ और उसको मोड़ा, फेंकने के लिए विंडो जो होती है, खिड़की होती है, उसमें थोड़ा छेद था, बाहर फेंकने के वो मूड में थे। जैसे उन्होंने ऐसा करके फेंका और फेंका तो वो टकरा के वापस आ गया। अरे यार नहीं गया, फिर उन्हें दिया और फिर फेंका, फिर नहीं गया। 3-4 बार ऐसा हो गया तो पास में एक जो सज्जन बैठे थे वो इरिटेट हुए और उन्होंने वो कागज़ उठाया, भाई साहब ऐसे नहीं फेंकते, देखो निशाना देखना है। और जैसे उन्होंने लिया, एक बार में ऐसा फेंका उस तरफ, देखा ऐसे फेंकते हैं। ये ऐसा है, हमारे बस की बात नहीं है, आप ही कर सकते हो क्योंकि आप बचपन से फेंक रहे हो। और गजब गजब बातें हो जाती हैं। एक सज्जन गुरंदी बाजार पहुंचे और गुरंदी बाजार पहुंचकर उन्होंने कुछ चीजों के रेट पूछे, और रेट कैसे पूछे, क्या बात हुई देखिए। एक तोता बेचने वाला था और तोता बेचने वाले के पास गए और तोते की क्वालिटी वाइज उसके रेट से वो पूछ रहा है तोते के बारे में, देखिए। अरे भैया ये तोते दिखा रहे हैं जरा। हाँ साहब, कौन सा तोता देखना चाहेंगे सर आप? वो वाला दिखाओ, वो जो लोहे के पिंजरे में है, जो ऑर्डिनरी सा, वो जिसकी कंठी इंटी है और बहुत बढ़िया सा, कैसा तोता वो दिखाओ जरा, कैसा लग रहा है वो? साहब ये जो तोता है, इस तोते को करण तोता बोलते साहब, ये राम राम सीताराम, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलता सर, हेलो बोलता है मिले तो, हाय बोलता है मिले तो, बाय बोलता है जाए तो, और मोहल्ले में कभी मिल जाए, कभी कॉलोनी में मिल जाए तो फौरन बोलता है काय, तो हाय बाय और काय का तीनों का मैच है इसका साहब, बड़ा इंटेलिजेंट ये जो है तोता है, आप चाहे तो ये ले लीजिए। कितने का है साहब? ये जो तोता है ये मात्र 200 रुपये का है।
1: अच्छा,
2: उसके बाद वो जो बहुत बढ़िया सा प्यारा सा तोता और बिल्कुल गजब लग रहा है वो तोता दिखाओ जरा, वो चांदी के पिंजरे में है उसको दिखाओ। हाँ साहब, ये जो तोता है, ये तोता कुछ काम करता है, इधर के उधर, उधर के इधर करता है साहब। ये तोता, इसकी पगार बहुत कम होती है लेकिन ये उससे ज़्यादा कमाता है। तोता बहुत काम का है, बड़े बड़े काम कर देता है सर, जो काम आप चक्कर लगवा लगवा के नहीं करवा पाएंगे ये तोते कर देते हैं साहब। ये तोता जो है 2000 रुपये का है, कम बोलता है, यस सर नो सर बोलता है।
1: अच्छा
2: अच्छा, ये जो सोने के पिंजड़े में, सोने के झूले में सुनहरा सा वेल गजब झम तोता दिख रहा है, जो जिस तोते के एक पंख में इतनी शार्पनेस है, इतना बढ़िया शाइन है, ये तोता थोड़ा दिखा साहब। जिस तोते की बात आप कर रहे हैं ये बहुत कॉस्टली तोता है, ये एक्चुअली सर बहुत लर्निड तोता है, बड़ी जुगाड़ के बाद इस पिंजरे में आए साहब, बड़े मुश्किल से कैद हुआ है। और साहब ये जो तोता है केवल ऑर्डर देना जाता है। नो नो दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत बात है। हाँ ठीक है, तुम्हें मिलेगा भाई, ये ऐसा नहीं है, ये साहब बहुत बढ़िया तोता है, ये बिल्कुल ऑफिशियल जवान जानता है। अच्छा ये कितने का है? ये 10,000 का है। यार तुम गजबत भी हो यार, जो तोता सबसे

0: ज्यादा काम करता है, सबसे बढ़िया बोलता है, सबसे बढ़िया क्वालिटी है जिसकी, और जो लोहे के पिंजड़े में रखा है उसको तुम खिला रहे, वही अपना चना हो गया, मूंगफली हो गई, और जो सबसे बढ़िया वाला तोता है उसको तुम हम देख रहे कि तुम हलवा।
1: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मना है की 5वीं कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आज भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल हो रहे हैं। इस परियोजना में 15,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। चुनाव आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा पर उपचुनाव होना है। अधिसूचना के अनुसार नामांकन 13 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे और 30 जुलाई को मतदान होगा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को हिंदू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण 13 जुलाई से शुरू होगा। इस अभियान में 5,72,000 पशुपालकों से भेंट करने का लक्ष्य है। शौर्य स्मारक भोपाल में कल आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और प्रदेश में मानसून सक्रिय है। अब तक औसत 6.4 इंच बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रतलाम, उज्जैन सहित अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

प्रिय श्रोताओं, आज के स्वास्थ्य दर्पण में मैं प्रेक्षा सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे सेल्फ केयर और स्वस्थ जीवन शैली की, जो कि एक दूसरे के पूरक हैं। स्वयं की देखभाल करना स्वस्थ जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं, बल्कि संतुलित दिनचर्या, पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच का सुंदर समन्वय है। रोज़मर्रा की ये छोटी छोटी आदतें मिलकर स्वस्थ जीवन शैली का आधार बनती हैं। पर याद रखिए, एक स्वस्थ जीवन शैली की शुरुआत स्वयं की देखभाल से होती है। इसके लिए कुछ अच्छा समय खुद के लिए निकालना ज़रूरी है, तभी हम अपने जीवन को स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल बना पाएंगे। श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

0: कार्यक्रम में समय हो गया है भेंट वार्ता का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बारिश के मौसम में बहुत से ऐसे वायरस हैं जो पनप जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इन बीमारियों की रोकथाम कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर लोकेंद्र दवे को, और इनसे बातचीत की है महक गुप्ता ने। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेंद्र दवे जी। नमस्कार सर।
2: नमस्कार मैडम, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: सर, बारिश के मौसम में अक्सर वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में कभी कभी हम कोई घातक बीमारी भी कैच कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो कैसे हम इस मौसम में खुद को बचा सकते हैं?
2: देखिए, बारिश में हवा में वातावरण में नमी बहुत रहती है
1: जी।
2: और थोड़ा टेम्परेचर भी कम होता है, तो नमी और टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ों का जो मिक्सचर है, ये वायरस के पनपने के लिए बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट बनाता है
1: जी।
2: और इसलिए बहुतायत इस वातावरण के कारण से सांस संबंधी बीमारियां समझो, या हम पेट संबंधी रोग समझो, या आँखों से संबंधी, गले के संबंधी, ये सब वायरस की जो बीमारियाँ हैं, और इसके अलावा कई सारी सीरियस इलनेसेज हैं वायरस रिलेटेड, वो सभी इस समय बहुतायत से हमारे ओपीडी में हम लोग देखते हैं। तो वायरस की जो बीमारियां हैं उसमें अगर हम आँखों की बात करें तो कंजक्टिवाइटिस एक बहुत कॉमन डिजीज़ है, देन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, नाक संबंधी, गले संबंधी तकलीफ़ें होती लोगों को, और सांस संबंधी तकलीफ़ों के अंदर वायरल ब्रोंकाइटिस और निमोनिया। निमोनिया सबसे जो घातक होता है, वो जिसकी मॉर्टेलिटी रेट भी काफ़ी होती है, अगर हम उस पर समय रहते ध्यान नहीं दें तो कॉम्प्लिकेट होता है। और पेट संबंधी उल्टी दस्त की जो बीमारियां हैं वो कॉमनली इस मौसम में हम लोगों को देखने को मिलती है
1: जी। सर, खासकर जब रेस्पिरेटरी बीमारियों के बारे में हम बात करते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, घर में अगर कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, ये एक संक्रमित बीमारी होती है, वायरल डिजीजेस, हम उनका ध्यान रखते हुए खुद को कैसे बचा सकते हैं?
2: देखिए, वायरस अगर सांस संबंधी बीमारियों की बात करें तो छींकने पर, खांसने पर, बोलने पर करीब करीब एक मीटर की डिस्टेंस में एकदम से फैलते हैं, ये वायरस की प्रकृति होती है। तो क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए बीमार व्यक्ति से, इसलिए हम लोग बोलते हैं, जैसे हमने कोविड प्रोटोकॉल में भी यही बातें की थी, क्योंकि कोविड भी एक वायरस था
1: जी।
2: इसी तरह से जो मौसमी वायरस होते हैं उनसे बचाव के लिए भी हम बोलते हैं, यदि घर में किसी को भी सर्दी, खांसी या बुखार आ रहा है तो उससे एक नियत दूरी बना के रखें, और मरीज़ के मुंह पे कपड़ा या मास्क जो है रहना चाहिए, उसके कांटेक्ट में उसको सेवा करने वाले जो लोग हैं उनके भी जो है मुंह पे, सांस में अवरोध जो मास्क के रूप में एक रहे तो सबसे अच्छी बात है। दूसरा, जो वायरस के जनित मरीजों के रोगी हैं उनकी सेवा करने वाले यदि संभव हो तो या तो ग्लव्स पहने या हाथों को बार बार धोएं साबुन पानी से, क्योंकि हाथ एक और माध्यम है जिसके माध्यम से वायरस एक से दूसरे

0: व्यक्ति तक पहुंचता है। तो ये दूसरी तरीका है जिसमें
1: जी
0: हम ये कर सकते हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है खान पान से रिलेटेड, कि इस समय हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे तो वायरस की बीमारी जो है माइल्ड होती है, नहीं तो वायरस की बीमारी अनकंट्रोल्ड हो जाती है। जो कोमोर्बिडिटी वाले लोग हैं उनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, प्रेग्नेंट वुमेन है,
1: जी
0: ये सब लोग जो हैं उनको विशेषतर ये कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है वायरस की बीमारी से, इसलिए इन लोगों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है।
1: जी, सबसे ज़्यादा जो हमने कॉम्प्लिकेशन देखा है, जैसे कि आपने बोला निमोनिया, निमोनिया एक ऐसा शब्द है जिससे अक्सर लोग डरते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो इस बीमारी के बारे में हमें कुछ बताइए।
0: देखिए, निमोनिया किसी भी मरीज को सांस नली में संक्रमण होता है और वो फेफड़े की तरफ बढ़ता है, फेफड़े में सूजन आ जाती है, तो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट का काम है फेफड़े का वो काम प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो निमोनिया के जो सामान्य लक्षण हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, चेस्ट में पेन और उसके बाद सांस में लेने में दिक्कत और पसली चलना जिसको साधारण भाषा में लोग बोलते हैं, तो ये लक्षण यदि दिखाई दें हाई ग्रेड फीवर के साथ तो निमोनिया की संभावना पूरी है। और ऐसे मरीज को तुरंत अस्पताल में इलाज कराएं, क्योंकि घर पे निमोनिया का इलाज करने में कई बार

0: तो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट का काम है फेफड़े का, वो काम प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो निमोनिया के जो सामान्य लक्षण हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, चेस्ट में पेन, और उसके बाद सांस में लेने में दिक्कत और पसली चलना, जिसको साधारण भाषा में लोग बोलते हैं। तो ये लक्षण यदि दिखाई दें हाई ग्रेड फीवर के साथ, तो निमोनिया की संभावना पूरी है। और ऐसे मरीज को तुरंत अस्पताल में इलाज कराएं, क्योंकि घर पर निमोनिया का इलाज करने में कई बार कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं।
1: जी सर, इसके अलावा इस मौसम में एलर्जीज भी हमने देखा है कई गुना बढ़ जाती हैं। लगातार छींकें आना, नाक बहना, ज़रा सी धूल से या पोलन से, तो उनसे हम किस तरह से बच सकते
0: देखिए,
1: हैं?
0: इस समय हरियाली ज़्यादा होती है, जंगली घास फूस सूख जाती है, वो भी एलर्जी का एक बड़ा कारण होता है। हरियाली में पोलेंस, जो आपने जैसा बोला, पोलेंस भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जो एलर्जी का कारण है। मुख्यतः तो शहरों में और गाँवों में इस मौसम में एलर्जी मिलती फंगस की, क्योंकि दीवारों में सीपेज होता है, और फिर जब दीवारें सूखती है तो दीवारों पर काले हरे धब्बे आ जाते हैं। वो धब्बे एक्चुअल में फंगस है, और फंगस ड्राई होने के साथ हवा में उड़ती है, तो लोगों को एलर्जी बहुत करती है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, इस समय नमी ज़्यादा होती है, सूरज की रोशनी कम निकलती है, तो जो गद्दे होते हैं, सोफ़ा होता है, मोटे गद्दे, तकिया, कालीन, ये सब जो हमारे घर के अंदर चीज़ें होती है, इनमें डस्ट माइट पनपती है। डस्ट माइट, डस्ट के साथ होने वाले बहुत माइक्रोस्कोपिक बारीक कीड़े होते हैं, जो नज़र नहीं आते आँखों से, लेकिन उनकी एलर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो डस्ट माइट की एलर्जी और पोलन की, फंगस की एलर्जी, इन तीनों की संख्या बढ़ने की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ती है। तो ये कॉमन कॉजेज हैं जिनसे हमें दूर रहना है, बचाव करने की ज़रूरत है।
1: जी, इसके अलावा सर, शहरों में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ रही है, क्या उसका आपने आपकी ओपीडी में कोई प्रभाव देखा है?
0: प्रदूषण देखिए राउंड द क्लॉक समस्या है। बारिश के टाइम में, इस मौसम में प्रदूषण का एक समस्या बड़ी है कि जो पानी गिरता है तो उसके साथ में हवा जो होती है ठंडक, उसमें घनत्व ज़्यादा हो जाता है हवा का, तो जो पार्टिकुलेट मटेरियल होता है हवा के अंदर, जो कण होते हैं, वो बहुत नीचे तैरते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव निश्चित रूप से हेल्थ पर पड़ता है, और कई सारी हेल्थ संबंधी समस्याएं प्रदूषण के साथ भी इस मौसम में होती हैं। तो कॉमनली समस्याएं है वही हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, वायरस की समस्याएं, एलर्जी की समस्याएं, प्रदूषण की समस्याएं, सभी में आँखों में खुजली हो सकती है, तकलीफ़ हो सकती है, नाक और गले की समस्याएं हो सकती है, फेफड़े की समस्याएं हो सकती है। प्रदूषण की अन्य समस्याओं में हम लोग न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह ये सब चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन वो लगातार लंबे समय रहने पर होती हैं। इस तरह से शॉर्ट टर्म में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, जो इस मौसम के लिए पर्टिकुलरली ध्यान रखने की बात है।
1: जी, फेफड़ों की बीमारियों से संबंधित कोई और बीमारी जिस पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे?
0: देखिए, जो आपने जैसा एलर्जी का बोला, तो एलर्जी में लगभग 1/3 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें अस्थमा डेवलप होता है। तो इस मौसम में अस्थमा के लिए ट्रिगर फैक्टर होता है नमी, हवा की नमी, और बहुत लोग बादलों में, आपने देखा होगा, सांस के मरीजों को तकलीफ होती है। तो हम लोग हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि इस मौसम में अपने दवाओं पर पूरा ध्यान दें, और इनहेलर्स अगर प्रिस्क्राइब किए तो इनहेलर्स को प्रॉपर लेते रहें, ताकि सांस नलियाँ खुले अच्छे से, और कफ बलगम यदि बन रहा है तो बाहर निकले, नहीं तो उसके दुष्परिणाम होते हैं, अस्थमा का अटैक आता है, या सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं, मरीजों को तकलीफ होती है, तो इन सब समस्याओं की वजह से फिर मरीज परेशान होते हैं। तो अस्थमा की एक बीमारी है, और बाकी मौसमी समस्याओं में एक हेपेटाइटिस, इस समय बारिश के टाइम में पीलिया जो होता है, वो वायरस जो है पानी से फैलता है, तो पीने के पानी में गंदगी रहे तो वायरल बीमारियों की बात करें तो हेपेटाइटिस भी हो सकता है, उल्टी दस्त भी हो सकता है। इसके साथ में दूसरी जो बीमारियां, बैक्टीरियल बीमारियां, जैसे हैजा है या टाइफाइड, टाइफाइड का भी इस समय बहुत प्रभाव रहता है। तो ये मौसम संबंधी सारी समस्याएं इस समय होती हैं, और मच्छरजन्य समस्याएं जैसे डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया, ये भी बहुत होती हैं। तो हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो इस समय मरीज की संख्या बढ़ जाती है और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। फीवर के साथ यदि व्यक्ति आया है तो क्या बीमारी हो सकती है उसका पता लगाने में थोड़ी मुश्किलें आती है, पर जांच करके सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इसलिए टाइमली अपना इलाज कराएं, जांच कराएं, और सही डॉक्टर के मार्गदर्शन में अपना इलाज कराएंगे तो हमें निश्चित रूप से बीमार से स्वास्थ्य की तरफ ले जाएगा वो, और हमको ये चीज़ में प्रायोरिटी देनी चाहिए बारिश के टाइम में, क्योंकि मैंने जैसा बताया बीमारियों के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाते हैं यदि टाइम रहते इलाज ना किया जाए तो।
1: जी सर, जैसा आपने बोला, टाइम रहते इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोगों में ये मानसिकता देखी गई है कि सर्दी है, ज़ुकाम है, श्वास से संबंधित जब भी कोई बीमारियां होती हैं, लोग अक्सर डॉक्टर के पास जाने में काफी देरी कर देते हैं
0: जी।
1: कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे हमें पता चल सके कि नहीं, अब इस व्यक्ति का इलाज घर पे संभव नहीं है, हमें विशेषज्ञ की मदद लगेगी, अस्पताल जाना पड़ेगा?
0: देखिए, मामूली सर्दी जुकाम एक या दो दिन से हो रहा है तो फिर हम होम रेमेडीज से हम काम चला सकते हैं, लेकिन यदि सर्दी जुकाम के साथ बुखार आ रहा है या गले में दर्द पकड़ रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे मरीज को बिल्कुल भी घर में नहीं रखना चाहिए।

0: से मरीज को ज़रूर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। घरेलू इलाज बहुत मामूली सिम्टम्स के लिए हो सकते हैं, जिसमें हम सिंपल पैरासीटामोल लेके और प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स देके पेशेंट को एडवाइस करते हैं रेस्ट करने के लिए। लेकिन माइल्ड सिम्टम्स बहुत कम लोग जो है उसको इसको फॉलो करते हैं, रेस्ट नहीं करते, तो उसके साथ वो फिर कॉम्प्लिकेशन भी किसी किसी को बढ़ जाते हैं। मॉडरेट सिम्टम जहाँ फीवर आने लगता है, गले में तकलीफ होने लगती है, सांस में तकलीफ होने लगती है, तुरंत जाके मरीज को एंटीवायरल और सपोर्टिव मेडिसिन लिखवानी चाहिए, जरूरत हो तो भर्ती भी करना चाहिए। सीरियस मरीज जो हैं वो तो ऑलरेडी हमारे पास इसी तरह के आते हैं जिनको भर्ती करना बहुत आवश्यक हो जाता है, पर वो स्टेज ना आए तो अच्छा है, क्योंकि सीरियस मरीज निमोनिया के जो होते हैं उनमें 30-40% मॉर्टेलिटी रहती है, मतलब डेथ की संभावना रहती है। तो सीरियसनेस को नहीं पनपने दें, ये मेरा सभी से आग्रह रहता है और इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए।
1: थैंक यू सर। आपकी तरफ से कोई और संदेश जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे?
0: देखिए, बारिश का मौसम एक वरदान मौसम है मानव सभ्यता के लिए, प्राणियों के लिए, सभी के लिए बारिश बहुत आवश्यक है हमारे लिए जी। लेकिन इस मौसम का लुत्फ उठाएं, साथ में अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी करें, अपना खान पान संतुलित रखें, बाहरी गरिष्ठ चीज़ें ज़्यादा नहीं खाएँ, बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाएं जिसके, और यदि फल फ्रूट वगैरह लाते हैं तो अच्छे से धुलाई करके खाएं, और जो बाहर चाट पकौड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती है उसमें अपना ध्यान रखना है कि हमें नहीं खाना चाहिए ऐसी चीज़ें, क्योंकि इस मौसम में इन चीज़ों से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। दूसरा, आँखों पर चश्मा लगाना, मास्क बांधना रोड पर, क्योंकि जो डस्ट उड़ती है कीचड़ वाली वो भी बीमारी का एक कारण बनती है प्रदूषण के साथ में, और वायरस के जो अन्य बीमारियां, जैसे मैंने बताया कि बीमार व्यक्ति के संपर्क में नहीं जाना ज़्यादा, यदि संपर्क में जाना पड़े तो मास्क लगाना ज़रूरी है, और हाथों को बार बार साबुन पानी से धोते रहना ताकि हाथ हमारे बीमारी का सोर्स ना बन पाए। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसे हमेशा ध्यान रखना है हमको। बच्चों को, बूढ़ों को ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको तेज़ी से बीमारी होती कोई भी, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। डायबिटिक्स और हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट अपनी बीमारी कंट्रोल रखें और साथ में इन सब चीज़ों का भी पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि उनमें भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है हमेशा।
1: धन्यवाद सर, हमें आपका कीमती समय देने के लिए।
0: धन्यवाद मैडम।
2: अभी आपने सुनी मौसमी बीमारियों से बचाव विषय पर डॉक्टर लोकेंद्र दवे से महक गुप्ता की बातचीत। आइए सुनते हैं अब ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अब समय हो गया है हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूस शुगर मॉनिटरिंग की। आज स्वास्थ्य के लिए नई नई तकनीकें आ गई हैं, इन्हीं में से एक है कंटिन्यूस शुगर मॉनिटरिंग। ये एक छोटी सेंसर आधारित तकनीक है जो त्वचा के नीचे लगाई जाती है और रात दिन ब्लड शुगर का स्तर मापती रहती है। इससे कई बार उंगली में सुई चुभाने की ज़रूरत कम होती है और शुगर के स्तर में लगातार होने वाले उतार चढ़ावों का पता लग जाता है। यह जानकारी मोबाइल या रीडर पर आसानी से देखी जा सकती है, जिससे मरीज व डॉक्टर दोनों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसका सबसे बड़ा लाभ है समय पर सही कदम उठाना, दवा, भोजन और व्यायाम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना तथा डायबिटीज़ को सुरक्षित तरीके से संभालना। तो इस तरह की ये तकनीक डायबिटीज़ के मरीजों के इलाज में बेहद कारगर है। श्रोताओं, अब सुनिए ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, बारिश का मौसम पूरी तरह शुरू हो चुका है। ऐसे में हम आपसे कुछ सेहत सूत्र साझा कर रहे हैं। इस मौसम में संक्रमण, सर्दी जुकाम, पेट की समस्याएं, मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बाहर का खुला और बासी खाना खाने से बचें, हमेशा ताज़ा और गर्म भोजन करें। पीने के लिए साफ, फिल्टर या उबले पानी का प्रयोग करें ताकि पेट की बीमारियों से बचा जा सके। बारिश में भीगने पर तुरंत गीले कपड़े बदलें और शरीर को सुखाएं, क्योंकि गीले रहने से त्वचा संबंधित रोग और सर्दी जुकाम होने का खतरा बना रहता है। घर के आसपास गंदा पानी जमा होने से रोकें, जिससे बीमारियों से बचा जा सके। इस तरह आप मौसम का आनंद ले सकते हैं। श्रोताओं, उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। प्रतिक्रिया हेतु पत्र अवश्य लिखें। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। इसी के साथ मैं प्रेक्षा सक्सेना आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं छगन लाल वर्मा और साथी। इनके स्वरों में आज हम आपको सुनवाएंगे कुछ बुंदेली लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे छगन लाल वर्मा और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए असलम साबरी को। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे असलम साबरी और साथियों को, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर बाद।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, फिल्म का नाम है अभिनेत्री।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। फिल्म का नाम है बहारों के सपने। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। राष्ट्रवादी चिंतक और भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये पार्क औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देगा। लगभग 173 एकड़ में विकसित होने वाला यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार माना जा रहा है, जिसमें आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, आईटी एवं एआई आधारित सुविधाएं और लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। ये परियोजना वर्क लिव ग्रो मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें उच्च मूल्य विनिर्माण, गारमेंट, टॉयज, आईटी और एआई से जुड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे।
1: सतगढ़ी में बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क रोजगार के लिए, जहाँ रहना, खाना, आराम करना, रोजगार पाना, समग्र रूप से भोपाल बदलते समय में एक अलग प्रकार की आर्थिक समृद्धशाली राजधानी बदलने के लिए जा रहा है। मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर अगर कहीं बनेगा तो भोपाल में बनेगा। और रोजगार के लिए आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर मध्यप्रदेश वो स्थान है जहाँ सबसे कम बेरोजगार की दर रही है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर में संभाग स्तरीय उन्नत कृषक संवाद सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये आयोजन आज शाम राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित होगा। डॉक्टर यादव किसानों से संवाद कर उनके प्राकृतिक खेती के संबंधित अनुभव भी सुनेंगे। मुख्यमंत्री हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन का भूमि पूजन भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। इस हाईटेक नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन के प्रथम चरण के कार्य के लिए सरकार द्वारा 13 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता स्थित प्रतिष्ठित प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच 1000 वर्षों से चले आ रहे गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर थे और ये भारत के बाहर भी भारतीय वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी 2026 परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खातों के विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एनटीए ने बताया कि अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद इस वर्ष 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द होने के बाद एनटीए द्वारा रिफंड प्रक्रिया चलाई जा रही है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। आज प्रदेश के 23 जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, गुना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और पन्ना में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी सहित प्रदेश के बाकी जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में अब तक औसत 6.4 इंच बारिश हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में कंठाल नदी पर सुसनेर बामनिया खिड़ी

के बीच बनने वाले 50 मीटर लंबे पुल का भूमि पूजन कल सांसद रोडमल नागर ने किया। नर्मदापुरम में वन महोत्सव 2026 के तहत हर्बल पार्क से चौरे घाट तक वृहद पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में कल से 21 दिवसीय संस्कृत रूपक निर्देशन राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत हो रही है, जिसका उद्घाटन कल सुबह 10:30 बजे भवभूति सभागृह में किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई हैं।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों

0: लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।

0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
2: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलिजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदे, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। जी हाँ श्रोताओं, रिमझिम बारिश का मौसम आ चुका है, धरती की प्यास बुझ गई है, हर मन का इंतजार खत्म हुआ है और मन खुशियों के गीत गुनगुना रहा है। जिंदगी की तपिश मिट गई है, तो आइए ऐसे सुहाने से मौसम में आपके मन की बात कर लें। जी हाँ, आपके मन की बात यानी आपके मन के गीत, जिन्हें आपने लिख भेजा है खतों में। और ये पहला खत मेरे हाथ में है, धमतरी से आया हुआ, छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं रामचंद्र माखीजा काफिर, सविता, बेबी स्वाति, माही, छुटकी, शरद कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या। ये चिट्ठी आई है चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल पार्वती मोटवानी, राजेश रेशम मोटवानी, मुकेश भावना, सोमेश्वर यशराज। और ये खत आया हुआ है पेंड्रा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं देवदास फिल्म का गीत। आवाजें उदित नारायण और श्रेया घोषाल की हैं, संगीत इस्माइल दरबार का और गीतकार नुसरत बद्र। बेगाना वार ऐसे वो गुजरे करीब से, जैसे कि उनको मुझसे कोई वास्ता ही नहीं।

आपकी फरमाइश का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारणी, सूरज ज्योति, रियान शोरगुड़िया, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा, कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली, सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणिवाघ, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल। और ये चिट्ठी आई हुई है मुंगेली छत्तीसगढ़।

से लिखने वाले हमारे श्रोता हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन, वंशिका और उनके परिवार के सभी सदस्य, और मोटका माफी जिला खंडवा से इसी गीत को पसंद करते हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं तमाशा फिल्म का गीत। आवाज़ें अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की हैं। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार AR रहमान। आज कैसी हवा चली कि फिराक आंखें बेख्तियार भर आईं।

कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। भिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि, जया, जाह्नवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। निभोरा से अशोक देशमुख, शरद देशमुख और बबन जोशी। और बुराला खुर्द से आदिनाथ वाघ और अमोल वाघ। और लछनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी। बोल इरशाद कामिल के हैं और धुन प्रीतम की। एक अदना सा करिश्मा है ये उसके इश्क का, मर गया हूँ और मरने का गोमा नहीं होता।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: और अब हम आपको सुनवाते हैं जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत, विशाल शेखर का संगीत। फिल्म का नाम है ओम शांति ओम। आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की हैं। इस गीत को सुनना चाहा है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने। इसी गीत की फरमाइश की है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा और मोनिका नूपुर ऋषिका रॉबिन ने। और अगली चिट्ठी है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शुभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। सूरत गुजरी निगाहों से कितने मेरी,

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता स्थित प्रतिष्ठित प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच 1000 वर्षों से चले आ रहे गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की एक विशिष्ट पहचान है जो व्यक्तियों को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया।

0: इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये पार्क औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा UG 2026 परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाते विवरण अपडेट करने की समय सीमा को 7 जुलाई यानी कल तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में कल से 21 दिवसीय संस्कृत रूपक निर्देशन राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो रही है, जिसका उद्घाटन सुबह 10:30 बजे भवभूति सभागृह में होगा। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला कल खेला जाएगा, जो मैच भारतीय समय के अनुसार 10:00 बजे टेंट ब्रिज में शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30 और रात 8:15। आज शाम 6 होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम आजकल का प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। कार्यक्रम आजकल का प्रसारण होगा शाम 6:40 पर और 6:45 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार दर्शन। रात 8 होगा कार्यक्रम सुर्खियों में पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आप सुन सकते हैं रात 10 और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे लोकगीतों का फरमाइशी क्रम लोक रंग। आपको हम एक बार फिर याद दिला दें आज शाम 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आजकल और 6:45 पर होगा प्रादेशिक समाचार दर्शन। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, वेब्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हो चुके हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण डीटीएच

डीटीएच पर ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए छगनलाल वर्मा और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। पहले आप सुनेंगे ख्याल, उसके बाद पारंपरिक लोकगीत और फिर हास्य गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे छगन लाल वर्मा और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। ये आकाशवाणी भोपाल है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए असलम साबरी और साथियों को।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे असलम साबरी और साथियों को, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत मोहब्बतें फिल्म से, और उसके बाद जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म कुछ कुछ होता है से।

आकाशवाणी भोपाल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कार्यक्रम का अगला गीत हमने इस फिल्म से लिया है और इसके बाद आप सुनेंगे दिल तो पागल है फिल्म का गीत।

0: आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के

0: 25वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक आज लगभग 27 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के बढ़ते योगदान को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर में संभाग स्तरीय उन्नत कृषक संवाद सम्मेलन में शामिल होंगे। ये आयोजन आज शाम राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन का भूमि पूजन भी करेंगे। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सेफ क्लिक 2.0 जनभागीदारी का प्रदेशव्यापी अभियान बन गया है, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस की सभी इकाइयों में नवाचारपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा UG 2026 परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा को कल यानी 7 जुलाई तक बढ़ा दिया है। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला कल खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे टेंट ब्रिज में शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए उर्दू प्रोग्राम आईना।

इंसान दरख्त लगाए या खेती करे और उसमें परिंदे, इंसान और जानवर खाएं तो वो उसके लिए सदका है। एक हदीस में है कि जो मुसलमान पौधा लगाता है और उससे इंसान, चौपाए या परिंदे खाएं तो ये उसके लिए क़यामत तक के लिए सदका है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत जंग में भी दरख्त काटने को ममनू करार दिया है। आपने एक जंगी लश्कर की रवानगी के वक्त दीगर हिदायत के साथ एक हिदायत ये भी फरमाई थी कि खेती को न जलाना और किसी फलदार दरख्त को न काटना। यही वजह है कि मुसलमानों ने अपने दौर इक्तदार में बागबानी और शजरकारी में गहरी दिलचस्पी दिखाई, उसे उलूम व फ़नून की शक्ल दी और दुनिया में फ़रोग दिया। शजरकारी कदीम ज़माने से ही एक अहम शोबा रहा है, जिसमें वक्त के साथ साथ आज जदीद मशीनरियों ने आसानियाँ पैदा कर दी हैं। किसानों के लिए दरख्त लगाना मुश्किल नहीं है, अलबत्ता ये जानना ज़रूरी है कि कब, कहाँ और कैसे बेहतर पैदावार हासिल की जा सकती है। जैसे जदीद तहकीक के मुताबिक जिस ज़मीन में अलकली की मकदार ज़्यादा हो उसमें सफ़ेदा लगाने से अच्छे असरात मुरतब होते हैं। सफ़ेदा के दरख्त जायद अलकली जज्ब कर लेते हैं, जिसके नतीजे में ज़मीन की ज़रख़ेज़ी और पैदावार में इजाफा होता है। शजरकारी का एक तरीक़ा जो पूरी दुनिया में बहुत मकबूल है वो फार्म हाउस की तामीर है। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर फार्म हाउस तामीर किए जाते हैं जो कि पूरी तरह से शजरकारी का मजहर होते हैं। सनती शजरकारी के तहत जंगलात का तहफ़ किया जाता है। शजरकारी के जदीद तरीक़ों में से एक तरीक़ा ये भी है कि कुछ ख़ास पौधों को जिनसे फ़वाद हासिल हो सकते हैं उन्हें दूसरे ममालिक से मंगवा कर लगाया जाता है। शजरकारी का एक तरीक़ा आरायशी पौधों के साथ पार्कों की तामीर है। उसके तहत मुख्तलिफ मकामात पर तामीरात की जाती हैं और उनमें तरह तरह के आरायशी पौधे लगाए जाते हैं। इस मौके पर ये जिक्र भी भेजा ना होगा कि इस कंप्यूटराइज

0: दोस्तों, अभी आप गुलुकार गुलाम अली से उनकी दिलकश आवाज में गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था कतील शिफाई का। सामईन, प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं उर्दू जबान से मोहब्बत करने वाली एक उभरती हुई शायरा अपर्णा पात्रीकर से उनका कलाम उन्हीं के अंदाज में उन्हीं की जुबानी समात फरमाइए।
1: पहली नज्म आप तक पहुंचा रही हूँ। इस नज्म का उनवान है रंग। इस नज्म को समात फरमाए कि कौन सा रंग तेरे नाम में लिखूं कह दे, कौन सा रंग तेरे नाम में लिखूं कह दे, क्या तेरे रंग का उनवान मैं रखूं कह दे। रंग तेरा जो तुझसे होके इधर आया है, हाँ उसी का तो ये खुश रंग असर आया है। रोशनी में जो घुली है कोई रंगीनी सी, क्या फलक पे मेरे रंगीन कमर आया है। तेरी सोहबत ने किया ऐसे सराबोर मुझे, जैसे बादल कोई रंगों भरा झर आया है। एक रंगे हया है सुर्ख है आरिस जिससे। अब मैं उन तमाम रंगों की जानिब आपको ले चलूँगी जिन रंगों को मैंने इस नज़्म में पिरोया है। कि एक रंगे हया है सुर्ख है आरिस जिससे, एक वो रंग जो हैरत से उभर आया है, एक वो जो कि चढ़ा है देखते ही तुझको और, एक कुर्बत से तेरी रुख पे उतर आया है। एक वो सब्ज़ किया जिसने मेरे ख्वाबों को, एक वो सब्ज़ किया जिसने मेरे ख्वाबों को, एक वो जर्द जिसे लेके ये डर आया है, एक नीला जो सुकून लाया है मिलकर तुझसे, एक नीला जो सुकून लाया है मिलकर तुझसे, रंगे शफाफ जो नीयत में नज़र आया है, रंगे शफाफ जो नीयत में नज़र आया है। और आखिरी बंद इस नज़म का कि इश्क का रंग गुलाबी यूं घुला धड़कन में, इश्क का रंग गुलाबी यूं घुला धड़कन में, और दिल रंगे सियाही से मुकर आया है, और दिल रंगे सियाही से मुकर आया है। कौन सा रंग तेरे नाम में लिखूं कह दे, क्या तेरे रंग का उनवान में रखूं कह दे। इसी के साथ मैं अपनी एक गज़ल की ओर

आपको ले चलती हूँ। इसका मतलब कुछ यूँ है कि गमे इस्तराब क्या है वही शौक है आशिकाना। गमे इस्तराब क्या है वही शौक है आशिकाना, जहाँ जा के लौटना है उसी दर पे रोज़ जाना। गमे इस्तराब क्या है वही शौक है आशिकाना, जहाँ जा के लौटना है उसी दर पे रोज़ जाना। और शेर यूँ के मिले दाद हौसले को कि ये शौक रंग लाए, मिले दाद हौसले को कि ये शौक रंग लाए, मेरा काम सब्र रखना तेरा रोज़ आजमाना, मेरा काम सब्र रखना तेरा रोज़ आजमाना। इस शेर को भी आप गौर से सुने, ये मेरे पसंद का शेर है कि मेरा मुख्तलिफ बयां है, मेरा मुख्तलिफ बयां है तेरा मुख्तलिफ है लहजा, मेरा मुख्तलिफ बयां है तेरा मुख्तलिफ है लहजा, जो मेरे लिए हकीकत वो तेरे लिए फसाना, जो मेरे लिए हकीकत वो तेरे लिए फसाना। और शेर यूँ भी कि किसी और दर से अब क्या मेरा वास्ता या हसरत, किसी और दर से अब क्या मेरा वास्ता या हसरत, जहाँ सर झुका दिया है वहीं अश्क है बहाना, जहाँ सर झुका दिया है वहीं अश्क है बहाना। और ये शेर भी सुने कि मेरे दिल की तरबियत है, मेरे दिल की तरबियत है मेरी ये अजीब आदत, मेरे दिल की तरबियत है मेरी ये अजीब आदत, वो जो बात भूलनी हो उसे और याद रखना, वो जो बात भूलनी हो उसे और याद रखना। और इस गज़ल का आखिरी शेर पेश कर रही हूँ, जिसे हद से आगे ढूँढा, जिसे हद से आगे ढूँढा, जिसे हद से आगे चाहा, बा जुनून बेनियाजी उसे छू के लौट आना, बा जुनून बेनियाजी उसे छू के लौट आना। गमे इस्तराब क्या है वही शौक है आशिकाना, जहाँ जा के लौटना है उसी दर पे रोज़ जाना। मतलब जो है इस गज़ल का को सुने कि किस हक से मैं निकालूं एक नुक्स भी किसी में, किस हक से मैं निकालूं एक नुक्स भी किसी में, तब जबकि एक नाकिस रहता है हम सभी में, किस हक से मैं निकालूं एक नुक्स भी किसी में, तब जबकि एक नाकिस रहता है हम सभी में। और ये शेर सुने, ये हम सबकी दर हकीकत बात है कि आंगन में है खुशी गम दहलीज पर खड़ा है, आंगन में है खुशी गम दहलीज पर खड़ा है, ये सिलसिला अजल से कायम है ज़िंदगी में, ये सिलसिला अजल से कायम है ज़िंदगी में। और शेर यूँ भी कि क्यों ज़ख्म ज़ख्म मेरे ये पाँव हो गए हैं, क्यों ज़ख्म ज़ख्म मेरे ये पाँव हो गए हैं, तुम जानना जो चाहो चलना मेरी गली में, क्यों ज़ख्म ज़ख्म मेरे ये पाँव हो गए हैं, तुम जानना जो चाहो चलना मेरी गली में। रिश्तों के हवाले से ये शेर सुने कि रिश्ते तमाम खोए आलम यह है कि अब तो, रिश्ते तमाम खोए आलम है ये कि अब तो, खुद से भी बेखुदी है इस खपते जरकशी में, रिश्ते तमाम खोए आलम यह है कि अब तो, खुद से भी बेखुदी है इस खपते जरकशी में। और इस गज़ल का आखिरी शेर, कोशिश तमाम करके एक याद ही बनी बस, कोशिश तमाम करके एक याद ही बनी बस, लौटा सका न कोई वो वक्त फिर घड़ी में, लौटा सका न कोई वो वक्त फिर घड़ी में, किस हक से मैं निकालूं एक नुक्स भी किसी में, तब जबकि एक नाकिस रहता है हम सभी में। एक गज़ल थोड़ी बड़ी बहर की सुने कि रगे जाँ में सांस की तरह बह, रगे जाँ में सांस की तरह बह के लहू की तरह बदन में आ, रगे जाँ में सांस की तरह बह के लहू की तरह बदन में आ, ये बदन ये जाँ है वतन तेरा तू खुशी से अपने वतन में आ, ये बदन ये जाँ है वतन तेरा तू खुशी से अपने वतन में आ। और शेर सुने, मोहब्बत के लम्हों की बात है ये कि तेरे लम्स के एहसास में मेरे गुम से होश व हवास में, तेरे लम्स के एहसास में मेरे गुम से होश व हवास में, मुझे है कबूल ये दश्त भी, मुझे है कबूल ये दश्त भी मैंने कब कहा है चमन में आ, मुझे है कबूल ये दश्त भी मैंने कब कहा है चमन में आ। और शेर यूँ कि तेरे अक्स को कई तरह से, तेरे अक्स को कई तरह से मैं उकेरती रहूँ उम्र भर, तेरे अक्स को कई तरह से मैं उकेरती रहूँ उम्र भर, मेरी हर गज़ल में तू लफ्ज़ बन, मेरी हर गज़ल में तू लफ्ज़ बन तू ख्याल बन के सुखन में आ, मेरी हर गज़ल में तू लफ्ज़ बन तू ख्याल बन के सुखन में आ। और शेर यूँ कि मेरे साथ तेरे उरूज

0: का ये जहान भी तो है मुंतजिर, मेरे साथ तेरे उरूज का ये जहान भी तो है मुंतजिर। मेरी बात सुन, मेरे साथ चल, मेरी जान फिर से चलन में आ। मेरी बात सुन, मेरे साथ चल, मेरी जान फिर से चलन में आ। शेर आखिर इस गज़ल का कि मेरे रुख पे दुख की ये सिलवटें, मेरे रुख पे दुख की ये सिलवटें हैं नसीब की ये लिखावटें। मेरे रुख पे दुख की ये सिलवटें हैं नसीब की ये लिखावटें। तेरा क्या कसूर है इसमें तू, तेरा क्या कसूर है इसमें तू, न मलाल रख न शिकन में आ। तेरा क्या कसूर है इसमें तू, न मलाल रख न शिकन में आ। रगे जाँ में सांस की तरह बह के लहू की तरह बदन में आ। ये बदन ये जाँ है वतन तेरा, तू खुशी से अपने वतन में आ। और सिलसिला चल निकला है तो मैं एक नज़्म आप तक फिर पहुंचाना चाहूँगी। नज़्म का उनवान है गम क्या है, ये तेरा और मेरा गम क्या है, ये तेरा और मेरा गम क्या है, हैरत और रंज की अकजाई है। जाने कैसी ये शनासाई है, सुबह शाम वही वहशत है, हम में ना फासला ना कुर्बत है, ना हकीकत है ना असरार कोई, हम में तुम में जो है तकरार कोई, जाने किस बात के मुतालिक है, जीस्त की कौन सी सच्चाई है, ये तेरा और मेरा गम क्या है। अगला बन सुने कि चंद हालात हैं आशुफ्ता से, गलतियां दौर ए गुजिश्ता से, बोझ कुछ तरबियत ने डाले हुए, वहम कुछ जहनो दिल के पाले हुए, कुछ मरासिम जो निभाए न गए, कुछ गिले लब पे जो लाए न गए, कुछ हवादिस है कुछ तगाफुल है, और किस्मत की भी आराई है, ये तेरा और मेरा गम क्या है। अगला बनियों की एक लौ है जो कि अफसुरदा है, और खुद का जो खुद से ही पर्दा है, होश तकसीम है फर्जो हक में, एक अरसा हुआ हम है शक में, सच के इंसान है या है नकली, या किसी और की है कठपुतली, क्या नज़ारा है ये नाजिर के सिवा, जाने किस तरह की बीनाई है, ये तेरा और मेरा गम क्या है। आखिरी बंद इस नज़्म का मैं पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगी कि ज़ख्म नासूर हुए जाते हैं, फिर भी कांटों से छुए जाते हैं, और हम है कि इसी हालत में, ज़िंदा रहने की बुरी आदत में, बेगुनाही की सज़ा सुनते हैं, खुद ही फिर अपनी कज़ा चुनते हैं, ये बता दे कोई तो बेहतर हो, उम्र किस जुर्म की भरपाई है, ये तेरा और मेरा गम क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।
1: दोस्तों, अभी आप शायरा अपर्णा पात्रीकर से उनका कलाम समाप्त फरमा रहे थे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम आईना यहीं खत्म होता है। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा, अपने खतूत के जरिए हमें जरूर मुत्तला करें। हमारा पता नोट कीजिए, उर्दू प्रोग्राम आईना, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462002। अब आपके दोस्त वाजिद खान को दीजिए इजाजत। आदाब।
2: आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम आईना, आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। संग्रहालय से इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए धारावाहिक हंसना मना है। आज इस धारावाहिक की पांचवीं कड़ी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। वैलेंटाइन डे किसी को अच्छा लगा तो किसी को बुरा, कोई खुश हुआ तो कोई खफा हो गया। अरे लाख मना करें आप, मगर गोपाल तिवारी कहां मानने वाले।
1: एक फेस्टिवल अभी घुसपैठिए की तरह हिंदुस्तान

0: में घुसाया, और घुसा ऐसे कि हिंदुस्तान तो त्योहारों का देश है, यहां तो हर दिन त्योहार है। कैसे त्योहार? बैठकी, भैया दूज, धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली, पंचमी, छठ, नागपंचमी, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, दशहरा, गन्ना ग्यारस, भीमसेनी द्वादशी, धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली। अब ये बताओ कौन सा दिन खाली? मतलब त्योहारों का देश हिंदुस्तान, लेकिन जिन देशों में त्योहार नहीं है, अब वो क्या करें, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। यार हिंदुस्तान तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे रोज त्योहार है, वहाँ कभी कुछ पकवान बन रहे हैं, कभी होली खेली जा रही, तो कभी ईद, तो कभी दिवाली, तो कभी क्रिसमस, यानी स्वर्ग की कहीं कल्पना है तो हिंदुस्तान में है, क्योंकि विश्व के जितने त्योहार हैं उसमें से अधिकांश हिंदुस्तान उसका जनक है। एक त्योहार विदेश से आया और वो त्योहार धीरे धीरे संक्रमित कर रहा है हमारी युवा पीढ़ी को, उस पर एक व्यंग है और मजा लीजिए। मैं उसके विरोध में भी बात नहीं कर रहा, उसके पक्ष में भी बात नहीं कर रहा, केवल आनंद लेने की बात है। आइटम का नाम है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे एक ऐसा त्योहार जिसे पाश्चात्य संस्कृति में मनाया गया, जिस दिन किसी संत ने यह कहा कि हम एक दूसरे में प्यार बांटें, एक दूसरे के साथ स्नेह बांटें, ये इसका सच्चा मैसेज था। और अभी जो उसका जो रूप हो गया है विकृत, वो भी हम देखेंगे इस आइटम के अंदर। वैलेंटाइन डे के कम से कम 2-4 दिन पहले लड़कों में विशेष तैयारी होती, और कैसी तैयारी वो देखिए साहब, लड़कों की तैयारी। 4-6 लड़के हैं और लड़कों में चर्चा चल रही है, कहे तुम बता संजू कैसा क्या तुम्हारा कल यार, अरे यार गुरु यार जींस ले ली है, अब टी शर्ट की यार जुगाड़ नहीं हो रही, तुम दिलवा दो यार, तुम्हें काम करो, 20 पड़े हैं, हाँ पड़े, तुम्हें काम करो, वहाँ चलो, वहाँ गोल बाजार के वहाँ वहाँ सब सेकंड हैंड मिलते हैं, अरे कोई पहचान जा, अरे कचरे पर दे रहे हो चलेंगे यार, तुम्हारी क्या व्यवस्था यार, अरे यार जब क्या हुआ पिछले बार कुर्ता पहन के गए रहे तो वो यार उन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं, इस बार क्या व्यवस्था तुम्हारी यार, लेदर वाली जैकेट मिल जाए, अरे तुम भी बड़े भाई ना उधारी के चक्कर में हर समय रहते, तुम आओ एक काम करो शाम को आओ, हम दिलवाते हैं, वो चच्चा की है हम दिलवा देंगे सेटिंग से, चिंता नहीं करो तुम। तुम्हारी क्या व्यवस्था यार, यार मतलब कुर्ता मिल गया, हाँ मिल गया कुर्ता, और मतलब जीन्स भी सब मिल गई, अब यार बड़े भाई यार जूते की बहुत दिक्कत, क्या अरे बोले यार वो जूते यार ढीले पड़ रहे हैं यार, और छोटे भाई के लिए तो वो बहुत गड़ रहे हैं, काट रहे हैं यार, तो बोले फिर क्या व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था करिए यार 250-300 रुपये, हम सोच रहे हैं यार सदर से मतलब जाके ले लें जूते, अरे यार तुम सदर जाने क्या जरूरत, हर चीज़ सदर जाना, गोरखपुर जाना, यहीं मिल जाएंगे, तुम बोलो ना कितने चाहिए तुम्हें और विश्वास नहीं है तो तुम मतलब 14 को चलना, मुफ्त दिलवाएंगे अपन। और सुबह से माहौल बन रहा है और सब सुबह से अपना बिल्कुल टीम टाम होके, और जो दुकान होती है बार-बार की वहाँ भी भीड़ लगी हुई है, शेविंग वेविंग बन रही है बढ़िया, अरे तो खूंट निकाल दी, अरे यहाँ से, अरे आज बहुत तुम उल्टी भी रेजर चलवा रहे, सीधी भी नहीं गुरु, करीब का मामला है ना, तो जरा गड़ना नहीं चाहिए, अरे वाह सही। अब साहब पूरी तैयारियाँ हो गई और सुबह सुबह यहाँ इनकी तैयारी चल रही है, वहाँ दूसरे डिपार्टमेंट की भी तैयारी चल रही है,
1: तुम्हारा कैसा क्या, नहीं हमने तो मानो कि नई ड्रेस बनवाई है, और ये शॉर्ट ब्लाउज शॉर्ट, ये शॉर्ट वो, तू तो बिल्कुल आजकल इतनी शॉर्टकट होती जा रही है, ऐसा नहीं करना कि अल्लाह सब हो गया बाद में हम लोग को पता चल रहा है, नहीं रे तेरे को तो बोला कितनी पक्की सहेली थी ना, हाँ माले में पक्की सहेली, पिछले बार बुलाया था वहाँ, बाद में कज़न बोल, नहीं वो कज़न ही हमको चार आ रही, एक बात बता जिसको तुम कज़न कह रही थी, परसों तक तो मेरे कज़न थे, तुम आए कैसे हो गए।
0: अब साहब ये सब चर्चाएं, वहाँ पुलिस महकमा भी जो है अपनी तैयारी में लगा है और आदेश दिए जा रहे हैं,
2: ऐसा है कि देखिए देश में ये जो त्योहार आ रहे हैं इनसे बड़ी दिक्कत हो रही है, समझ रहे नहीं आप, हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ती चली जा रही है, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी जगह हैं खासकर पॉइंट है ना, कॉलेज वगैरह हो गया, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, कॉफ़ी हाउस, और जहाँ जहाँ मीटिंग पॉइंट है पूरे में सब में रहेंगे, और सुनो तुम इधर आओ, रेखा, सुशीला, श्यामा तुम इधर आओ, कर लो तुम भी जाओ, एक चीज़ ध्यान रखो कि कल तुम लोग विदाउट यूनिफॉर्म रहो,
3: क्यों सर यू विदाउट यूनिफॉर्म,
2: समझो बात, जितनी कह रहा है मिशन है हमारा, विदाउट यूनिफॉर्म रहोगी, और अगर कोई फूल दे तो ले लेना,
3: नहीं सर हम किसी से भी,
2: अरे तुमको फूल लेने का मतलब हम ऐसा नहीं बोल रहे, फूल दे तो ले

0: देना और उसके बाद फिर मतलब झुराई चालू, समझ गई नहीं समझ गई? ये पूरा वहां भी आदेश चल रहा, वहां भी बड़ी तैयारियां हो रही साहब। अब सुबह जब हुई, वहां फूल वाले भी अपना जुगाड़ करके फूल लाए हैं और 2 रुपए की कली 20 रुपए में बेचने के चक्कर में है, कुछ प्लास्टिक की कलियां भी लाए हैं, उनकी भी तैयारियां हैं। और देखिए सुबह का वक्त और सब अपने अपने मुहिम में चल पड़े। और कॉलेज के पास, स्कूल्स के पास, बच्चों में, सब में बड़ा जोश है त्यौहार को मनाने का। जो त्यौहार नहीं मनाने देना चाहते उनमें भी बड़ा जोश है, क्यों नहीं मनाने देना चाहते? उसमें कुछ लोग नए शामिल हुए दूसरी पार्टी से, क्यों बोले पिछले बार तो तुम विरोध नहीं कर रहे थे बाबा, इस बार? अरे नहीं यार, पिछले बार हम फूल लेके गए तो यार मना कर दिया हमने, बोला ठीक है सच्चा विरोधी में शामिल हो जाओ। बोले गुरु इस बार तो बहुत मतलब चटकाना है। बोले तुम क्यों उसको मारे क्यों रहे पिछली बार? अरे वैलेंटाइन का तो बहाना रहा, कोई बोलता नहीं हो, चक्कर में मारना ही चक्का दो। ये साहब चर्चाएं हुई। अब जो फूल देते हैं और लेते हैं, जिनका मामला पहले से पटरी में है उनकी बात अलग है, और जो पहली बार हौसला बढ़ाते हैं उनके साथ बहुत गजब बात होती है। कैसी बात? अब मान लीजिए लड़का दे रहा है तो वो 3-4 बार सोचेगा कि कहीं दें ऐसा ना हो कि रिवर्स में झापड़ पड़ जाए। माने एक बड़ा डर रहता है और लड़कियों को भी डर रहता है, लेकिन उन्होंने भैया ये वो बाजू वाला शिकायत कर देगा। अब जैसे ही उसने फूल दिया, एक्सक्यूज मी फूल, मुझे आपसे बात नहीं करनी, हम आपको बहुत मतलब चाहते हैं, आप चाहो या ना चाहो, आप जा नहीं तो हम बोल देंगे अभी शोर मचाएंगे, आप फालतू ने नाटक नहीं करो, आप प्लीज दे दीजिए माम, अच्छा रहने दीजिए हम जा रहे, वो भागा। ये साहब ऐसी कई घटनाएं घटी। अब दोस्तों की चर्चा चल रही है, एक चौबारे पे मैं गया, काफ़ी दोस्त बैठे हुए हैं, शाम का वक्त है और उनकी समीक्षा चल रही है कि बॉस फूल मंडी में क्या स्थिति है, कॉलेजेस में क्या स्थिति है, यहाँ क्या स्थिति है और क्या चर्चा हो रही है। देखिए साहब, एक उसमें से गैंग लीडर है और वो सबको एक एक को बुला के पूछ रहा है, तुम आओ बेटा तुम बताओ तुम्हारे फूल देने का क्या हुआ, तुम भी बताओ फूल मिले कि नहीं मिले। अरे यार फूल देना तो है लेकिन मंडी में फूल नहीं है यार, तो तुम एक काम करो ना, तुम वहाँ चले जाओ फूल मंडी बड़े बाजार के पास चले जाओ। अरे भैया कह रहे यार, गुड्डू भी कह रहा क्या हुआ भैया, गुड्डू से पूछो क्या तुम रो कह रहे यार, भैया हुआ क्या भैया, हम फूल लेने गए थे यार 20 रुपया के 3 कली की बात है यार, बाप रे ऐसा टल्ला टल्ला आ रहा है, बाप रे कमर अड़ गई गुरु, बहुत बड़ा मारा माँ कसम बहुत मारा,
1: और जा फूल लेने।
0: ये घटनाएं हमने एक से पूछा, अच्छा एक काम करो तुम्हारे इधर लगे रहे फूल, तुम्हारे इधर के फूल का क्या हुआ? अरे विजय रात ही में कोई चुरा के ले गया, हमने सोचा सुबह ताजा देंगे, वो ताजे के चक्कर में बासा भी चला गया विजय। तुम्हारे इधर तो इधर आ, तुम्हारा क्या नाम?
2: हमारा नाम झोरी लाल।
0: अरे बहुत सुंदर झोरी, झोरी बेटा तुम्हारे तो बगीचा लगा ना, तुम्हारे कौन से फूल लगे?
2: हमारे इधर तो गेंदा के लगे।
0: अरे गेंदा के फूल नहीं दिए जाते यार, तुम्हारा क्या नाम है?
2: जी खजूरी।
0: क्या नाम?
2: खजूरी।
0: अरे बहुत सुंदर खजूरी, तुम्हारे इधर बेटा कौन से फूल लगे?
2: हमारे इधर तो रात रानी के लगे।
0: अच्छा। रात रानी के फूल नहीं दिए जाते यार,
2: नहीं तो हम तो देंगे।
0: अरे रात रानी के फूल नहीं दिए जाते, कब दोगे तुम?
2: दिन में नहीं देंगे, बहुत डर लगता है, रात रानी के फूल रात में कल्टी में देंगे।
0: और बेटा तुम बताओ कि तुम्हारे इधर? अरे बहुत सुंदर, आओ आओ भैया श्यामदास जी आओ आओ। अब श्यामू आ गए, रंग पक्का, कलर छूटे, पैसा वापस, उनसे पूछा कि क्यों तुम दे रहे फूल कि नहीं?
3: भैया हम नहीं देंगे यार। क्यों? अरे सोचना देगी ना,
0: दे दो ना, क्या दे, डरने क्या बात है? अच्छा ये बताओ दे किसको रहे हो?
3: भैया फन तो मतलब उसी को देंगे, अब दोनों हम लोग का कलर भैया एक ही सा है ना, मैचिंग है।
0: अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा कलर मैचिंग है, तुम फूल कौन सा दे रहे हो?
3: ये ऐसा है, गोरा कलर होता तो अपन लाल वाला फूल गुलाब का दे देते, लेकिन पक्के कलर की हम सोच रहे हैं कि मतलब मैया को जासौन का चढ़ा दे।
0: अब ये साहब फूलों की चर्चा चल रही, एक से बुलाए तुम इधर आओ, तुम कहा के फूल देते?
3: अरे भैया हम नहीं दे रहे फूल, फूल के पीछे बहुत देखा।
0: तुम क्यों नहीं?
3: अरे कह रहे फूल देने यार, हम लाइन में लगे भैया, 4 जन के फूल ले रही हूँ, वापस आ गए।
0: क्या तुम्हारे
3: नंबर ही नहीं आया भैया?

0: तो फिर हम भी लेके आप फूल, अब दूसरा वाला दें, कौन सा दोगे? बेशरम का। एक को पूछा क्या भाई तुम काहे के फूल दे रहे? कहने लगे गुरु हमारी जो है ना सफेद कपड़े की बहुत शौकीन है। क्या झक कपड़े पहनती गुरु मार एकदम, और वो कौन कौन सी कंपनी के पाउडर ऑर्डर से धो के बहुत झमाझम कपड़े, सफेद कपड़े, सफेद जूती और सफेद बिल्कुल एकदम बालों में रिवेन रिवेन, मतलब बिल्कुल सफेदी की चमकार है। कहने लगे फिर आप बिल्कुल चांदनी बदन गुरु, हम तो चांदनी बदन को चांदनी रात में आप बिल्कुल सफेद कपड़ों में चांदनी के फूल देंगे। बात अच्छे। अब ये फूलों की चर्चा चल रही है, हमने पूछा काय बड्डा तुम कैसे फूल दे रहे? हम कभी नहीं देंगे बाबा फूल, क्यों? अरे गुरु यार हमने बोला फूल दे तो उसने कहा तुम अप्रैल में आना। एक लड़के को बुलाया और उससे पूछा तुम आओ तुम्हारा नाम?
1: जी झोरी।
0: अरे कैसे कैसे नाम धरते तुम लोग यार, झोरी दरा बेटा, तुम कहाँ रहते?
1: जी ग्वारी घाट में।
0: ग्वारी घाट में रहते, बहुत खूबसूरत बात है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी रहते हैं। अब ये बताइए ग्वारी घाट बड़ा धार्मिक स्थल भी है, माँ नर्मदा का सरिल है, और ग्वारी घाट में बहुत बढ़िया फूलों की खेती भी होती है, नर्सरी लगी है, वहाँ तो फूल जरूर मिल जाएंगे। नहीं भैया वहाँ के सब फूल मतलब पहले ही कट गए, बिक गए भैया, एक्सपोर्ट हो गए। अच्छा एक्सपोर्ट हो गए? हाँ भैया इस बार फूल नहीं है वहाँ, बहुत महंगा गया गुलाब इस बार वहाँ का, तो अभी कोई फूल नहीं मिलेंगे। मिलेंगे ना भैया, तो कौन से फूल? खारी वाले। इसी दौरान मैंने एक पार्क का सर्वे किया, पार्क में देखा कि दो तीन लोग यहाँ वहाँ बैठे हैं और बड़े उदास बैठे हैं। एक मित्र को मैंने देखा कि वो परिचित थे कहीं से, बड़े उदास बैठे। हमने पूछा क्यों क्या हुआ तुमको यार? अरे बोले यार भैया यार बहुत दिक्कत हो गई। बोले क्यों क्या हुआ? बोले यार हमारा मतलब बहुत दिन से सिलसिला चल रहा था, आज फाइनल बात होना थी, तो यार हमारे पिताजी ने कहा कि नहीं उसके पिताजी क्या देंगे, दहेज में कुछ दे नहीं पा रहे हैं। एक काम करो तुम, तो वो दूसरी वाली पार्टी उसको हमने यस कर दिया और वहीं शादी करो तुम। तो यार वो वहाँ से मतलब दिल टूट गया यार, क्या बताएं। तो फिर बोले फिर हुआ क्या? तो बोले यार हम क्या बताएं बहुत दुखी हैं। वो शायराना अंदाज के आदमी थे, तो उनने उसी अंदाज में अपनी बात बयां की कि मोहब्बत में मेरा सर फूटा, मोहब्बत में मेरा सर फूटा, हाथ टूटा पैरों में दर्द आया है। मोहब्बत में मेरा सर फूटा, हाथ टूटा पैरों में दर्द आया है, और मैं जब निकला उनकी गली से तो उन्होंने अखियों के झरोखों से देखा और फरमाया बहारो फूल बरसाओ। लोग अलग अलग तरह की शर्त लगाते हैं और शर्तों की बात होती है, लेकिन उसके पहले एक बात, बात वैलेंटाइन डे की चल रही थी। बिटिया जब घर में पहुंची तो पापा पहले से मौजूद थे, और पापा ने जैसी बिटिया को आते देखा और क्या बात की। कितना बज रहे हैं?
2: पापा 5:30।
0: अच्छा कॉलेज कितने बजे छूटता?
2: पापा जी 3:30 बजे छूटता।
0: तो इतने इतनी देर क्या कर रही थी?
2: नहीं वो सहेली के यहाँ चली गई थी तो इसलिए लेट हो गई।
0: हमें सब पता है सहेली के यहाँ चली गई थी तुम, और ये हाथ पे पीछे क्या है?
2: नहीं पापा कुछ नहीं।
0: हाथ दिखाओ।
2: नहीं वो कुछ नहीं।
0: हाथ दिखाओ, हमने कहा नहीं अभी, अब हाथ दिखाओ। रोने रोने की बात नहीं है। अच्छा मतलब गुलाब की कली, हम समझ गए कहाँ से तुम आ रही हो।
2: पापा मम्मी हमको बोलते।
0: अच्छा तुमको नहीं बोले, किसको बोले?
2: मम्मी को।
0: क्यों मम्मी ने क्या किया? और मम्मी है कहाँ तुम्हारी? मम्मी कहाँ? देखो बेटा
2: मम्मी नहीं है।
0: क्यों कहाँ गई मम्मी?
2: मम्मी वहाँ गई है प्रवचन सुन।
0: क्यों आज किसके प्रवचन हो रहे हैं? कौन संत आ गए?
2: वो संत वैलेंटाइन आए।
0: और जैसी मम्मी आई, आइए कहाँ गई थी?
2: नहीं वो गुरुजी आए थे तो उनका प्रवचन सुन।
0: और ये हाथ में क्या तुम्हारे? अच्छा पूरा बुके लेके आई हो तुम गुलाब का, बहुत अच्छे। कौन ने दिया ये?
2: नहीं सब सब जन चढ़ाने को लाए, नहीं तो मतलब आखिरी बचे वाले हम,
0: तो हमको ना बता दो बिल्कुल। ये ऐसी बहुत सारी बातें वैलेंटाइन में हमने सुनी। एक और बिटिया बिल्कुल सबसे अलग, सुबह उठी पूजा की और 200 रुपए की उसने गुलाब की माला दो महीने पहले बुक कर दी थी। वो गुलाब की माला उसने ली और गुलाब के दुकानदार से कहा कि एक कली मुफ्त।

0: मैडम, बोले आपने दूसरा बैग माला लिए, कल ही की बात करनी, ये लीजिए बढ़िया पैक करके। उनने खुशबू उशबू डाल के और वो थर्माकोल के बबल और बढ़िया से उसको जरा सजा के वो उसने दिया, और गुलाब की माला उसने ली, साथ में कुछ मिष्ठान लिया और बाबा के दरबार गई। बाबा को एक माला चढ़ाई उसने, हाथ जोड़े आँख बंद बाबा से विनम्र भाव से प्रार्थना की, बाबा मैंने आपका ख्याल रखा, आप मेरा रखिएगा। एक बिटिया फूल लेने के लिए अपने पड़ोस में गई और जैसे ही उसने बगीचे से फूल तोड़ना चाहे, दादी ने फौरन उसको वहीं पर आदेश करके रुका, हाँ हाँ बेटा आज बिल्कुल फूल नहीं। क्यों दादी? मैं तो रोज ले जाती हूँ भगवान जी के लिए फूल, और आप आज मना कर रहे हैं, ऐसे में भगवान जी नाराज हो। तो हाँ मैंने बताओ मतलब कि भगवान जी नाराज हो जाए, हमें मालूम तुम फूल कौन के लाने ले जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, सच्ची में मैं भगवान के लिए फूल ले जा रही हूँ, आप बिल्कुल ऐसे में भगवान आपको पाप पड़ेगा और किसी को मना नहीं। हाँ मैंने बताओ बेटा, तुम जो उनके लाने फूल ले जा रहे हैं हमें सब मालूम है। आपको क्या मालूम है? ऐसा है बेटा, तुम जितने दिन फूल ले गई आज के बाद फूल ले जाना बंद। क्यों ऐसा क्यों आप कर रहे हैं हमारे साथ जुल्म? ऐसा है बेटा, तुम जौन भगवान के लाने फूल ले जाती हो, वे तुम्हारे वाले भगवान आज हमारी नातिन से एंगेज हो रहे।
1: हंसना मना है,
2: हंसना मना है,
1: रे हंसना मना है,
2: हंसना मना है।
1: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
2: हंसना मना है।
1: ले लो भाइयों, ताजे फलों का संसार आपके द्वार पे आ गया। अरे कश्मीर का लाल सेब ले लो, महाराष्ट्र का संतरा ले लो, भुसावल का ले लो केला, सबसे बढ़िया ताजा केला, जबरदस्त और प्यारा मीठा मीठा ताजा केला ले लो भाई साहब।
3: ले केले वाले, ए केले वाले।
1: हाँ भाऊजी नमस्कार। भाऊजी बोलिए भाऊजी।
3: केले कैसे दिए?
1: ये वाले केले भुसावल के भाऊजी, बड़े प्यारे, बहुत ताजे, बहुत बढ़िया केले हैं भाऊजी, ले लीजिए। अरे भाव क्या लगाए भाऊजी, जो मन करे आपका दे देना, और क्या है।
3: अरे भाई कुछ तो भाव होगा, कैसे दिए आपने केले?
1: अरे बताए तो। आप पूछ रहे तो बता देते, 5 रुपए के 12।
3: 5 के 12?
1: हाँ।
3: अरे यार कुछ कम करो यार।
1: तो 10 ले लो।
3: नमस्कार।
1: आइए साहब, आइए। एक काम करो भैया, जरा जल्दी से 6 साबुन दे दो, नहाने के साबुन।
3: नहाने का साबुन? अच्छा अच्छा, छोटू जरा नहाने के साबुन निकाल लो भैया।
4: सेठ जी नहाने का साबुन खत्म हो गया है। सेठ जी
3: क्या कहा? नहाने का साबुन खत्म हो गया है? भाई साहब नहाने का साबुन तो खत्म हो गया है। एक काम कीजिए कि वो रात को हमारा माल आने वाला है, तो जैसे ही हमारा माल आएगा तो कल वो साबुन आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो एक काम करो, साबुन नहीं है, है ना, आप नाले दे दीजिए, वो पायजामे में जो नाले डाले जाते हैं।
3: अच्छा अच्छा, हाँ। पायजामे का नाला?
1: हाँ, हाँ।
3: हाँ जी पायजामे का नाला। छोटू पायजामे का नाला देना भैया।
4: सर जी नाला तो पायजामे का खत्म हो गया। सर जी रात में माल आएगा तभी आप आएगा।
3: क्या कहा? पैजामे का नाड़ा भी खत्म हो गया है। भाई साहब क्या है कि वो नाड़ा भी खत्म हो गया है पैजामे का, वो क्या है कि माल आने वाला है, और जैसे ही रात को माल आएगा तो हम आपके यहाँ वो नाड़ा और साबुन ये दोनों सामान पहुँचा देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए।
1: माल आने वाला, माल आने वाला। अच्छा फिर आप एक काम करिए, आप बहुत जल्दी से वो जूते की पॉलिश दे दीजिए, वो काले वाली।
3: जूते की पॉलिश?
1: हाँ
3: काली वाली।
1: हाँ, हाँ।
3: वो तो साहब ये रखिए, ये लीजिए, ये काली।
1: हाँ।
3: ये आपने काली मांगी?
1: हाँ।
3: जी ये लाल है, क्या है कि काली जरा खत्म हो गई है। हाँ। वो माल आने वाला है साहब, हमारा जैसे ही माल आएगा तो हम वैसे आपके यहाँ तीनों सामान पहुँचा देंगे।
1: हमें कोई जरूरत नहीं है, आप एक बात बताइए, आपकी दुकान में ताले हैं?
3: ताले?
1: हाँ ताले। हाँ, ताले।
3: ये देखिए ताले तो सामने रखे, ये देखिए छोटा ताला, ये देखिए बड़ा, ये हरा वाला देखिए कैसा है, ये देखिए।
1: हमें
3: ये...
1: ताले चाहिए नहीं है भाई साहब, हमको ताले नहीं चाहिए हैं। आप एक काम करिए, आप अपनी दुकान का शटर नीचे गिराइए, दुकान बंद करिए, उसमें ताले लगाइए और अपने घर जाइए। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि हंसने से आपकी कितनी मांस पेशियां तनाव

0: प्रवाहित हो जाती है, नहीं मालूम ना। वैसे एक राज की बात बताऊं, हमें भी नहीं मालूम। मगर अंदाजा है कि 200-400 मांस पेशियों पर असर तो होता होगा, है ना। खैर छोड़िए, विनय जैन एक बार फिर आ रहे हैं आपको हंसाने के लिए।
1: एक साहब डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और बोले, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए। क्या बात है? डॉक्टर साहब जल्दी चलिए। अरे भाई बात क्या है, कहाँ चलूँ मैं? डॉक्टर साहब क्या है कि वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अरे भाई किसकी तबीयत खराब है? जिसकी तबीयत खराब है उसको यहीं ले आऊँ? डॉक्टर साहब वो यहाँ नहीं आ सकती। अरे भाई कौन नहीं आ सकती? आपकी माता जी हैं, आपकी पत्नी हैं, आपकी बच्ची हैं। नहीं डॉक्टर साहब वो क्या है ना कि वो यहाँ मैं उनको ला नहीं सकता। अरे भाई वो है कौन? वो डॉक्टर साहब हमारी भैंस बीमार है। भैंस बीमार है? शट अप, गो डाउन। भैंस बीमार है और मेरे जैसे डॉक्टर के पास आप यहाँ पे ये शिकायत लेके आए कि भैंस बीमार है, मैं आपके घर आपकी भैंस को देखने चलूँ? मैं मरीज को यहाँ पर देखता हूँ, वो भी जानवरों को नहीं इंसानों को। तुम भैंस की तबीयत खराब लेके मेरे पास आए हो, गेट आउट। अरे डॉक्टर साहब कुछ करो डॉक्टर साहब, हमारी भैंस मर जाएगी। डॉक्टर साहब मैं भैंस को बिल्कुल नहीं ला सकता साहब। ठीक है डॉक्टर साहब को दया आ जाती है, एक काम करते हैं, तुम्हारी भैंस की तबीयत खराब है तो मैं उसको दवाई दे देता हूँ और ये गोली दे देता हूँ, तो तुम ये गोली ले जाओ और भैंस को खिला देना और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसका 50 रुपया लगेगा। हाँ डॉक्टर साहब हम 50 रुपये देंगे। साहब 50 रुपये देते हैं, डॉक्टर साहब उनको 2-3 गोलियाँ देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गोलियाँ देख के साहब उनको खिलाने का तरीका पूछते हैं। डॉक्टर साहब इसको खिलाएंगे कैसे? अरे भाई एक तो भैंस का इलाज बता रहे हैं, वैसे ही हम जानवरों का इलाज करते नहीं हैं, उसके बाद तुमको हम गोली दे रहे हैं। खिलाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है भाई। तुम चूल्हे फूकने वाली कभी तुमने वो फूकनी देखी है जिससे फूका करते हैं? हाँ साहब हमने फूकनी तो बहुत देखी। बस फूकनी को ऐसा भैंस के मुंह में फंसाना और उसके बाद तुम क्या करना, गोली को लेके फूकनी के बीच में रखना और जोर से एक बार फूंक मार देना, बस गोली अंदर, भैंस की तबीयत ठीक। दूसरे दिन साहब वापस लौट के आए, डॉक्टर साहब ने पूछा कि भाई भैंस की तबीयत ठीक है?
2: बोले साहब भैंस की तो छोड़ो, हमारी तबीयत खराब हो गई।
1: बोले क्या हो गया?
2: बोले साहब जैसे बताया था वैसे ही किया था, फूकनी उकनी सब लगा दी भैंसिया के मुंह में, जैसे ही गोली रखी तो भैंस ने पहले ही फूंक मार दी।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हंसना मना है, मगर आपकी न हंसने की कसम तोड़ने के लिए आवाज दे रहे हैं हसोड़ गोपाल तिवारी को।
3: कुछ लोग ऑफिस में भी होते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि उसका कुछ मजा ही अलग होता है। एक सज्जन बैठे हुए ऑफिस में अपने कुछ मैटर ड्राफ्ट कर रहे थे और ड्राफ्टिंग के वक्त जो गलतियां होती हैं तो पेपर चूंकि शासकीय होता है तो उसका कैसा भी उपयोग किया जा सकता है, तुरंत तो 4 लाइन लिखी, नहीं गलत, ऐसा मोड़ा और फेंका उनने, फिर दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, ऐसा कई देर से कर रहे थे। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने लिखा कुछ और उसको मोड़ा, फेंकने के लिए विंडो जो होती है, खिड़की होती है, उसमें थोड़ा छेद था, बाहर फेंकने के वो मूड में थे, जैसे ही उनने ऐसा करके फेंका और फेंका तो वो टकरा के वापस आ गया। अरे यार नहीं गया, फिर रख दिया और फिर फेंका, फिर नहीं गया, 3-4 बार ऐसा हो गया। तो पास में एक जो सज्जन बैठे थे वो इरिटेट हुए और उन्होंने वो कागज़ उठाया, नहीं भाई साहब ऐसे नहीं फेंकते, देखो निशाना देखना है, और जैसे उन्होंने लिया एक बार में ऐसा फेंका उस तरफ, देखा ऐसे फेंकते हैं। ये ऐसा है हमारे बस की बात नहीं है, आप ही कर सकते हो क्योंकि आप बचपन से फेंक रहे हो। और गजब गजब बातें हो जाती हैं। एक सज्जन गुरंदी बाजार पहुंचे और गुरंदी बाजार पहुंचकर उन्होंने कुछ चीज़ों के रेट पूछे और रेट कैसे पूछे, क्या बात हुई देखिए। एक तोता बेचने वाला था और तोता बेचने वाले के पास गए और तोते की क्वालिटी वाइज उसके रेट्स थे, वो पूछ रहा है तोते के बारे में, देखिए। अरे भैया ये तोते दिखा रहे हैं जरा। हाँ साहब कौन सा तोता दिखना चाहेंगे सर आप? वो वाला दिखाओ, वो जो लोहे के पिंजरे में है, जो ऑर्डिनरी सा, वो जिसकी कंठी इंटी है और बहुत बढ़िया सा है, कैसा तोता वो दिखाओ जरा, कैसा लग रहा है वो? साहब ये जो तोता है, इस तोते को करण तोता बोलते हैं साहब, ये राम राम सीताराम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलता सर, हेलो बोलता है मिले तो, हाय बोलता है मिले तो, बाय बोलता है जाए तो, और मोहल्ले में कभी मिल जाए, कभी कॉलोनी में मिल जाए तो फौरन बोलता है काय, तो हाय बाय और काय का तीनों का मैच है इसका साहब, बड़ा इंटेलिजेंट को ये जो है तोता है, आप चाहें तो ये ले लीजिए। कितने का है?

0: साहब ये जो तोता है ये मात्र 200 रुपए का है।
1: अच्छा,
0: उसके बाद वो जो बहुत बढ़िया सा प्यारा सा तोता और बिल्कुल गजब लग रहा है वो तोता दिखाओ जरा, वो चांदी के पिंजरे में उसको दिखाओ। हाँ साहब, ये जो तोता है ये तोता कुछ काम करता है, इधर के उधर उधर के इधर करता है। साहब ये तोता, इसकी पगार बहुत कम होती है लेकिन ये उससे ज़्यादा कमाता है। तोता बहुत काम का है, बड़े बड़े काम कर देता है सर, जो काम आप चक्कर लगवा लगवा के नहीं करवा पाएंगे ये तोते कर देते हैं। साहब ये तोता जो है 2000 रुपये का है, कम बोलता है, यस सर नो सर बोलता है। अच्छा, ये जो सोने के पिंजड़े में, सोने के झूले में सुनहरा सा वैल गजब झम तोता दिख रहा है, जो जिस तोते के एक पंख में इतनी शार्पनेस है, इतना बढ़िया शाइन है, ये तोता थोड़ा देखा। साहब जिस तोते की बात आप कर रहे हैं ये बहुत कॉस्टली तोता है, ये एक्चुअली सर बहुत लर्निड तोता है, बड़ी जुगाड़ के बाद इस पिंजरे में आया साहब, बड़े मुश्किल से कैद हुआ है। और साहब ये जो तोता है केवल ऑर्डर देना जाता है। नो नो, दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत बात है। हाँ ठीक है, तुम्हें मिलेगा भाई, ये ऐसा नहीं है, ये साहब बहुत बढ़िया तोता है, ये बिल्कुल ऑफिशियल जवान जानता है। अच्छा ये कितने का है? ये 10,000 का है। यार तुम गजबत भी हो यार, जो तोता सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे बढ़िया बोलता है, सबसे बढ़िया क्वालिटी है जिसकी, और जो लोहे के पिंजड़े में रखा है उसको तुम खिला रहे, वही अपना चना हो गया, मूंगफली हो गई, और जो सबसे बढ़िया वाला तोता है उसको तो हम देख रहे कि तुम हलवा खिला रहे, नाना प्रकार के व्यंजन रखे हैं, हैं? जो सबसे ज्यादा काम कर रहा उसको खाने को भी ठीक से नहीं, रेट भी उसके कम, जो सोने के पिंजड़े में तोता है उसके रेट्स भी ज्यादा, काम कुछ करना नहीं। ऐसा है साहब, ये गोरंदी बाजार में जरूर आए हैं लेकिन ये ऑक्शन के सरकारी तोते हैं।
2: और दोस्तों, हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मना है के पांचवा भाग। यह आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने तीन देशों के हिंद प्रशांत दौरे की शुरुआत की। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक आज लगभग 27 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के बढ़ते योगदान को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर में संभाग स्तरीय उन्नत कृषक संवाद सम्मेलन में शामिल होंगे। ये आयोजन आज शाम राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन का भूमि पूजन भी करेंगे। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला कल खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे टेंट ब्रिज में शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

खुद को उम्मीदों से सजाना ज़रूरी है, ज़िंदगी खुशनुमा बनाना ज़रूरी है, हालात चाहे कुछ भी हो लेकिन हमेशा हंसना मुस्कुराना ज़रूरी है। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में युववाणी में। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त पूजा पांडे। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं वन महोत्सव सप्ताह और वर्ल्ड जूनोसस डे के बारे में। साथ ही जानेंगे क्या है फिन टॉक्सिसिटी और कैसे युवाओं को इससे बचना चाहिए, और साथ ही सुनेंगे आपके मनपसंदीदा फिल्मी गीत। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस मज़ेदार से गीत के साथ।

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत फिल्म प्रिंस से, जिसमें स्वर दिए थे आतिफ असलम और श्रेया घोषाल ने। गीतकार हैं समीर और संगीत है सचिन गुप्ता का। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात वन महोत्सव की करते हैं। दोस्तों वन महोत्सव सप्ताह भारत का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय वृक्षारोपण उत्सव है। इसे हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। वन महोत्सव का सीधा मतलब है पेड़ों का त्यौहार, जिसका मेन मोटिव लोगों को प्रकृति से जुड़ना और वनों की कटाई को रोककर ज़्यादा से ज़्यादा नए पौधे लगाना है। बात करें इसकी शुरुआत की तो साल 1947 में देश की आज़ादी के बाद भारत में बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को बहुत तेज़ी से काटा जा रहा था। पेड़ों की इस अंधाधुंध कटाई की वजह से ज़मीन का बंजर होना, समय पर बारिश नहीं होना, सूखा और खाने की कमी जैसी समस्याएं देश में होने लगी थी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए साल 1950 में भारत की तत्कालीन केंद्र खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और 1950 के पहले सप्ताह में, जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली में एक विशाल वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया और तभी से हर साल देश भर में 1 जुलाई से 7 जुलाई को एक पूरा सप्ताह एक त्यौहार की तरह मनाया जाने लगा। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि भारत में वन महोत्सव सप्ताह कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तो इस सप्ताह बच्चे अपनी स्कूल कैंपस में छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। इसके अलावा पर्यावरण पर एक्ट, पोस्टर मेकिंग और एसी राइटिंग जैसे प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए जाते हैं। बात करें सरकारी विभागों की तो भारत सरकार और राज्य की वन विभाग द्वारा आम जनता को मुफ्त या फिर बहुत कम दामों पर पौधे बांटे जाते हैं। वन विभाग द्वारा बंजर ज़मीनों, पहाड़ी इलाकों और जंगलों में जाकर लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर हैशटैग एक पेड़ माँ के नाम और हैशटैग वन महोत्सव जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं। लोग रील्स, वीडियो और पोस्ट के जरिए अपने दोस्तों को भी पौधे लगाने के लिए अपील करते हैं। आइए बात करते हैं वन महोत्सव सप्ताह के उद्देश्य के बारे में। दोस्तों इसमें सबसे पहला है प्रदूषण को कम करना। वन महोत्सव का सबसे बड़ा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, ताकि वे हवा से खतरनाक गैसों को कम किया जा सके और हमें सांस लेने के लिए भरपूर ऑक्सीजन दे सके। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग और तापमान को रोकना। वन महोत्सव के जरिए नए जंगल तैयार किए जाते हैं, जो धरती को ठंडक देते हैं और मौसम के

चक्र जैसे समय पर बारिश होना जैसे फिनोमेना को ठीक रखते हैं। दोस्तों इसमें अगला लेकिन सबसे ज़रूरी है जंगली जानवरों के घर को बचाना। इस उत्सव का एक मुख्य लक्ष्य वनों का दायरा बढ़ाना भी है ताकि वन्य जीवों को उनका प्राकृतिक घर और भोजन मिल सके और वो सुरक्षित रह सकें। साथियों इस तरह हमने जाना वन महोत्सव सप्ताह के बारे में। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे फिल्म ड्रीम गर्ल से, जिसमें स्वर थे नक्काश अजीज़, जोनिता गांधी और मीट ब्रोस के। गीतकार हैं कुमार और संगीत भी है मीट ब्रोस का। दोस्तों क्या आप जानते हैं आज है वर्ल्ड जूनोसिस डे। आइए पहले तो जानते हैं जूनोसिस होता क्या है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इंसानों में होने वाले सभी संक्रामक रोगों में से लगभग 75% से ज़्यादा बीमारियां जानवरों से इंसानों के बीच में फैलती हैं, जैसे रेबीज़, लाइम रोग, इबोला, सार्स। इसके अलावा ये गिनती WHO के अनुसार 200 से भी ज़्यादा है। ऐसे में फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट लुई पास्चर ने एक महान खोज की थी। दरअसल 6 जुलाई 1985 को लुई पास्चर ने रेबीज़ वायरस से संक्रमित एक बच्चे को पहला सफल टीका यानी कि वैक्सीन लगाकर उसकी जान बचाई थी, जो कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली एक जानलेवा बीमारी है। इसी ऐतिहासिक चिकित्सा सफलता की याद में और इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए ये दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। बात करें इस दिन के उद्देश्य की तो सबसे पहला तो है बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। आम जनता को जूनोटिक बीमारियों जैसे रेबीज़, बर्ड फ्लू इत्यादि के खतरे और उनके लक्षणों के बारे में एजुकेट करना। दूसरा है वन हेल्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक दूसरे से जुड़ा मानकर सभी स्तरों पर मिलकर काम करने के महत्व को समझना और समझाना। तीसरा है बचाव और स्वच्छता सिखाना। जानवरों के संपर्क में आने के बाद सही तरीके से हाथ धोने और पालतू पशुओं को समय समय पर टीकाकरण के आदतों को बढ़ावा देना है। दोस्तों इसी में अगला है महामारी को रोकना। शुरुआती स्तर पर ही जानवरों में फैलने वाले संक्रमणों की पहचान करना ताकि उन्हें इंसानों में फैलने और

बड़ी महामारी बनने से पहले ही रोका जा सके। साथियों, वक्त है अब रोजगार सूचना का। IBPS द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर एवं मैनेजमेंट ट्रेनी के 6715 पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों अभी आपने सुना गीत फिल्म दगाबाज 2 से, जिसमें स्वर थे राहत फ़तेह अली खान और श्रेया घोषाल के। गीतकार हैं समर अनजान और संगीत है साजिद वाजिद का। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब जानते हैं फिन टॉक्सिसिटी के बारे में। आखिर फिन टॉक्सिसिटी क्या है और इससे युवाओं को क्यों बचना चाहिए? एक्चुअली फिन या फिर फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी उसे कहते हैं जब किसी इंसान या उसके परिवार को गंभीर बीमारी जैसे कैंसर या दिल की बीमारी जैसे रोग हो जाते हैं और उसकी इलाज की वजह से भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, यानी कि महंगी दवाओं, अस्पताल के खर्चे और बार बार डॉक्टर के पास जाने की वजह से पेशेंट की सारी सेविंग्स ख़त्म हो जाती हैं। वो कर्ज के जाल में फंसने लग जाते हैं, जिसे फाइनेंशियल ट्रैप भी कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये बीमारी के शारीरिक दर्द के साथ साथ मिलने वाला वो गहरा आर्थिक और मानसिक दर्द है जो पूरे परिवार के बजट और भविष्य को पूरी तरह तबाह कर देता है। दोस्तों इस फाइनेंशियल ट्रैप से बचने के लिए युवा ये आसान तरीके अपना सकते हैं, जैसे सही हेल्थ इंश्योरेंस लें। बीमारी के खर्चे से बचने के लिए खुद का एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। इससे बहुत कम पैसों में आपका टोटल बीमा बढ़कर 20 लाख तक पहुंच जाता है। खासकर युवा वर्ग, आप जितनी जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं आगे चल के वो उतना ही ज़्यादा मददगार होता है। दूसरा है इमरजेंसी फंड बनाए रखना। अचानक आने वाली मुसीबत या फिर बीमारी के लिए अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा हमेशा अलग बचा कर रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे तुरंत निकाल कर अस्पताल या फिर दवाओं के खर्च में इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों इसमें अगला है क्रिटिकल इलनेस कवर। कैंसर या फिर दिल की बीमारी जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज बहुत लंबा और महंगा होता है। इसके लिए अपनी पॉलिसी के साथ क्रिटिकल इलनेस कवर ज़रूर लें। बीमारी का पता चलते ही बीमा कंपनी आपको एक बड़ा अमाउंट दे देती है, जिससे आप अस्पताल के साथ बाहर का खर्चा आराम से संभाल सकते हैं। वहीं सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल करें। सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं का सही जानकारी होना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आप हो सके तो सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाएं। साथ ही आप जन औषधि केंद्र से बेहद कम कीमत में दवाइयां ले सकते हैं। इसके अलावा कई राज्य स्तरीय योजनाओं का भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। साथियों सुनेंगे कार्यक्रम का आखिरी गीत, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर एक बार रोजगार सूचना दे दूं। IBPS द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर एवं मैनेजमेंट ट्रेनी के 6715 पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से ग्रेजुएशन का होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम के आखिरी गीत का, जिसमें स्वर हैं अर्को के, गीतकार भी और संगीतकार भी हैं अर्को। आइए सुनते हैं।

दोस्तों, आपने सुना गीत फिल्म बार बार देखो से, जिसमें स्वर, गीतकार और संगीतकार हैं अर्को प्रावो मुखर्जी। साथियों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना वन महोत्सव सप्ताह के बारे में, वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में और साथ ही बात की फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी की। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। मुलाकात होगी आपसे अगली बार। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त पूजा पांडे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत

0: प्रेस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
5: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
7: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
5: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
5: सफर में
4: आपके साथ
5: आकाशवाणी।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ में दुश्मन फिल्म का गीत, आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत उत्तम सिंह का।

0: ये जवानी है दीवानी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। विशाल दिलानी और रेखा भारद्वाज की आवाज़ है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और तर्ज बनाई है प्रीतम ने।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

अल्तमश फरीदी और शादा फरीदी की आवाज़ में आप सुन रहे थे मिकी वायरस फिल्म का ये प्यारा सा गीत। मनोज यादव के बोल थे और संगीत से सजाया था हनीफ शेख ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म जहर से। श्रेया घोषाल की प्यारी सी आवाज़ है, सईद कादरी के बोल हैं और तर्ज बनाई है रूप कुमार राठौर ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
2: सच?
1: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
2: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो?
1: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
2: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
1: और इस

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुछ देर पहले इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने तीन देशों के हिंद प्रशांत दौरे की शुरुआत की। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। राज्य सरकार इसी माह समान नागरिक संहिता UCC लागू करने की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने आज जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के बाद कहा कि एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान के संकल्प को साकार करने का ये एक प्रयास है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खातों का विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई यानी कल तक बढ़ा दी है। शौर्य स्मारक भोपाल में कल आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और ब्राजील के विश्व कप से बाहर होने के बाद दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील को कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने लिखते हैं,
1: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
1: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिव कुमारी और रामदुलारी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
0: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
1: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
1: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
1: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
1: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
1: 8800440559। और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी।
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी।
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
0: जी।
2: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है, इसका नंबर है 8448

0: 4-0-6-3-2। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन 1/2 घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे।
1: जी,
0: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है। इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है,
1: जी,
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, और उस नियमित दिनचर्या में उनको

0: अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा।
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए।
1: जी जी। डॉक्टर साहब आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत

0: अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यानपूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी,
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्यपूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी
0: है। कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है।
1: जी।
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती है। जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से।
1: जी,
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
1: जी हाँ।
0: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
1: जी।
0: आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
1: जी।
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहे, क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी, जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई की, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से, कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा

0: करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, तो क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स, यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल
0: जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर, या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो, जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी,
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना है इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं, उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, उसमें बहुत सारी

0: हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो अब डॉक्टर साहब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
1: जी।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
1: जी।
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है,
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
1: हाँ, होती है।
0: तो असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
1: प्रयास
0: वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ, होता
0: तो,
1: है।
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी?
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: हाँ, प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी।
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल
1: जी,
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं।
0: देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: 8440432 8448440632। ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।

0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansail@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत। फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई। धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ गीत, बोल हैं आनंद बख्शी के, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम महबूब की मेहंदी।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम आजकल।
1: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है ड्रग माफिया पर त्रिस्तरीय वार, पहचान, प्रहार और पूर्ण सफाया। आलेख डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी का है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तभी साकार हो सकता है जब देश की युवा शक्ति सुरक्षित, स्वस्थ और उत्पादक बनी रहे। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अब नशे के खिलाफ लड़ाई को केवल कानून व्यवस्था का विषय न मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा का अभियान बना दिया है। इसी सोच के साथ जारी मादक पदार्थ नियंत्रण विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 ये संकेत देता है कि अब कार्रवाई का लक्ष्य पूरे नार्को इकोसिस्टम को जड़ से खत्म करना है। पिछले कुछ वर्षों में ये साफ हुआ है कि ड्रग्स कारोबार के तार आतंकवाद, हवाला, संगठित अपराध, सीमा पार तस्करी और डिजिटल अपराधों से जुड़ चुके हैं। ऐसे में यदि कार्रवाई केवल छोटे तस्करों तक सीमित रहे तो समस्या का समाधान संभव नहीं है। सरकार ने इसी कमजोरी को पहचानते हुए अब डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय का नया मंत्र दिया है। मोदी सरकार की यह कार्यप्रणाली बताती है कि पहले पूरे नेटवर्क की पहचान होगी, फिर उसकी सप्लाई चेन और वित्तीय तंत्र को तोड़ा जाएगा और अंततः पूरे कार्टेल का स्थायी खात्मा किया

0: जाएगा। इस नई नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अपराधियों के साथ साथ उनके आर्थिक ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। वस्तुतः अब केवल मादक पदार्थ जब्त कर लेना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। हवाला नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाले लेन देन और डार्क नेट पर संचालित कारोबार, बैंक खातों तथा अवैध संपत्तियों तक कार्रवाई का दायरा बढ़ाया गया है। आज ड्रग तस्करी का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। ड्रोन के माध्यम से सीमा पार खेप पहुंचाना, समुद्री मार्गों का इस्तेमाल, कंटेनर तस्करी, ऑनलाइन नेटवर्क और डार्क वेब के जरिए अवैध व्यापार जैसी चुनौतियां पारंपरिक पुलिस व्यवस्था से नहीं सुलझ सकती हैं। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम डेटा शेयरिंग, तकनीकी खुफिया तंत्र, अपराध मानचित्रण और आधुनिक निगरानी प्रणाली को विशेष महत्व दिया गया है। इस अभियान में केवल सख्ती नहीं, संवेदनशीलता भी दिखाई देती है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह से कठोर होगी, किंतु नशे की लत के शिकार युवाओं को अपराधी न मानकर उन्हें पीड़ित मानकर उनके पुनर्वास पर बराबर ध्यान दिया जाएगा। राज्यों की भूमिका को लेकर भी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई केवल केंद्र सरकार नहीं जीत सकती। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को अधिक संसाधन, एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, मजबूत चार्जशीट और जवाबदेह व्यवस्था पर जोर बताता है कि अब परिणाम आधारित कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि राज्यों में यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो ड्रग्स नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाए रखना संभव होगा। विशेष एनडीपीएस अदालतों के गठन पर दिया गया जोर भी स्वागत योग्य है। अक्सर वर्षों तक मुकदमे लंबित रहने से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। यदि जांच के साथ त्वरित सुनवाई और शीघ्र सजा सुनिश्चित होती है तो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी व्यापक होगा और ड्रग्स कारोबार में शामिल लोगों के लिए कानून का डर बढ़ेगा। सरकार ने सीमावर्ती गांव, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और संवेदनशील जिलों में तकनीकी निगरानी तथा कम्युनिटी पुलिसिंग का विस्तार किया है। इसके साथ ही अवैध अफीम और अन्य मादक फसलों की खेती के खिलाफ बढ़ती कार्रवाई ये दर्शाती है कि सरकार उत्पादन के स्रोत पर भी समान सख्ती बरत रही है। ड्रग्स के खिलाफ समाज की भागीदारी को अभियान का आधार बनाना भी दूरदर्शी कदम है। माता पिता, शिक्षक, शिक्षण संस्थान, युवा संगठन और सामाजिक संस्थाएं यदि इस लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो नशे की मांग स्वतः घटेगी। इस संबंध में पिछले वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ा है। रिकॉर्ड मात्रा में मादक पदार्थों की जब्ती, लाखों मामलों का पंजीकरण, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां और अवैध खेती का विनाश तथा हजारों करोड़ रुपए मूल्य के ड्रग्स का नष्ट किया जाना ये संकेत देता है कि सरकार ने इस चुनौती को प्राथमिकता दी है। अब 6000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थों के नष्ट करने का नया अभियान इस प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। निसंदेह नशा मुक्त भारत बनाने के लिए कानून, तकनीकी, न्याय व्यवस्था, सामाजिक जागरूकता और जन सहभागिता से लेकर वे तमाम उपाय एक साथ हर मोर्चे पर करने होंगे जो इसे रोकने के लिए आवश्यक है। डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय की नई रणनीति इसी समग्र सोच का परिचायक है। यदि इस रोडमैप को पूरी प्रतिबद्धता और समन्वय के साथ लागू किया गया तो भारत ड्रग्स माफिया के खिलाफ निर्णायक बढ़त हासिल करेगा। तभी हम सही मायनों में विकसित भारत के संकल्प को भी एक मजबूत सामाजिक आधार प्रदान कर पाएंगे। आजकल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल। विषय था ड्रग्स माफिया पर त्रिस्तरीय वार, पहचान, प्रहार और पूर्ण सफाया। आलेख डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है प्रादेशिक समाचार दर्शन का।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं नवनीत चौबे। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है अनूपपुर जिले से, जहां ग्राम पंचायत बदरा में वीबी जी रामजी मिशन का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश है अनूपपुर से हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा की यह रिपोर्ट।
1: वीवी रामजी मिशन का जिला स्तरीय शुभारंभ अनूपपुर जनपद के बदरा ग्राम में हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति रमेश सिंह ने कहा कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण एक अत्यंत प्रशासनिक एवं दूरदर्शी पहल है। उन्होंने कहा कि आज का दिन देश, प्रदेश, जिले तथा विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में इतिहास में दर्ज होगा। गाँव की समृद्धि ही राष्ट्र के प्रगति का आधार है और इसी उद्देश्य की पूर्ति

0: के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण का शुभारंभ किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति रमेश सिंह ग्राम पंचायत बद्रा में आयोजित विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग ग्रामीण भारत के समग्र विकास से होकर गुजरता है। इसके लिए यह मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा।
1: हमारी दूसरी खबर है उमरिया जिले से, जहां साइबर जागरूकता के तहत 24 जून से 8 जुलाई तक सेफ क्लिक 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आम नागरिकों को सुरक्षित वेबसाइट पर क्लिक करने, मोबाइल ओटीपी, यूपीआई पिन आदि किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं करने की सलाह दी जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे उमरिया संवाददाता अरुण कुमार त्रिपाठी।
2: उमरिया जिले में पुलिस अधीक्षक विजय भागवानी के निर्देशन में साइबर जागरूकता के तहत सेफ क्लिक चलाया जा रहा है। अभियान का शुभारंभ 24 जून 2026 से किया गया है, जो 8 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान के तहत आम नागरिकों को सुरक्षित वेबसाइट पर क्लिक करने, मोबाइल ओटीपी, यूपीआई पिन आदि किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं करने की सलाह दी जा रही है। अभियान में पुलिस अधीक्षक से लेकर आरक्षक तक हिस्सा ले रहे हैं। नागरिकों को साइबर ठगी से बचाने के लिए जिले भर के स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक जगहों पर पुलिस लोगों को जागरूक करने की सलाह दे रही है। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट या किसी भी तरह के फ्रॉड होने की संभावना पर नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करने की सलाह दी जा रही है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं उमरिया के SDOP BL परस्ती।
3: मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सेफ क्लिक साइबर जागरूकता का कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उमरिया पुलिस के द्वारा भी लोगों को लगातार साइबर जागरूकता के प्रति, साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वाकई में आज के डिजिटल युग में साइबर अपराधी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सतर्क रहे, जागरूक रहे। कभी भी यदि कोई अनजान व्यक्ति आपसे ATM डिटेल, खाता डिटेल, UPI पिन या आपकी निजी जानकारी मांगता है, तो बिल्कुल कभी उसके साथ शेयर ना करें, आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं।
2: समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं अरुण कुमार त्रिपाठी।
1: हमारी अगली खबर है सीधी से, जहां एक बगिया माँ के नाम अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सीधी से हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्र।
4: सीधी जिले में मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर संचालित एक बगिया माँ के नाम अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन सीधी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। अभियान के तहत जिले की सभी जनपद पंचायतों में स्व सहायता समूहों की महिलाओं की निजी भूमि पर मनरेगा के माध्यम से फलदार पौधों का रोपण कराया जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में महिलाओं की आय बढ़ेगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। जिला पंचायत सीधी के CEO शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया है कि जिले में 500 परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रत्येक परियोजनाओं में लगभग 100 पौधे लगाने के मान से कुल 50,000 पौधे के रोपण का लक्ष्य तय किया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्य करते हुए 520 परियोजनाओं की स्वीकृति की है, जिनके लिए लगभग 9,48,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इन स्वीकृत परियोजनाओं में अब तक 411 स्थलों पर फेंसिंग और पौधारोपण का कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष परियोजनाओं में फेंसिंग का कार्य तेजी से जारी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है श्योपुर जिले से, जहां स्व सहायता समूह से जुड़ी महिला सदस्यों के खेतों में फलोद्यान विकसित किए जाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई माँ की बगिया योजना छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह योजना नगद कमाई का साधन भी बनी हुई है। विस्तार से बता रहे हैं श्योपुर से हमारे संवाददाता अश्विनी बालूठिया।
5: स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं सदस्यों के खेतों में फलोद्यान विकसित किए जाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई माँ की बगिया छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के अंतर्गत लगाए गए पौधों में अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। किसानों द्वारा पौधों के बीच में हरी सब्जियां, मूंग इत्यादि की खेती की जा रही है, जिससे उन्हें गर्मियों के इस मौसम में नगद कमाई भी हो रही है। स्व सहायता समूह से जुड़ी दीदियों के खेत में योजना अंतर्गत समस्त कार्य, जो है जमीन का चिन्हांकन, हितग्राही और संबंधित परिवार की जानकारी सीप्री ऐप के माध्यम से कृषि सखियों द्वारा दी जा रही है। माँ की बगिया योजना अंतर्गत लगभग एक एक एकड़ भूमि पर फलोद्यान के पौधे रोपित किए गए हैं, जिसमें अमरूद, आम, नींबू, कटहल के पौधे दीदियों द्वारा लगाए गए तथा

0: पौधे अब अच्छे बढ़ने लगे हैं। साथ ही जिन हितग्राहियों द्वारा पौधों की नियमित रूप से देखभाल की जा रही है, योजना के अंतर्गत हितग्राही द्वारा माँ की बगिया में पौध के बीच में खाली जगह पर सब्जी की खेती भी की जा रही है, जिसमें समूह की दीदी द्वारा ककड़ी, भिंडी, लौकी, कद्दू इत्यादि की खेती की जा रही है तथा सब्जी बेचकर लगभग अतिरिक्त आय अर्जित की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए श्योपुर से अश्विनी कुमार बालोटिया।
1: हमारी अगली खबर है शहडोल जिले से, जहां धान उत्पादन क्षमता प्रदेश की औसत उत्पादन क्षमता से अधिक है। जिले में इस खरीफ सीजन में धान का उत्पादन लक्ष्य बढ़ाया गया है। पेश है शहडोल से हमारे संवाददाता अरविंद पांडे की यह रिपोर्ट।
2: शहडोल जिले की धान उत्पादन क्षमता 4058 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश की औसत उत्पादन क्षमता 3551 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। वहीं राष्ट्रीय औसत 2825 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उन्नत बीज, सिंचाई सुविधा और किसानों के प्रशिक्षण से यह संभव हुआ है। कृषि विभाग ने खरीफ 2026 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। जिले में इस बार 673,729 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान रखा गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 1787 टन अधिक है। मानसून की सामान्य वर्षा और कृषि की आधुनिक तकनीक के सहारे यह लक्ष्य हासिल करने की तैयारी है। खरीफ की मुख्य फसल धान का उत्पादन लक्ष्य 582,323 मीट्रिक टन रखा गया है। बीते साल यह लक्ष्य 578,000 मीट्रिक टन था। इस सीजन जिले में कोदो, कुटकी, अरहर और तिल की पैदावार बढ़ने की संभावना है। सरकार द्वारा मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ पोषण सुरक्षा भी बेहतर होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे।
1: अब हम रुख करते हैं आगरमालवा जिले की तरफ, जहां सोयाबीन फसल की बुवाई शुरू हो गई है। इस बार कृषि विभाग बदलते मौसम के अनुरूप खेती की तकनीक बदलने पर जोर दे रहा है। किसानों को पारंपरिक समतल बुआई छोड़कर रेस्ड बेड, ब्रॉड बेड फरो और रिज एंड फरो जैसी वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाने की सलाह दी जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगर मालवा संवाददाता महेश शर्मा।
3: खरीफ सीजन 2026 के तहत सोयाबीन फसल की बुआई आगर मालवा जिले में भी शुरू हो गई है। इस बार कृषि विभाग बदलते मौसम के अनुरूप खेती की तकनीक बदलने पर जोर दे रहा है। किसानों को पारंपरिक समतल बुआई छोड़कर रेज्ड बेड, ऊंची क्यारी, ब्रॉड बेड फरो BBF और रिज एंड फरो जैसी वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाने की सलाह दी जा रही है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग की वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी किरण ठाकुर।
4: जब हम बोने की विधि या अन्य तकनीकों के बारे में प्लानिंग करते हैं, तो इस बार बुआई के लिए प्लानिंग जो है, अगर BBF मेथड से करें बुआई, तो ये होता है ब्रॉड बेड एंड फरो, जिसमें क्यारियां चौड़ी होती हैं और क्यारियों के साथ नाली बनी हुई होती है आउट साइड में। तो जब ये मेथड से अगर अपन बुआई करते हैं, तो इसके तीन मुख्यतः फ़ायदे हो जाएंगे। पहला है, अतिवृष्टि से बचाव हो जाएगा। जब पानी अधिक होता है, खेत से पानी बाहर निकालना होता है, तो जो आउट साइड की नालियाँ होती हैं वो बहुत मददगार होती हैं, पौधे गलने से बच जाते हैं। और जैसे कि सूखा पड़ता है अगर कभी, तो सूखा पड़ेगा तो नालियों से सिंचाई देने के लिए भी यह मेथड उपयुक्त रहेगी।
3: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है शिवपुरी जिले से, जहां 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक और विभाग के अधिकारी गांव-गांव पहुंचे और किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शिवपुरी से हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता।
5: केंद्र सरकार की पहल पर शिवपुरी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक और विभाग के अधिकारी गांव-गांव पहुंचे और किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी। अभियान के दौरान आयोजित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किसानों को खरीफ सीजन से पहले भूमि की तैयारी, उन्नत बीज का चयन, संतुलित उर्वरक प्रबंधन और जल संरक्षण की तकनीकें बताई गईं। वैज्ञानिकों ने कीटनाशकों के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग पर विशेष जोर दिया। किसानों को समझाया गया कि रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी की सेहत खराब होती है और मानव स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर M.K. भार्गव ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य उत्पादन लागत घटाकर किसानों की आय बढ़ाना और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना रहा। किसानों को जैविक खाद, बर्मी कंपोस्ट और फसल चक्र अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। अभियान में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता।
1: हमारी अगली खबर है शाजापुर से, जहां साइबर अपराधों की रोकथाम और डिजिटल सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सेफ क्लिक 2.0 अभियान संचालित किया जा रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं शाजापुर से हमारे संवाददाता अजीत पाराशर।
6: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शाजापुर जिले में भी साइबर अपराधों और डिजिटल सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सेल्फ क्लिक 2.0

0: अभियान 1 जुलाई से प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जो 15 जुलाई तक लगातार चलेगा। 15 दिवसीय इस विशेष जन जागरूकता अभियान की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने बताया कि
1: मार्केट में जो भी जो स्थान है जहां पे पब्लिक को हमको बार बार हम कह रहे हैं कि साइबर के संबंध में कोई भी आपके साथ में कोई भी घटना होती है तो उसमें 1930 नंबर पर डायल करके अपने रजिस्टर करें। कई प्रकार के जो साइबर ठगी होती है, OTP से भी होती है, कोई अनजान लिंक आती है, या कई बार फेसबुक वीडियो कॉल्स आते हैं, या हमने कई बार फर्जी लोन ले लिए जाते हैं, कई प्रकार की तरह तरह के प्रकार की, कई बार पेंशन से संबंधित भी आती है, और जो सरकारी कई बार योजनाएं आती है तो फर्जी लिंक उस पर बन जाती हैं, किसी प्रकार की भी ठगी होती है तो उस पर आप तत्काल आप 1930 पे लगाएं और इन सब चीजों से आप लोग बचें।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजित पारसर।
2: अब हम चलते हैं सिंगरौली जिले की तरफ, जहां अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर सिंगरौली जिले ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सिंगरौली से हमारे संवाददाता अमित द्विवेदी।
3: अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 2026 के अवसर पर नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली ने मध्य प्रदेश शासन के SME विभाग एवं फिक्की द्वारा भोपाल में आयोजित उद्यमी मध्य प्रदेश 2026 कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित वेंडर डेवलपमेंट मीट में NCL सिंगरौली की ओर से विपुल कुमार राय, सहायक प्रबंधक सामग्री प्रबंधक ने भाग लिया। उन्होंने SME विक्रेताओं एवं उद्यमियों को NCL की निविदाओं में अधिकाधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया है। इस दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वामित्व वाले उद्योगों तथा महिला उद्यमियों को सहभागिता निभाने का विशेष बल दिया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सिंगरौली से अमित द्विवेदी।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी अंतिम खबर है विदिशा जिले से, जहां विदिशा जिले में जिला प्रशासन ने वर्षा काल के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे विदिशा संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा।
4: विदिशा जिले में जिला प्रशासन ने वर्षा काल के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु व्यापक इंतजाम किए हैं। निचली बस्तियों सहित जल भराव क्षेत्रों में सतत निगरानी के प्रबंध और बाढ़ राहत शिविरों के लिए सुरक्षित स्थानों का चयन कर लिया है। उधर स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपस्थिति के साथ आवश्यक औषधियों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया है। जिला होमगार्ड विभाग द्वारा पूर्व से चयनित नदियों के घाटों पर मोटर बोट और गोताखोरों की रिहर्सल करते हुए किसी भी प्रकार की जनहानि रोकने की मार्क ड्रिल पूरी कर ली है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा।
2: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम की 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया

किया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारतीय ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहु माध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषीय व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषीय व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंधन संस्थाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। सरकार ने कहा कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ सकता है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में एनएसआर विश्वकर 21 मिनट पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में आप सुन सकते हैं 8:15 पर आनंदी जी का फिल्म संगीत का। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम रात्रि 9:30 पर हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। और रात्रि 10 बजे कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आप सुन सकते हैं। और अब बारी है हमारे कल के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह 8:30 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम जिसमें हम आपको सुनवाएंगे अश्व

सुनी भिड़े की गाए चंद भजन। सुबह 9:30 पर शब्द सागर कार्यक्रम में सुनेगा वाणी शर्मा की वार्ता, भारतीय शास्त्रीय नृत्य और वैश्विक मंच, और मेहरुन्निसा परवेज की कहानी क्यों नहीं। सुबह 10 होगी जिले की चिट्ठी और 10:05 पर पेश करेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 पर सुनेगा अभय फगरे का बांसुरी वादन, राग होगा जौनपुरी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में 11 सुनेगा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम पेश करेंगे दिन में 12 और 2:30 पर। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत होगा धारावाहिक हंसना मना है का 6वां भाग। दिन में 1 होगा महिला कार्यक्रम, 1:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम और 1:45 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होंगे। सांध्यकालीन सभा में 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:33 पर, रात्रि 8:15 पर और रात्रि 10:00। शाम 6:00 होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम, 6:30 पर सुनेगा चित्रपट संगीत। सात बजकर 21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में आप सुनेगा भेंटवार्ता, खरीफ दलहनी फसलों की उन्नत खेती, जानकारी देंगे डॉक्टर सुरेंद्र कौशिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8:00 होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर पेश करेंगे उर्दू प्रोग्राम कहकशा, जिसमें आप सुनेगा कव्वालियों पर केंद्रित कार्यक्रम महफिले समा। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे पंडित जगन्नाथ और पार्टी का शहनाई वादन, राग होगा मधु कौस। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
3: को
4: प्लीज तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भव्य स्वागत।

0: देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा और आपसी साझेदारी में हुई प्रगति की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सतगड़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी। कहा, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी मध्य प्रदेश में कर रहे निवेश। ज्ञान भारतम ऐप पर दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों को सहेजने और संरक्षित करने में देश में प्रथम मध्य प्रदेश। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय, आज 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने 3 देशों के हिंद प्रशांत दौरे की शुरुआत की। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और भारतीय प्रवासी समुदाय ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया, जिसमें पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थीं। ये प्रधानमंत्री श्री मोदी की इंडोनेशिया की चौथी यात्रा है और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किए जाने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो

0: पूर्ण स्वागत किया, जिसमें पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थीं। ये प्रधानमंत्री श्री मोदी की इंडोनेशिया की चौथी यात्रा है और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किए जाने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अपनी यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। वहीं तीसरे और अंतिम चरण में श्री मोदी 10 जुलाई को न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। राष्ट्रवादी चिंतक और भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात दी। लगभग 173 एकड़ में विकसित होने वाला यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार माना जा रहा है। इसमें आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, IT एवं AI आधारित सुविधाएं और लॉजिस्टिक तथा वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। ये परियोजना वर्क लिव ग्रो मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें उच्च मूल्य विनिर्माण, गारमेंट, टॉयज, IT और AI से जुड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यहाँ कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश कर रहे हैं।
2: विश्व के बड़े बड़े देश अब हमारे साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जापान, कोरिया, ऐसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे अपने राज्य में लगा रही थी। ये है हमारे काम करने का तरीका। छोटे मझोले उद्योग जो काम करने आ रहे हैं, उनका अगर कोई देनदारी है तो ये हमने गए महीने तक की देनदारी पूरी कर दी।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की मौजूदगी में आज भोपाल में कुवैत की अग्रणी मत्स्य कंपनी और कामदार्स केयर इंदौर के बीच 7,430 करोड़ रुपए के निवेश और बायबैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। ये एग्रीमेंट मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 के अंतर्गत हुआ है। इस करार के तहत कुवैत की कंपनी इंदिरा सागर, बर्गी, बाणसागर और बारना जलाशय में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी, जिससे 35,000 रोजगार सृजित होंगे। इस करार से प्रदेश के लगभग 6,000 करोड़ रुपये के मत्स्य निर्यात का अनुमान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर में संभाग स्तरीय उन्नत कृषक संवाद सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने किसानों से संवाद कर उनके प्राकृतिक खेती से संबंधित अनुभव भी सुने। मुख्यमंत्री ने यहाँ से हाईटेक नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन का भूमि पूजन भी किया। इस नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन के प्रथम चरण के कार्य के लिए सरकार द्वारा 13 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भारत सरकार की डिजिटल पहल ज्ञान भारतम ऐप के अनुसार दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों की सूचना दर्ज करने और उनके संरक्षण के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। ज्ञान भारतम ऐप के माध्यम से 3 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश ने अब तक कुल 34,45,439 पांडुलिपियों के पन्नों का पंजीकरण किया है। 12,13,127 पांडुलिपियों का ज्ञान भारतम द्वारा सफलतापूर्वक सत्यापन हुआ है। शेष सत्यापन की प्रक्रिया में है, जिनका चरणबद्ध तरीके से परीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग शिव शेखर शुक्ला ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि आज भी विश्वभर के मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों और संग्रहालयों में संरक्षित भारतीय पांडुलिपियाँ हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर हैं। अब रुख करते हैं मानसून का। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। आज प्रदेश के 23 जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, गुना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और पन्ना में भारी बारिश हो सकती है।

इसके अलावा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी सहित प्रदेश के बाकी जिलों में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मंडला शहर में आज शाम 4 बजे से शुरू हुई बारिश लगभग 2 घंटे तक लगातार होती रही। वहीं छिंदवाड़ा में बीते 24 घंटों के दौरान 24.2 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। इंदौर जिले में इस सत्र में अब तक 314.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा UG 2026 प्रवेश परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई यानी कल तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाते विवरण की पुष्टि की है उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत कल नीमच जिले के हरकिया खाल स्थित श्री बालाजी मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। छतरपुर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के स्थापना दिवस पर वन स्टॉप सेंटर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। शहडोल के सरहट की आजीविका हल्दी प्रसंस्करण इकाई से जुड़े 135 किसानों ने रिकॉर्ड 130 मीट्रिक टन हल्दी का उत्पादन किया है। बैतूल विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 8 जुलाई को टैगोर वार्ड के आंगनवाड़ी केंद्र में विशेष शिविर में बिजली संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। सीहोर जिले के आष्टा पचोर शुजालपुर मार्ग पर एक कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 यात्री घायल हो गए हैं। खंडवा में 7 दिवसीय सिविल डिफेंस स्वयंसेवक प्रशिक्षण का आज शुभारंभ किया गया। कटनी पुलिस द्वारा सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। अशोकनगर पुलिस ने 88,000 रुपये के नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शौर्य स्मारक भोपाल में कल आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भव्य स्वागत। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा और आपसी साझेदारी में हुई प्रगति की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सतगढ़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी। कहा, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी मध्य प्रदेश में कर रहे निवेश। ज्ञान भारतम ऐप पर दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों को सहेजने और संरक्षित करने में देश में प्रथम मध्य प्रदेश। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय, आज 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: दी, हाँ? ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
3: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
4: Saving करने की भी यही उम्र है।
5: I know pa, save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: I know na।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो financially smart।
7: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से लीजिए सुनिए कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा में बिराजे भाई सभी किसान भैया और बहनों को आनंद कृष्ण भैया की दो ही हाथ जोड़ के राम राम। भैया बहनों कैसे हो आप? और हैं जय उम्मीद कराता है हम तो के सब जने नोने हुए हैं और सब स्वस्थ हुए हैं और बस कार्य को बढ़िया स्वागत करके लाने पूरी तरीके से तैयार से होंगे। भैया बहनों आज सोमवार को दिन है और आज आप औरों की चिट्ठियाँ हमारे सामने बहुत सारी रखी हैं और इन चिट्ठियों में आप औरों ने बहुत प्रेम से जो लोगी सुनवे के लाने फरमाइश लिखी है तो अपन टाइम खोटो न करें और सुना थे पहलो लोकगीत जिखो सुनबे के लाने चिट्ठी लिखी है क्लासिक रेडियो श्रोता संघ से राजेश कुमार मेहरा नंद किशोर विनोद अर्जुन दुर्गा शंकर सिकंदर राहुल चंदू देवराज और सब ग्राम बकानी खुर्द पोस्ट अवाली का आवली कला वाया भवानी मंडी जिला झालावाड़ से। तो इन सब की पसंद पर अपन सुनाते हैं डॉक्टर अरविंद सोनी को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: तो भैया बहनों, जो अपन लोगों ने लोकगीत तो सुन लो, अब बुंदेली समाचारों को होगा समाओ, तो सुना थे बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार, और बुंदेली समाचारों के संगे हम हैं आनंद कृष्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद इंडोनेशिया में जकार्ता पहुंचे, जिते बिन्ने अपने तीन देशों के हिंद प्रशांत दौरा की शुरुआत करी। जकार्ता हवाई अड्डा पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने उनको व्यक्तिगत रूप से स्वागत करो। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और भारतीय प्रवासी समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी को भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत करो, जिनमें पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ सुई शामिल हती। जहाँ प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया की चौथी यात्रा है, और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीति साझेदारी के स्तर तक उन्नत करे जावे के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। जा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के संगे द्विपक्षीय चर्चा करें और आपसी साझेदारी में भई प्रगति की समीक्षा करें। प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता की यात्रा भी करें, जहां वे प्रम्बानन मंदिर परिसर को दौरा करें। भारत और इंडोनेशिया उतय संरक्षण को काम करें। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतीय प्रवासी समुदाय की विशाल सभाओं से संबोधित करें। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करें। राज्य सरकार जई महीना समान नागरिक संहिता UCC लागू करवे की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भोपाल में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करवे के बाद यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कही कि डॉक्टर मुखर्जी के एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान के संकल्प को साकार करने को प्रयास है। जिस दौरान मुख्यमंत्री ने कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति करत भय विश्व में विशेष पहचान बना रहा है। राज्य सरकार ने डॉक्टर मुखर्जी की जयंती के अवसर पर 15 दिवसीय जन कल्याण पखवाड़े की शुरुआत सुई करी है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी गरीब जरूरतमंद और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं को लाभ सुनिश्चित करो जा

है। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करावे के लाने औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इस दिशा में रोजगार के अवसर सृजित हुए से हर वर्ग को कल्याण सुनिश्चित हो पा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क को भूमि पूजन और शिलान्यास करो। राष्ट्रवादी चिंतक और भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित यह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात दी है। ये मौका पर विनय कही कि जो पार्क औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति दे है, लगभग 173 एकड़ में विकसित हुई बार जो स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार को नव आधार माना जा रहा है। इसमें आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, आईटी और एआई आधारित सुविधाएं और लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स विकसित करे गए हैं। यह परियोजना वर्क लिव ग्रो मॉडल पर आधारित रहे, जिसमें उच्च मूल्य विनिर्माण, गारमेंट, टायर्स, आईटी और एआई से जुड़े उद्योग स्थापित करे गए हैं। छतरपुर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने निरीक्षण करो। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर पार्थ जायसवाल सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में लाइब्रेरी, प्रशासनिक भवन, लेक्चर हॉल, परीक्षा कक्ष, मुख्य प्रवेश द्वार, गार्डन एरिया और पूरे कैंपस को अवलोकन करोगे। श्री वर्णवाल ने इत फर्नीचर की टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी करके ऑर्डर जारी करने के निर्देश दिए हैं। उतई भवन की बेहतर फिनिशिंग और सुरक्षा मानकों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश सुई दिए हैं। उनने हॉस्टल क्षमता की सुई जानकारी ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी 2026 परीक्षा की फीस वापसी के लाने बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित करो है कि जोन उम्मीदवारों ने अपनों बैंक खाते के विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लाने रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनटीए ने बताई कि अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट करो है। प्रश्न पत्र लीक हुए के आरोपों के बाद इस साल 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द हुए के बाद एनटीए द्वारा रिफंड की यह प्रक्रिया चलाई जा रही है। और अब मानसून की जानकारी। प्रदेश में मानसून जम के बरस रहा है। आज प्रदेश के 23 जिलों में अति भारी और भारी बारिश को अलर्ट जारी करा गया है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश को ऑरेंज अलर्ट है। वहीं रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, गुना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और पन्ना में भारी बारिश हो सका थे। एक के अलावा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी सहित प्रदेश के बाकी जिलों में सुई कहूँ तेज तो कहूँ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। कल प्रदेश के 20 से ज़्यादा जिलों में तेज बारिश भई थी। शाजापुर में सबसे ज़्यादा 28 मिलीमीटर बारिश दर्ज करी गई, जिसके बाद कालीसिंध नदी उफान पे है। प्रदेश में अब तक औसत 6.4 इंच बारिश हो चुकी है। और एक संगे बुंदेली समाचार समाप्त हुए। भैया बहनों, अपन और अपनी पसंद के लोग ही सुन रहे हैं। और जब हमारे हाथ में चिट्ठी आ गई है, यह लिखी है ग्राम मूरटक का माफी ओंकारेश्वर जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल ने। जब एक चिट्ठी और है चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानमल, अनीजा मोटवानी, राजेश, मुकेश, सोमेश, मनीषा और शुभम की। इन सब की पसंद पे अब अपन सुनाते हैं जो एक लोकगीत जेखों गा रही हैं बिमला श्रीवास्तव।

भैया बहनों, अपन और जानत हैं कि आजकल अपन साहब सुन भी रहे हैं बहुत कि मिलेट को बड़ो प्रचार हो रहा है। मिलेट्स हैं भाई, अपने कहते हैं श्री अन्न, तो जाको बड़ो प्रचार चल रहा है। तो कई बेरा कई जने पूछा थे कि भाई मिलेट्स का है, जो ऐसे अनाज होते हैं जो सूखे क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, जो कि जिन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ा थे। कई प्रकार के होते हैं, जहाँ बाजरा भाव, रागी भाई, ज्वार, कोदो, कुटकी, सवा, कंगनी, ये कहानी मिलेट की फसलें। तो इन्हें आजकल इनको खूब प्रचलन बढ़त जा रहा है, कहा सके जब पाया गया है कि स्वास्थ्य के लाने ये ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो आजकल इनकी मांग सुई बाजार में बढ़त जा रही है, तो इनकी खेती सुई करवे की बहुत रुझान अपने किसान भैयाहरों में बढ़त जा रहा है। तो मिलेट की खेती के लाने कम पानी की जरूरत पड़ा थे, ऐसे सूखे क्षेत्रों के लाने बड़ी उपयुक्त फसल है। दूसरों फायदा जो हुए थे कि मिलेट की फसल बड़ी जल्दी पक जाते हैं, ऐसे जहाँ किसानों के लाने बड़ो लाभदायक फसल है। और तीसरी चीज़ यह है कि मिलेट की जो फसल होते हैं वह स्वास्थ्य के लाने बड़ी लाभदायक होते हैं। ऐसी सब जो आधुनिक तरीका से जो खोजें भई हैं उनमें जो चीज़ें सामने आई हैं, तो ये सब चीज़ों को देखा भाई, अब मिलेट्स की खेती की तरफ रुझान किसान भैयाहरों को बढ़त जा रहा है। अपन और जाके बारे में और बात करें, जहाँ हमारे यहाँ से चिट्ठी आ गई अपने एक पुराने श्रोता हैं, कठघोरा से भाई चंद्रपाल सिंह, श्रीमती शकुंतला, मनोज पाल सिंह, लखन पाल सिंह, दिनेश पाल सिंह और कुमारी कविता सिंह की। और जाए चिट्ठी है बेमेतरा नया पारा से भाई ईश्वरी प्रसाद साहू, श्रीमती भावना, नीलेश, श्रद्धा, गौरव और निधि साहू की। तो इन सब की पसंद पे अब अपन सुनाते हैं मल्लूलाल सेन को गाओ भाव जो लोकगीत।

तो भैया रो अपन और बात कर रहे थे मिलेट्स की यानी श्री अन्न की बात कर रहे थे, बाकी खेती के फायदों के बारे में अपन यदि बात करें तो पहला फ़ायदा तो जो ही है कि कम पानी और कम लागत में उगाई जा सका थे। दूसरा है कि दूसरे जो अनाज होते हैं उनकी तुलना में अधिक पौष्टिक होते और ऐसे एक बड़ा काम जो हो जाता है कि खेत में नाइट्रोजन को फिक्सेशन हो जाता है, मतलब नाइट्रोजन की स्थिरता बढ़ जाती है, ऐसे वह अगली पैदावार के लाने बड़ी लाभदायक होते थे। और इतनी कम पानी में और जल्दी पकवे वाली फसल हुए कारण साल में 3 फसलें तक मिलेट्स की निकाली जा सका थी। 45 से 80 दिन के अंदर कटाई करी जा सका थे, बंजर भूमि को उपजाऊ सी बनाया जा सका थे, खाद्य सुरक्षा में सुधार हुए थे और जैसे किसानों की आय में वृद्धि हुए थे और पर्यावरण को संरक्षित करो जा सका थे। और मिलेट जो है जाके लाने बार बार कही जाते हैं बहुत पौष्टिक अनाज हुए थे जो स्वास्थ्य के लाने बड़ा लाभदायक हुए थे। और सूखा सहिष्णु है जिसको मतलब ये कि कम पानी वाले क्षेत्रों में उगाया जा सका थे और सूखाग्रस्त इलाकों के लाने तो मिलेट की खेती एक वरदान है जहाँ किसानों की आय बढ़ावे और जल संरक्षण में भी मदद करते है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब ऐसे अपन चर्चा कर रहे हैं इनकी कि यदि मान लो अपने भैया हैं जो जिनके पास में पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं है या पानी की कम व्यवस्था हो पाते है तो वे और यदि चाहें तो सोचें कि मिलेट्स की खेती करवाई की बारे में कुछ योजना बनाएं, बाकी बारे में कुछ बात करें तो वे और ऐसा करके अच्छे तरीके से कमाई कर सकते हैं। भैया बहनों अब जाइए हमारे यहाँ से चिट्ठी आ गई अपने नियमित श्रोता हैं योगेश्वर सिंह भारतीय, योगेंद्र सिंह भारतीय, डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह, लोकेंद्र प्रताप सिंह, प्रेमाबाई, दुर्गाबाई और अमिता भारती की और आवास कॉलोनी बाया तहसील रहटी जिला सीहोर से अमर सिंह भारती, कोशाबाई भारती, कुमारी लक्ष्मी महेंद्र।

तो भैया बहनों, अपन उन्होंने बात कर रहे थे मिलेट्स के बारे में, और मिलेट्स की खेती से चूंकि बहुत फ़ायदा हुआ थे, तो अब यदि मान लो अपन यह योजना बना रहे हैं कि मिलेट्स की खेती करें, श्री अन्न की खेती करें, तो बाकी लाने पहले तो अपन उन्होंने जो जानने की ज़रूरत है कि मिलेट्स में कौन कौन सी फसलें हैं। तो मिलेट्स में हमने आपको जैसे बताई कि बाजरा भाव, रागी भई, ज्वार, कोदो, कुटकी, सवा, कंगनी, ये फसलें जहाँ शामिल हुए थे। तो इनकी आकार और रंग के आधार पर सो इन फसलों है कई बार अलग अलग करो जा सकते हैं। जैसे मोटे मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं जैसे बाजरा, ज्वार, सावा, कंगनी और चेना, और सूक्ष्म जो मिलेट हैं मतलब बारीक जो होते हैं ये हैं रागी, कोदों और कुटकी। तो जो सूक्ष्म यानी बारीक वाले जो श्री अन्न हैं ये छोटे आकार के होते हैं, और इनको आकार गहरों भूरों या काले रंग को होते हैं, और मोटे मिलेट जो हैं ये हल्के भूरे या पीले रंग के होते हैं, तो थोड़े से बड़े आकार के होते हैं और मोटे मिलेट्स। तो ये जानने के बाद में अपन औरों को जवाब की सही जानकारी होनी चाहिए कि जाकर खेती अपन कैसे करें। तो जाकर आने पहली चीज़ तो चाहिए कि भूमि की तैयारी कैसे करें। मिलेट्स की खेती के लाने मिट्टी को अच्छी तरीके से तैयार करवो जरूरी है। मिट्टी को समतल और भुरभुरी बना लेना चाहिए। जाके लाने खेत की 2-3 बार जुताई करें, फिर पाटा लगा दें। बीज की बुआई में मिलेट्स के बीजों को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआएं, और बुआई को समय फसल के प्रकार पर निर्भर करा थे, और आमतौर पर मिलेट्स की बुआई जून जुलाई के महीना में करी जाते। मतलब कहे को जो भाव कि अभी जो समय चल रहा है, जो समय मिलेट्स की बुआई के लाने अच्छा समय है। भैया यारो, अपन जाके बारे में कछु और बातें कर रहे हैं। मनो, अब हमारे हाथ में एक चिट्ठी आ गई है। जो चिट्ठी लिखी है अपने नियमित श्रोता हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, यमुना ठाकुर, प्रेम साहू, मिथिलेश, सूरज और ज्योति ठाकुर ने। और एक और चिट्ठी है दतरेंगी से भागवत वर्मा, भाटापारा से हरमिंदर सिंह चावला, और रिंगनी से दिनेश वर्मा की। इन सबकी पसंद पर अब अपन सुनाते हैं उमा सक्सेना को गाओ भाव जो लोकगीत।

तो भैया रो अपन और अपनी पसंद के लोकगीत भी सुना जा रहे हैं और कछु काम की जानकारियाँ भी सुना जा रहे हैं। अपन और खेती किसानी को काम कराते हैं और खेती किसानी को काम को यदि अपन सही तरीका से वैज्ञानिक तरीका से वैज्ञानिक सोच के साथ में यदि अपन करें तो वहाँ में अपन अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब जैसे अपन बुआई कराते हैं तो बुआई करवे के लाने अपन जब मान लेते हैं कई बेरा के अपना बीजा लाओ और लेकर अपने खेत में अपने डाल दो सो अपने हो गई। मानो यदि अपन वही बीज को सही तरीका से उपचारित करके वो फिर बाद में यदि बुआई करें तो अपने कई तरीका को लाभ हो सका थे। ये लाभ किस प्रकार का हो सका थे कि सबसे पहले तो जो है कि बीजों यदि अपन उपचारित कर लें तो बीजों में फफूंद नहीं लग सके, फिर उनको कीटनाशक को काम से हिलाते हुए और साथ साथ में जैविक पदार्थों से उन्हें यदि उपचारित करो जाते तो बासे वे एक जीवन रक्षक दवा को काम कराते हैं जिसमें बीज जनित जो रोग होते हैं और कीट होते हैं उनसे बचाव होते हैं और फसल की उपज में कम से कम 15-20% तक को शुद्ध लाभ कमाया जा सका थे। तो जाके लाभ की बात यदि अपन कर रहे हैं बीज उपचार की तो जब बीजों और मिट्टी में मौजूद जो हानिकारक फफूंद होते बैक्टीरिया होते हैं और वायरस होते हैं उन्हें नष्ट कर दिए थे जैसे पौधों को सड़न और अन्य शुरुआती बीमारियों से सुरक्षा मिला थे। बुआई के बाद बीजों को दीमक और अन्य भूमिगत कीटों से बचाव के लाने जो बड़ी कारगर होते जाके उपयोग से बीजों की अंकुरण क्षमता से बढ़ जाते थे और प्रतिकूल मौसम में भी स्वस्थ और मजबूत पौधा निकला थे। एक संगे संगे जो उपचारित बीजों के जो पौधा होते हैं उनकी जड़ें बड़ी गहरी और मजबूत होते हैं जैसे वे मिट्टी में पोषक तत्व और नमी से आसानी से अवशोषित कर लिए थे और शुरुआती अवस्था में रोगों की रोकथाम हो जाए के बाद में कीटनाशकों और रसायनों पर व्यवहार जो खर्चा है वो बच जाते। तो कहवे को मतलब जो हो कि अपन ने शुरू में थोड़ा सा खर्चा कर लो तो बाद में अपन ने अपने बड़े खर्चा बचा लाए। तो जा एक जरूरी चीज हुए थे। अब थोड़ी सी बात कर लें कि बीजोपचार की विधि का हुआ था तो जैविक विधि हुए थे जाके और दूसरी रासायनिक विधि हुए थे। जैविक विधि में का हुआ था कि बीजों को ट्राइकोडर्मा या राइजोबियम जैसे जो जैविक एजेंट हुए थे उनसे उपचारित कर जाते थे और जैविक खेती के लाने बहुत उत्तम है। और रासायनिक विधि के लाने जहाँ बीजों को अनुशंसित मात्रा में फफूंदनाशक दवाइयाँ जैसे कार्बन डाइजम या थायरम और इनसे इन बीजों है उपचारित करो जाते हैं और बाकी बाद में इनकी बुआई करी जाते हैं। तो भैया मैंने यदि अपन बुआई करते समय बीजोपचार पे अच्छा ध्यान दें तो अपन अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब जय चिट्ठी अपने नियमित श्रोता हैं बनियापारा छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर, शंकरलाल माखीजा, राहुल, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति और समस्त माखीजा परिवार की। और जय चिट्ठी है जबलपुर से ग्राम बेलखेड़ा जबलपुर से गणेश विश्वकर्मा, गुड्डू मिस्त्री, इंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, सुलेखा, रेखा, संगीता, मोना, सरोज, रिया, अनिल, अमित, प्राची, कार्तिक की। गंगानगर जबलपुर से अंजलि, दीक्षा, राम कुमार, प्रकाश और राम गोपाल की। और सुगातला नरसिंहपुर से ज्ञानेश, गुड्डू, वर्षा, सुषमा, अशोक, उमेश, राजकुमार और बहुत सारे मित्रों की। तो जो बहुत सारी लोगों ने पसंद करो है जब लोकगीत के लाने तो जो भजन अपन सुनाते हैं जे को गा रहे हैं गोस्वामी घनश्याम दास मृदुल।

और भैया बहनों देखो, अब बिहारी की बिरिया सुई हो रही है, सो अब लेते हैं आप औरों से विदा। तो ग्राम सभा कार्यक्रम सुनबे बारे सभी किसान भैया और बहनों को आनंद कृष्ण भैया की दो यहाँ जोर खें राम राम।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा और इसके रणनीतिक महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
3: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिवसीय यात्रा पर। इस यात्रा का उद्देश्य तीनों देशों के साथ भारत के संबंधों को नई मजबूती देना है। व्यापार हो, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, नई तकनीक और भारतीय समुदाय जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत होगी। साथ ही यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाने वाली मानी जा रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये यात्रा है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, या तीनों देशों की यात्रा भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और आप इस दौरे को किस नजरिए से देखते हैं?
4: देखिए, तीनों ही देश और खास तौर से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा का जो पहला चरण है इंडोनेशिया की यात्रा, ये मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके कई वजह हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र का, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के मामले में भी, अपनी

0: आर्थिक शक्ति के मामले में भी और उसकी जो सामरिक जो महत्व है उसका दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए इंडोनेशिया केंद्रीय स्थान रखता है भारत की एक्ट ईस्ट नीति में। साथ ही साथ भारत और इंडोनेशिया के बीच में खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो के बीच में जो संबंध है उनकी जो पर्सनल डिप्लोमेसी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 में जब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में साइन हुई थी तब से लेकर के अभी तक खासी प्रगति दोनों देशों के बीच में हुई है। हमें मालूम है कि पिछले ही साल 2025 में राष्ट्रपति प्रबोवो हमारे भारत के गणतंत्र दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर थे और राष्ट्रपति प्रबोवो की प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बैठकें होती रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों ही देशों के नेता अपने संबंधों को लेकर के सजग हैं और संबंधों को आगे की दिशा में बढ़ाना चाहते हैं। इंडोनेशिया की जहाँ तक आर्थिक रूप से उसकी जहाँ तक महत्ता है वो ये है कि 25 बिलियन का व्यापार दोनों देशों के बीच में है, जिसे इन्फॉर्मल अगर हम ट्रेड जोड़ें तो वो उससे भी ज्यादा होता है। दोनों ही देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के अपनी एक जो नीति है उसमें समानताएं बहुत सारी हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के इंडोनेशिया भारत से सीखना चाहता है। भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी में इंडोनेशिया का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होकर के और अपना योगदान देना चाहता है। इसके पहले हमने देखा कि इंडोनेशिया और भारत दोनों ही देशों ने G20 की अध्यक्षता की और किस तरह उन्होंने तमाम जो देश हैं जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के ग्लोबल साउथ के विकासशील जो देश हैं वो कैसे अपनी विदेश नीति और सामरिक नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडोनेशिया की यात्रा इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा वहाँ के प्रधानमंत्री अल्बनीजी के निमंत्रण पर है। ऑस्ट्रेलिया जैसा कि हमें पता है कि भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है ओशानिया या पैसिफिक आईलैंड के क्षेत्र में, दक्षिण इंडियन ओशन के क्षेत्र में। और वहां पर एक दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ही क्वाड के सदस्य देश हैं और इस लिहाज से क्षेत्रीय संतुलन को लेकर के क्षेत्रीय सामरिक संतुलन को लेकर के दोनों ही देश का जो नजरिया है वो एक जैसा है और दोनों ही देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना रहे और इस बात को लेकर के दोनों ही देशों में डिफेंस को लेकर के सुरक्षा और सामरिक मुद्दों को लेकर के दोनों देशों के बीच में लगातार डायलॉग्स और एक्सचेंजेस भी होते रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के सप्लाई चेन रेजिलियंस को लेकर भारत ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश कैनेडा के साथ भी और जापान के साथ भी मिलकर के तमाम तरीके के ट्राइलेटरल मैकेनिज्म्स की भी बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार समझौता होने के बारे में भी काफी बातें चल रही हैं तो उसको नतीजे तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि ये कोशिश होगी। और तीसरा देश है न्यूजीलैंड, जहां पर पिछले साल हमने देखा था कि न्यूजीलैंड की तरफ से भारत की यात्रा हुई थी 2025 मार्च में। न्यूजीलैंड की यात्रा जो है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा एक नई गति देनी है। वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये 40 सालों में पहली यात्रा है। तो इस लिहाज से जो कूटनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच में है उनको भी आगे बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा महत्वपूर्ण है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं लेकिन उस अभी तक रेटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो कौन से वो मुद्दे हैं, लेबर मोबिलिटी या एग्रीकल्चर सेक्टर या फार्मास्यूटिकल्स, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम अपनी शुरुआत पहले करें और कौन से वो क्षेत्र हैं जिनमें हमें संभल कर और समझबूझ से चलना है, ये सभी मुद्दे भी भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में आएंगे। पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि भारतीयों का न्यूजीलैंड जाना सर्विसेज के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से, वहां पर जाकर छोटे मोटे व्यवसाय या स्टार्टअप्स खोलने के लिहाज से न्यूजीलैंड एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। तो भारतीयों और भारतवर्षियों की भी वहां पर जो मौजूदगी है उस हिसाब से भी न्यूजीलैंड की यात्रा प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम देखें इस पूरी तीनों देशों की यात्रा को, अगर हम पिछली जो यात्राएं हुई हैं प्रधानमंत्री की उनसे अगर हम जोड़ के देखें और साथ जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकायची की भारत यात्रा से जोड़कर देखें तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तमाम जो उभरती हुई शक्तियां हैं और तमाम जो मिडिल पावर्स हैं, भारत जैसे राइजिंग पावर्स और ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया जैसे जो मिडिल पावर्स हैं, ये सभी साथ मिलकर अपनी ऊर्जाओं को, अपनी जो चिंताएं हैं सामरिक तौर पर आर्थिक तौर पर, उनको मिलकर साझा करना चाहते हैं, उनको मिलकर बैठकर उनको साझा करना चाहते हैं और उनको बात के मद्देनजर की चीन और अमेरिका के जो दोनों ही देशों की जो विदेश और सामरिक नीतियां हैं वो इंडो पैसिफिक के छोटे और मझोले देशों के हितों में नहीं है, तो कैसे उन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ये देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी विदेश और सामरिक नीति को आगे बढ़ाए, ये मुझे लगता है कि एक बड़ा
1: जी
0: कनेक्टिंग फैक्टर है प्रधानमंत्री मोदी की पिछली यात्राओं की और साथ में इन तीन देशों की यात्रा के साथ।
1: प्रोफेसर मिश्रा,

0: आपने अभी बताया कि इंडो पैसिफिक का कितना महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि ये यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत यानी कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
1: देखिए, इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कभी भी भारत ने किसी दूसरे देश को नहीं दी, इंडोनेशिया ने भी किसी दूसरी महाशक्ति को नहीं दी। इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है उसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, कई डिफाइनिंग फीचर्स हैं। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है अमेरिका और चीन के बीच में सामरिक जो रस्साकशी है, लेकिन इसके साथ ही दो और महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, भारत की और भारत के साथ जापान की, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन तमाम देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के एक बड़ी ही मुखर और बहुत ही स्पष्ट नीति का होना कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम किसी किन्हीं भी दूसरे देशों को हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा या रूल्स बेस्ड ऑर्डर से खिलवाड़ करने नहीं देंगे। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि भारत की नीतियों में और ऑस्ट्रेलिया, जापान या इंडोनेशिया की जो खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो नीति है उसमें बड़ी समानताएं हैं, और इन्हीं समानताओं के चलते आसियान की भी अपनी एक इंडो पैसिफिक का आउटलुक है, आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, जिसमें बहुत सारी समानताएं भारत के इंडो पैसिफिक विजन से या महासागर विजन से। तो क्योंकि इन तमाम देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के उनकी चिंताएं, उनकी आकांक्षाएं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक को लेकर के एक बड़े लेवल पर एक कंसेंसस रहे और इस कंसेंसस के साथ साथ इन देशों के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, और यही मुझे लगता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित और स्थिर और शांतिपूर्ण बनाने में मदद करेगा, और यही इन देशों की भूमिका है इंडो पैसिफिक को लेकर।
0: इस दौरे में व्यापार, निवेश, शिक्षा या फिर नवाचार और कई सारी नई तकनीकों पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से भारत को क्या प्रमुख लाभ मिल सकते हैं, इस पर आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा समझाएं।
1: देखिए, भारत के साथ तमाम देशों के, भारत के साथ इंडोनेशिया का जहां तक सवाल है व्यापार और निवेश का, ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी व्यापार को खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और सर्विसेज सेक्टर में भारत की अपनी जो क्वालिटीज हैं उसको इंडोनेशिया तक पहुंचाना और भारत और इंडोनेशिया के व्यापार को आगे आने वाले वर्षों में 50 बिलियन तक पहुंचाने की कोशिश ये दोनों देश कर रहे हैं। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में व्यापार को लेकर के बहुत सारी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज है, लेकिन दोनों देशों के बीच में कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है, और यही भारत और इंडोनेशिया दोनों ही देश ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपनी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज को आगे बढ़ाते हुए कंपटीशन को कम से कम रखा जाए, आपसी सामंजस्य से ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़े। जैसे लेबर मोबिलिटी एक बहुत बड़ा उसका पहलू है, जिसमें हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया का ब्लू कॉलर जो लेबर है वो तमाम देशों, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे मलेशिया हो, ब्रुनेई हो, वहां मौजूद होता है। भारत की भी लेबर मोबिलिटी को लेकर के, आउटबाउंड लेबर मोबिलिटी को लेकर के बड़ा दखल रहा है, और भारतीय आमतौर पे ब्लू कॉलर जॉब्स में भी और व्हाइट कॉलर सर्विसेज सेक्टर में भी भारत से बाहर जाते रहे हैं, और दक्षिण पूर्व एशिया एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। तो इस लिहाज से दोनों देशों के बीच में आर्थिक कॉम्प्लीमेंटैरिटी को कैसे बढ़ा जाए ये महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया में कोयले को लेकर के और ऑयल और गैस को लेकर के तमाम बातचीत चल रही है, अभी कोई इस संदर्भ में तार्किक परिणति तक कोई अग्रीमेंट पहुंचा नहीं है, लेकिन इस पर मुझे लगता है काफी बातचीत होगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या आरसीईपी जिसे हम कहते हैं उसका एक हिस्सा है, अगले साल आरसीईपी के 10 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो ये कोशिश जरूर होगी कि भारत को आरसीईपी में लाया जाए, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो व्यापार समझौता है उसके तहत भी ऑस्ट्रेलिया ये कोशिश जरूर करेगा कि भारत एक क्षेत्रीय आर्थिक इकोसिस्टम का भी हिस्सा बने। ऑस्ट्रेलिया के साथ जहां तक संबंधों का सवाल है, भारत की नीति ये रही है कि ऑस्ट्रेलिया से क्रिटिकल मिनरल्स, यूरेनियम जिस पर एग्रीमेंट हो चुका है, और तमाम ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको इंपोर्ट किया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक बड़ी शक्ति है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को आपसी व्यापार समझौतों से अलग रखा जाए, और सर्विसेज के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, रक्षा और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। न्यूजीलैंड, जैसा मैंने पहले कहा कि न्यूजीलैंड के साथ आर्थिक संबंधों को लेकर के और न्यूजीलैंड का भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश को लेकर के भारत ने न्यूजीलैंड को एक बड़ा साझेदार माना है, और ये कोशिश की है कि न्यूजीलैंड का भारत में निवेश हो, निवेश भारत में हुआ भी है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। दोनों देशों के बीच में व्यापार अभी $3 बिलियन डॉलर भी नहीं पहुंचा है। तो मुझे लगता है उस क्षेत्र में कैसे दोनों देशों के व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, ये भारत की कोशिश है और मुझे लगता है इस पर भी काम इस यात्रा के दौरान होगा।
0: प्रधानमंत्री की जो ये

0: तीनों देशों की यात्रा है, इसमें उन्होंने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करने की बात कही है। विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था, निवेश, संस्कृति और वैश्विक छवि को मजबूत करने में किस तरह से योगदान देते हैं, और आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की जो ये समुदाय से जो उनका ये मुलाकात होगा वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है?
1: देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति में भारतीयों का और भारतवंशियों का, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, और PIOs, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों पर बहुत खास ध्यान रहा है। तो भारतीयों और भारतवंशियों से हमेशा अपनी हर यात्रा के दौरान वो उन्होंने उनके साथ बातचीत की है, उनके साथ मुलाकात की है, उनको संबोधित किया है और उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश की है, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को भी समझने की कोशिश की है। इंडोनेशिया में भी भारतीयों के साथ मुलाकात, भारतवंशियों के साथ मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया में बड़े स्तर पर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लाखों की संख्या में भारतीय और भारतवंशी रहते हैं। भारतीयों के तौर पर ज़्यादातर भारतीय विद्यार्थी जो वहाँ हायर एजुकेशन में जाते हैं, टर्शरी एजुकेशन में, MA या प्रोफेशनल कोर्सेज या PhD के लिए जाते हैं, और

0: श्री मोदी जी की विदेश नीति में भारतीयों का और भारतवंशियों का, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, और पीआईओज, पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों पर बहुत खास ध्यान रहा है। तो भारतीयों और भारतवंशियों से हमेशा अपनी हर यात्रा के दौरान वो उन्होंने उनके साथ बातचीत की है, उनके साथ मुलाकात की है, उनको संबोधित किया है और उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश की है, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को भी समझने की कोशिश की है। इंडोनेशिया में भी भारतीयों के साथ मुलाकात, भारतवंशियों के साथ मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया में बड़े स्तर पर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लाखों की संख्या में भारतीय और भारतवंशी रहते हैं। भारतीयों के तौर पर ज्यादातर भारतीय विद्यार्थी जो वहाँ हायर एजुकेशन में जाते हैं, टर्शरी एजुकेशन में, एमए या प्रोफेशनल कोर्सेज या पीएचडी के लिए जाते हैं, और जो वहाँ पे सर्विसेज सेक्टर में भारत के प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वहाँ पे मौजूद हैं, और साथ ही साथ डायस्पोरा के जो तमाम लोग हैं, जिनकी एक अच्छी खासी संख्या ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त है। न्यूजीलैंड में भी अब भारतीयों और भारतवंशियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी सर्विसेज सेक्टर में भारत एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरा है। भारतवंशियों की भी अब संख्या बढ़ रही है, क्योंकि तमाम भारतीयों, खासतौर से पंजाब जैसे देशों से, तमाम भारतीय न्यूजीलैंड में जाकर माइग्रेट हो गए हैं और वहां सेटल हो गए हैं। तो उनको भी समझने और उनके साथ भी बातचीत करने की कोशिश होगी। डायस्पोरा हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति में एक बहुत अहम स्तंभ रहा है, और इस कितनी इसको इम्पोर्टेंस इस भारतीय विदेश नीति में आज दी जा रही है, ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के तमाम इन तीनों देशों में जो संबोधन होंगे उनसे ये ज्यादा स्पष्ट होगा।
1: प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही सरल भाषा में आपने हमारे श्रोताओं को समझाया कि यह प्रधानमंत्री की जो यात्रा है तीनों देशों की, यह कितनी महत्वपूर्ण है और ये विकसित भारत का लक्ष्य पाने में कितनी मदद करेगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

लीजिए, एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम फिल्म संगीत लेकर। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कयामत से कयामत तक का बहुत ही प्यारा सा गीत, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और धुन बनाई है आनंद मिलंद ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कव्वाली, जिसे हमने लिया है फिल्म ये दिल आशिकान से। आवाज़ें हैं साबरी बोस, सोनू निगम, अलका याग्निक, तौसीफ अख्तर और साथियों की। समीर के बोल हैं और संगीत से सज

इस खूबसूरत कव्वाली के बाद कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं महबूब का लिखा हुआ गीत। इस्माइल दरबार का संगीत है, फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम, और आवाज़ें हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
1: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
3: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के

0: किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
1: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए, और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
2: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,000

0: 430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askyar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated the relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A report from a correspondent from Jakarta covering Prime Minister's visit.
2: A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. Members of the Indian diaspora also greeted him enthusiastically. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. The discussions are expected to focus on strengthening cooperation in trade, investment, defense, maritime security, digital technology and cultural exchanges, further reinforcing the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia. Speaking to Akashvani, members of the Indian diaspora expressed excitement over the Prime Minister's visit and voiced confidence.

0: Navratilova will clash with compatriot Coco Gauff, while Czech player Karolina Muchova will take on Japan's Naomi Osaka tomorrow. In a bilingual live phone-in program, Public Speak tonight, we will bring discussion on Digital India, Empowering Citizens Through Technology. President and CEO, National E-Governance Department, Nand Kumaram, and former National Cybersecurity Coordinator, Dr. Gulshan Rai, will be present in our studios to answer the queries of listeners. And you can ask questions on the subject on telephone number 011-2331-0481, 2371-7117, 2371-7106, and 2331-4444 from 9:30 p.m. onwards. And now, before we end the bulletin, here are the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in the round of 16 match at Arlington in US tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तीन मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका तस्वुर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उपरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ईरान के आजानी आला रहनुमा आयतुल्ला अली खामनई को अलविदा कहने के लिए तेहरान में लोग बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अमरीका में पुर्तगाल और स्पेन का मुकाबला राउंड ऑफ 16 के मैच में होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दो रोजा सरकारी दौरे पर आज शाम जकार्ता पहुंचे। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। नेज इंडोनेशिया के सीनियर वुजरा, इंडोनेशिया में भारतीय सफीर और भारतीय बिरादरी के अरकान ने जनाब मोदी का पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने ताल्लुकात को बुलंदी अता करके उसे जामे कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया था, जिससे अवाम को बहुत फायदा पहुंचा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस्तकबाल में इंडोनेशिया और भारत के रिवायती रक्स पेश किए गए, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी और सकाफती रिश्ते की अक्कासी होती है। इस मौके पर भारतीय बिरादरी ने जनाब मोदी का पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया। अपने दौरे में वजीर आजम मोदी इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। तवक्को है कि बातचीत के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, बहरी सलामती, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सकाफती तबादले को मरकजी हैसियत हासिल रहेगी, जिससे भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय बिरादरी के अराकीन ने वजीर आजम के दौरे से मुतालिक अपने जोश व जज्बे का इजहार किया और एतमाद जाहिर किया कि ये दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा और तिजारत और सरमायाकारी के लिए नए इम्कानात पैदा करेगा। भारतीय बिरादरी ने इंडोनेशिया में कारोबार करने में आसानी से मुतालिक भी मुस्बत ख्यालात का इजहार किया और कहा कि भारतीय बिरादरी इंडोनेशिया के साजगार माहौल में अपनी सकाफती पहचान बरकरार रखते हुए इंडोनेशिया में रच बस गई है। इंडोनेशिया के जकार्ता से संदीप पौन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम मुहिब वतन और भारत की सालमियत के लिए वक्फ एक दूरंदेश शख्सियत थे। डॉक्टर मुखर्जी की 125वें

0: मुलाकात को मुअत्तल कर दिया है। ये शोक सनीचर से शुरू हुआ और जुमेरात तक जारी रहेगा। जनाब खामनेई को मशहद में इमाम रजा के रोजे के अहाते में दफनाया जाएगा। और फीफा आलमी कप में अमरीका के एरलिंगटन में आज राउंड ऑफ 16 के एक मैच में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से हुआ, जबकि इसी राउंड के एक और मैच में साथी मेजबान अमरीका बेल्जियम से कल सुबह सियाटल में मुकाबला करेगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मराकश और फ्रांस क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुके हैं और आज सुबह राउंड ऑफ 16 के एक मैच में इंग्लैंड साथी मेजबान मैक्सिको को 2-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में नॉर्वे ने ब्राजील को 1-2 से शिकस्त दी और क्वार्टर फाइनल में अपना मकाम बनाया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका तस्वुर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7117-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमारम जी, आपसे जानना चाहेंगे पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
2: सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है, वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूज़िक या देश के कल्चरल चीज़ों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में

0: ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों की इस दौरान।
1: बिल्कुल गुलशरा जी, डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं। एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
2: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फ़ोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं, किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फ़ोन पे और SMS से और WhatsApp द्वारा नहीं मांगते
1: जी।
2: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में आप नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूँ, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इंफॉर्मेशन वैसे नहीं मांगती है
1: जी।
2: और ऐसा है, इसका एक थंब रूल है, थंब रूल ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसकी उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ, एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए, अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी एक मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं।
1: ठीक है,
2: क्योंकि ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती है
1: जी,
2: रिटर्न कॉल नहीं होती,
1: सबसे बड़ी बात।
2: हाँ
1: जी, बिल्कुल।
2: और आज ये पहला एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछें, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश हो जाती है, रिकॉर्ड मिल जाता है, तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका, तो रिटर्न कॉल उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं आपको एक मिनट दीजिए, कुछ सामान गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ा थंब रूल है
1: जी।
2: और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं, वो जो ऐप आती है एक जिसमें होता है, जिसमें आप नंबर डालिए आपको बता देता है कौन सा क्या आता है, उसका क्या आता है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, करते हैं, तो आप उसका जवाब मत दीजिए कहीं हम आपसे आएंगे। और आज जो है दूर संचार विभाग ने, सरकार ने ये क्या किया है कि जब आपको कॉल आती है तो उस पे नाम फ्लैश होता है कि ये कहाँ से किसका नाम आ रहा है, कौन आ रहा है, वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है, तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है, कॉल देखें पहले गौर से जब कॉल आती है तो, उसके बाद अगर फोन आपको जान पहचान का नाम नहीं है तो मत उठाइए, अगर आप गलती से उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल आपको एक मिनट में कॉल करते हैं। रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हो
1: पकड़ जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं रवि जवालिया, हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
3: हाँ धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है
1: जी, रवि।
3: मैं गर्मीपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ
1: जी।
3: जी सबसे पहले से विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
2: नमस्कार नमस्कार रवि जी, नमस्कार।
3: हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक मतलब जो नया युवा है जो मतलब टेक्निक का यूज करना चाहता है वो डिजिटल साक्षर कैसे हो, क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन वगैरह जैसे कि हम सभी जानते हैं कि AI भी है, फ्रॉड भी है, तो वो डिजिटल साक्षर कैसे प्राप्त
2: करोगे,
3: इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
2: देखिए डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज़्यादा उसमें काम है, इनकी एक नाइलेट है सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है नाइलेट, NILIET नाइलेट है, और उस पर उन्होंने काफ़ी कोर्सेस उस पर डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं
1: जी।
2: लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है, आप मोबाइल चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में इतने यंग लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम

0: जैसे उम्र वाले हैं लोग, हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं हमारा मोबाइल कन्फिगर कर दीजिए। तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की साइट पे जाके आप कोर्स देखिए, और उनमें काफ़ी मटेरियल है, उस पर काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी शॉर्ट मॉड्यूल्स है, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा, और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसमें आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंद कोरम जी आपसे जानना चाहेंगे, यूपीआई आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
2: यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in every 2 or even 1.2 in every 2, मतलब 50-70% ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया का यूपीआई के माध्यम से होता है।
1: बहुत बड़ी बात।
2: और भारत, न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित कर चुका है, और एक समय में जो यूरोपियन या US डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहां तक जा करके उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग, आपस में जो पीयर टू पीयर मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना, या जो हमारे देनदारी की सूची बनकर एक साथ पेमेंट हो जाना, या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह के जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि देश में, जो हमारे देश में ये भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो MSME और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है, तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए UPI एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे NBFC का काफ़ी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं जहां तक कि वो पहले नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में, कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स UPI के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश है।
1: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार के सासाराम से अमित उपाध्याय। अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी नमस्कार, सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि एक OTP का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहा है बहुत सारे केस में, उसके लिए हमें कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं, क्या कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज में एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है, इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जी
0: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। OTP का फ्रॉड काफी पहले से काफी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि OTP क्यों आता है और कैसे आता है। OTP जब भी आता है जब आप किसी सर्विस को देख लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉग इन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं, आप कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वो आपको आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजेक्शन है आपको OTP भेजते हैं। आपके फोन पे OTP आता है, जो रजिस्टर्ड फोन होता है उनके पास उसी पे OTP आता है। कोई भी OTP तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो। अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, आपने सर्विस करने की कोशिश नहीं की, आपकी डिजायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी OTP को मत रिकॉग्नाइज करिए, मत देखिएगा, आप OTP को लीजिएगा ही नहीं। ऐसे को OTP आता रहता है, अपने आप ही OTP भेजते रहेंगे, उनको आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उसी OTP को देखिए जब आप किसी सर्विस को कुछ लेने की कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश करता है कि आप सही आदमी हैं जो कि सर्विस ले रहे हैं, तभी आपको OTP भेजता है। OTP एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को OTP भेजता है उसको मत लीजिएगा, उस पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए।
1: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी OTP आया, अदरवाइज OTP नहीं आएगा। चलिए एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के सागर से विपिन। विपिन आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है।
4: सभी को नमस्कार
1: जी।

0: मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर ग्रो करेगा, तो ये कैसे हम जाने कि सही या गलत है ऐप हम जो डाउनलोड करें या नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये था सर कि जो हेल्पलाइन है 1930 सर, इस पर कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाता है यानी 112 पर, तो ये नॉर्मल है ऐसे ही लगता है कॉल कि 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी?
1: मैं पहला सवाल का जवाब देता हूँ। पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
2: एक बार फिर से सवाल करें,
1: फिर से सवाल करेंगे आप?
2: गुड, क्या शायद उन्होंने उनका
1: डिस्कनेक्ट
2: हो गया है। लेकिन 1930 के बारे में कुछ
1: अच्छा 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होते हैं, जैसे कि साइबर में इमीडिएट रिलीफ, तो आप 112 से कई बार कोई इमीडिएट कहीं पुलिस की गाड़ी पहुंचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुंचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं, या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट, 1930 में ये भी सुविधाएं हैं कि उससे रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है, तो कई बार आपको डायवर्जन ऐसा मिल जाता होगा। ऐसे एज ए पॉलिसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीज़ों के लिए रहता है, न कि दूसरे चीज़ों के लिए। और जो आपका डिजिटल ऐप वाला क्रेडिट स्कोर का विषय था, सी क्रेडिट स्कोर सिबिल का या अलग बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है। आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, बार बार देखने से या बार बार किसी ऐप में चार बार गेम खेलने से, क्योंकि आपका जो आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट टाइम पर पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती हैं। ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए साहब एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बार बार करेंगे तो 5 पॉइंट जुड़ जाएगा, ये सब केवल गुमराह करने का रास्ता है। सिविल का स्कोर एक साइंटिफिक मेथड से पूरे देश में बनाया जाता है, इसके लिए कोई ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, वो ज़्यादातर आपको गुमराह करने के लिए है।
2: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को जानकारी मिली होगी। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी, और प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओडिशा से देश पांडे दीप दास जी जुड़ गए हैं। दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहेंगे
3: जी? नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी। नमस्कार
3: जी। कुमारन महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
1: नमस्कार जी।
4: नमस्कार, आपको भी सादर नमन
3: जी। मैं देशदीप दास केंद्रापरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी है?
1: शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी
2: जी,
1: स्टूडेंट्स
3: जी सर।
1: तो स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं तो जैसे दो है, अगर आप किंडल स्कूल से 12वीं तक में हैं तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है, इस पर सभी एनसीईआरटी की किताबें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों की बड़े ही डिजिटल और इजी सुगम स्थान तरीके से उपलब्ध होती है। दूसरी, उस पर वीडियो के कोर्सेज बने हुए हैं जो ऑनलाइन उन विषयों से संबंधित, मान लीजिए कोई 6ठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई 7वीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है, तो अगर वो 7वीं पढ़ रहा है और उसे 6ठी में डाउट है तो बड़ा इंटरकनेक्टेड बड़े ईजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से, और कई लाख बच्चे इससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे हैं, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है या NPTEL नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम आपको उसमें IIT कानपुर या IIT के बड़े MTech मास्टर्स PhD के कोर्स से लेकर के, और जो आपके

0: ट्वेल्थ के, इंजीनियरिंग के, मेडिसिन के, आईआईएम्स के, मैनेजमेंट के, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेके सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने भी प्रयास किए हैं। उड़ीसा में आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहाँ पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज, सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देखकर ले सकते हैं।
1: नंद कुमारम जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराती हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजना है?
0: दो विषयों पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खोलना सबसे बड़ा काम, और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था, तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो स्तर, लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल, और भारत की पीएलआई स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहां तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके कि वो जिस भाषा में, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषणी के माध्यम से या अन्य एआई टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप इजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीजन के लिए अलग लागू गया है, जो सीनियर सिटीजन का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलोअप करता है और उनको सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
1: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर को मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है सर
1: जी, बताइए।
2: पहला क्वेश्चन, जैसे कि कीपैड वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड उसमें भी अगर मैसेज आते हो और वो फोन हमारा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो। और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो मेरा मेन मकसद है सवाल का, कि जैसे आज के समय में टर्शरी क्लास के बच्चों से स्टार्ट होकर देखा जाता है, स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत नंबर आए तो आपको उसको छूना नहीं है, या जो भी जैसे भी तरीके से बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है, और जो फोन हमें नहीं चलाना आता वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है।
3: धन्यवाद। आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर्स फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर्स फोन जो होता है बहुत सिंपल फोन होता है, और उस पर बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या ओटीपी आता है, वो सब एसएमएस के द्वारा आते हैं, व्हाट्सएप और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं। तो वो ओटीपी आना या कोई मैसेज आना, वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसका वही इफेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या की फोन से, की फीचर फोन से किया है, उसका इफेक्ट सेम है। जहां तक ओटीपी और मैसेजेस का सवाल है, उसका दोनों का इफेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसमें फीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स, साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, वो उस फीचर्स फोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं वो सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है, और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पज़ के लिए, अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, आपका ओटीपी आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं, वो आप फीचर्स फोन पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आज की डेट में की फीचर्स फोन भी बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फीचर्स फोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर, मोटा मोटा अंतर आपको मैंने बता दिया है, और की फीचर्स फोन

0: नॉर्मल पर्पज़ के लिए काफ़ी सेफ होता है स्मार्टफोन में, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और केयरफुल रहना पड़ता है।
1: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गांव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या बातें हो सकती हैं?
0: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
1: जी।
0: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे वो जो इतनी जो ज़रूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करें
1: जी।
0: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए, और एप्पल का प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है।
1: बिल्कुल नंदकुमारम जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
2: देखिए, ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज़ है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियाँ कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं, लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज़ का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज़ बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से कि आप कब उनको ओटीपी दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करी, सारे कागज इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा, बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं, अब आप ये कर रहे हैं, और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे ज़्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूं और कैसे दूं। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना, और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन दूसरी साथी वहाँ काम करती हैं कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें, क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं। तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के पन्ना से, हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: हाँ, तो मैं ये जानना चाहता कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है, इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर रोक कि ये लगाई जाएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा इसका, जो 1930 जो काल है इस पर कभी वो ये जो काल करते हैं तो कार्रवाई कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है, इसका मुझे उत्तर चाहिए।
2: जी हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूँ। जो विषय है वो जो कहना यह रहता है लोगों का कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वो कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वो चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है जहाँ पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहाँ पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता। तो इस तरह के केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहाँ, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको 0FIR करके फिर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो BNSS और जो न्याय संहिता के क्रम के रेप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयाँ होती हैं। ये बात ज़रूर है कि चूंकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक वाक्य में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो तो क्या कहना चाहेंगे?
0: ये बहुत अहम सवाल है
1: जी।
0: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप OTP सर्विस मांगी नहीं है वो नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर आपको ये जब तक आप चीज़ कोई एक्सेस मांगते नहीं हैं तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत आसान है।
2: भारत डिजिटल में

0: दुनिया भर में अग्रणी है, और एकाध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर तीन पे तो हम लोग हैं ही।
1: बिल्कुल,
0: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। AI के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें, और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में, उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें।
2: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा।
1: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी वादन। कैलाश शर्मा का संगीत जगत से परिचय बचपन में ही हो गया था। बांस से बने इस वाद्य यंत्र से निकलने वाली मधुर ध्वनियों से प्रेरित होकर उन्होंने नई दिल्ली स्थित गंधर्व महाविद्यालय में श्री प्रकाश एन सक्सेना से बांसुरी सीखना प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने पंडित विनय चंद्र मौदगल्य से भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों का भी अध्ययन किया। बांसुरी कैलाश शर्मा के जीवन का अभिन्न अंग बन गई और उन्होंने निरंतर अभ्यास जारी रखा। उन्होंने अंतर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। तब से लेकर आज तक कैलाश शर्मा ने अपने व्यावसायिक जीवन में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने भारत तथा विदेशों के अनेक देशों में व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं और उनके संगीत को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई है। उन्होंने महान संगीत सम्राट पंडित रविशंकर के साथ अनेक अवसरों पर कार्य किया तथा विश्वविख्यात रंगकर्मी श्री पीटर ब्रुक द्वारा पेरिस में आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए उनका चयन किया गया। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा मध्य पूर्व के 10 देशों की यात्रा पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एकल वादक के रूप में प्रस्तुति देने के लिए भेजा गया। कैलाश शर्मा ने राजधानी में आयोजित अनेक प्रमुख संगीत समारोहों में एकल वादक के रूप में प्रस्तुति दी है, जिनमें विष्णु दिगंबर जयंती, शंकरलाल संगीत समारोह, सेहर तथा नैना देवी स्मृति समारोह प्रमुख हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित कैलाश चंद शर्मा। पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक while he was still a child. Inspired by the sounds that emanated from this instrument made of bamboo, he started learning the flute from Shri Prakash N. Saxena at Gandharva Mahavidyalaya, New Delhi. Later, he also learnt the nuances of the Indian classical music from Pandit Vinay Chandra Modgalya. The flute became an integral part of Kailash Chandra Sharma's life and he played on, participating in and winning prizes at inter-college university level music competitions. Since then, Pandit Kailash Chand Sharma has come a long way professionally, having performed a great deal in India and many countries abroad. He has worked with the great maestro Pandit

0: ये था पंडित कैलाश चंद शर्मा द्वारा बजाया गया राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद शर्मा अपने कार्यक्रम का समापन राग मिश्र खमाज से कर रहे हैं। मध्य लय रचना दादरा ताल में निबद्ध है।
1: You just heard राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद शर्मा concludes his flute recital with राग मिश्र खमाज। मध्य लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू दादरा ताल।

0: पर बजाया राग मिश्र खमाज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित विनोद लेले। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। विद दैट वी कंक्लूड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड in the studios of Akashwani Delhi. This program came to you from Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके बाद अंग्रेजी में समाचार होंगे जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
4: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
3: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल

0: अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India."
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशंस ऑफ जनरल सेक्रेटरी चंपत राय एंड ट्रस्ट मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा। बोथ हैड स्टेप डाउन आफ्टर द नेम्स सरफेस्ड इन द अलेज्ड राम टेंपल डोनेशन एम्बेजलमेंट केस। Krishna Mohan has been appointed interim general secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case in which 8 people have been arrested. Addressing the media, Trust Treasurer Govind Dev Giri said, "The possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out." 1993 batch IPS officer Alok Kumar Mittal has been appointed as Director General of Bureau of Police Research and Development. Another IPS officer of 1993 batch Amit Garg has been appointed as Director of National Crime Records Bureau. 1994 batch IPS Sujit Pandey has been appointed as Director of Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy. The appointment committee of the cabinet cleared these appointments today. The Nation today paid homage to veteran freedom fighter and former Union Minister Babu Jagjeevan Ram on his 40th death anniversary. The Babu Jagjeevan Ram National Foundation, under the Ministry of Social Justice and Empowerment, organized a homage ceremony at Samta Sthal in New Delhi. Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Minister for Social Justice and Empowerment Virendra Kumar,